शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं ऋतुपर्णो दास साहब, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, स्वागत करते हुए कहूंगा कि हमारे सभी दोस्तों के मुखातिब होइए, प्रेजेंट करिए, हमें बताइए ना आप भला कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं आप दास साहब?
1: मेरा परिचय है, दो परिचय है। एक परिचय है कि मैं फिलहाल रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट के अध्यापक हूं। मेरा दूसरा परिचय है मैं एक गायक हूं। मैं खास करके भक्ति गीति के ऊपर, जिनके जहां पर आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के ज्यादा प्रभाव हो, ऐसे भक्ति गीति निराकार ईश्वर के ऊपर मैं फिलहाल उस पे मैं ध्यान दे रहा हूं, और उसके ऊपर मैं गीत रचना और गीत गाना, गीत का सुर बनाना, ऐसे कामों में मैं इन्वॉल्व हूं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपने जाना कि दास साहब दरअसल एक अध्यापक हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में सीनियर फैकल्टी हैं, साथ साथ सिंगर हैं और निराकार भजनों की रचना भी करते हैं दास साहब। तो चलिए दास साहब के साथ विचार विमर्श करने के लिए हम तैयार हैं, आइए कुछ सीखते हैं दास साहब से कि दीस दास साहब ने इस विषय में क्या समझा। दास साहब, सबसे पहली बार स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के बारे में आपने कब सुना, किसने बताया था आपको आध्यात्म क्या होता है, कब?
1: मैंने पहली बार आध्यात्मिकता के बारे में अपनी मामा को सुना। मेरे मामा का नाम था डॉक्टर प्रणव रंजन घोष, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला साहित्य का अध्यापक थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे और वो आध्यात्मिक कथा के मूर्ति थे। उन्होंने काफी खूब सारे किताब, खूब सारे रचना लिखे थे आध्यात्मिक कथा के ऊपर। उनका पीएचडी का जो टाइटल था वो आध्यात्मिक बांग्ला साहित्य में स्वामी विवेकानंद के प्रभाव, ये उनका था पीएचडी का टाइटल। वो एशियाटिक सोसाइटी के फेलो भी थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो मैं उनसे ये आध्यात्मिक कथा सीखा।
0: ऑलराइट, तो जाहिर सी बात है इतने प्रबुद्ध इंसान से, इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्व से आपने अध्यात्म के बारे में जाना, तो हमें भी बताइए कि अध्यात्म क्या मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज, हम क्या समझे अध्यात्म से, कोई एक साधारण व्यक्ति क्या समझे?
1: आध्यात्मिक मतलब के दो मतलब होता है, दो मायने होता है। एक है जो थियोरिटिकल, आध्यात्मिक कथा है स्वयं को खोजना, स्वयं की आत्मा को खोजना और उसको ये विश्वात्मा से उसको मिलाना, ये थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल है आध्यात्मिक कथा का अर्थ है भेदभाव नहीं करना और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना।
0: ओके, ऑलराइट, सो आज ये चीज और बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जैसा दास साहब ने बताया कि आध्यात्मिकता के दो मतलब हो सकते हैं, एक जो लिटरल मीनिंग है उसका, जो लिटरल मीनिंग है वो है आत्मा का अध्ययन, परमात्मा के साथ मिलन और आपस में उन दोनों का संबंध सीखना, और दूसरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दास साहब ने बताया है कि निस्वार्थ भाव से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। बहुत सुंदर, एक नई तरीके की परिभाषा अलग शब्दों में आज दास साहब ने हमें बताई है, बहुत सुंदर। अगर इसी स्पिरिचुअलिटी के बारे में आगे बढ़कर बात करें तो चलिए, आपके तो मामा जी ने आपको इतने प्यार से बताया, आध्यात्मिकता के बारे में इतना डीप नॉलेज दिया, क्या आज के जो यूथ जनरेशन है उसको ये स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता ज्यादा समझ में आती है, और अगर आती है तो वो किस तरीके से इसको परसीव करते हैं, हाउ डू दे टेक इट, स्पिरिचुअलिटी को क्या समझते हैं वो?
1: ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, हम इस पर कोई सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं कर सकते।
0: ऑलराइट,
1: लेकिन ज्यादातर आजकल के जो यूथ है, इन लोगों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने का

0: है अपनी आय का एक अंश दान करना, ये लोग एक बड़ा समाज सेवा मानते हैं, ये एक तरह की यूथ में दिखता है। और दूसरा यूथ कुछ है जो आध्यात्मिक कथा में के लिए ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, वो लोग वी कॉल देम मेटेरियलिस्ट। ये लोग भोगवादी होते हैं, तो इनको आगे जाके करियर बनाना या बिजनेस में लाभ करना ये एक तरह का होता है। और जहां पे बिजनेस में लाभ करना है वहां पे वो लोग मंदिर मस्जिद में भी दान करते हैं, लेकिन वो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब में दिखाते हैं, ज्यादातर उनके रिपोर्ट में शो करने के लिए, क्या इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलने के लिए। अगर आप दान करेंगे किसी मंदिर में, भले ही आपका बिजनेस ना हो, आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, किसी मंदिर में आप दान करिए, चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करिए, आपको इनकम टैक्स का छूट मिलता है।
1: हाँ
0: ये एक है। और फाइनली कुछ पढ़े लिखे उच्च लेवल के व्यक्ति है, मैंने उन लोगों को देखा, उसके अंदर नोबेल लॉरेट भी है, नोबेल प्राइज विजेता भी है, वो लोग जुक्ति यानी लॉजिक या रीजनिंग पे बिलीव करता है, वो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान वैज्ञानिक आविष्कार जो होता है वो लोग उसके बेसिस पे उसके लॉजिक पे आगे जाके चलते हैं। एक जगह पे जाके वो लोग रुक जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को उतना तक जाके वहां उसके बाद वो लोग रुकते हैं, फिर सोचते हैं कि उसके आगे भी कुछ है, बस इतना तक।
1: बहुत क्लियर है कि आज का यूथ दरअसल स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचता है और उसको कैसे परसीव करता है, ये चीज दास साहब ने हमें समझाई। बिल्कुल ठीक दास साहब, जब हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप ही का गाया हुआ एक प्यारा सा भजन हम अपने सुनने वालों को सुनाएं, फिर वापस लौटते हैं आपसे बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए।

0: बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही प्यारी गायकी। दास साहब, आगे बढ़ते हुए इस विषय में बात करें तो आध्यात्म के बाद एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो बार बार डिस्कस किया जाता है, समझने की जिसको आवश्यकता है, वो है धर्म, यानी कि रिलीजन। क्या है धर्म आपके हिसाब से? आप क्या परिभाषा बताना चाहेंगे धर्म की?
1: मेरे हिसाब से, या तो मैंने जितना किताब पढ़ी है,

0: और जितना आध्यात्मिक लोगों की व्यक्तियों की जीवनी पड़ी है उसके हिसाब से धर्म और आध्यात्मिकता एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कोई धर्म समझो कि फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग कि मैं निराकार ईश्वर में विश्वास करता हूं, तो उसके बारे में नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटेन रियल लिरिक्स रियल पोएम्स ऑन हिज ऑन आवर डिवोशन ऑन हिज डिवोशन टू द फॉर्मलेस गॉड निराकार ईश्वर। तो उसमें निराकार ईश्वर धीरे धीरे एक जगह पे जाके एक ज्योति के हिसाब से प्रकट होते हैं जो हमें इफ वी विजुअलाइज इन आवर माइंड, अगर हम हमारे मन में कल्पना करें तो निराकार ईश्वर एक ज्योति होता है जिनका कोई आकार नहीं होता है। और ये अच्छे अच्छे क्लासिक इंग्लिश मूवी जैसे 10 कमांडमेंट्स वहां पर भी ये चीज दिखाया गया, ईश्वर एक ज्योति है, उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई गुण नहीं होता है। तो ऐसे और भी धर्म है जो निराकार निर्गुण ईश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें निराकार ईश्वर से जाके हम लोग उस ज्योति में हम लोग अपने आत्मा को खो देते हैं, मेरे मन की ज्योति उस ज्योति में विलीन हो जाता है। ये होता है आध्यात्मिकता अगर हम निराकार में विश्वास करें तो।
1: जी,
0: और अगर हम आकार में विश्वास करें तो उसकी उसके प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग है, तो वो हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, दैट इज एब्सोल्युटली सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, एक अलग ही तरह से दास साहब ने हमें इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और दास साहब का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा भजन पहले हम सुने, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत सुंदर। अब दास साहब आज की प्रैक्टिकल दुनिया की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आध्यात्म आपसे समझा, धर्म आपसे समझा, अब आज की दुनिया में अगर यंग जनरेशन हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है तो वो ये भी जानना चाहेगी और हम भी ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 90% कह लीजिए, या चलो ठीक है, मैं किसी परसेंटेज को यूज नहीं करूंगा, सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। तो सोशल मीडिया का स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर है?
1: सोशल मीडिया में कुछ आध्यात्मिक सामग्री भी मौजूद है, अच्छे सामग्री भी मौजूद है। तो जो सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों को मदद कर सकते हैं
0: जी,
1: जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में खूब सारे पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से पौराणिक कथा कुछ ऐसे है जो सारे धर्मों में कॉमन है।
0: ओके,
1: सारे धर्मों में सामान्य है, ऐसे कुछ पौराणिक कथा है। जैसे जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनुराग करता है उसको कुछ ना कुछ दर्द सहना पड़ता है। वो दर्द कहां से भी आए, कहीं से भी आए, किसी आदमी से भी आ सकता है, प्रकृति से भी आ सकता है, समाज से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रति उसका इतना भक्ति या जो भी है होता है, उसका चाहत होता है ईश्वर के लिए, वो उसको जाके आगे जाके अपना आत्म अनुभव, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलता है, उसको उस स्टेज तक, उस स्तर तक लेके जाता है कि बाद में समाज उससे उपकृत होता है, वो एक बड़ा संत, बड़ा महात्मा बन जाता है। उसके बातें सुन के हजारों भटके हुए लोग सही राह पे आते हैं। तो इसको ये एक तरह का प्रभाव आप बोल सकते हैं, जो रिलीजियन या धर्म के प्रभाव होता है आध्यात्मिक कथा के ऊपर। ये ज्यादातर आपके आध्यात्मिक कथा जो निराकार रास्ते में चलते हैं उनके लिए है, निराकार ईश्वर के रास्ते
0: जी।
1: और जो साकार ईश्वर के रास्ते में चलते हैं उनके लिए शायद मेरे हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ा ऑपोजिट है।
0: ओके,
1: वो पहले साकार ईश्वर को मानते हैं, मानने के बाद उनको उनका उस ईश्वर के भक्त हिसाब से उनका अपना अनुभव होता है, आत्मा अनुभव, फिर वो इस जगत को अपना अपना जो ऐश्वरिक प्रेम, डिवाइन लाभ वो देना शुरू करते हैं, तब उनसे मानव जाति उपकृत होते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से दोस्तों, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, कितने प्यारे ढंग से दास साहब ने इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। नाराकार ईश्वर और साकार ईश्वर में डिस्क्राइब करते हुए दास साहब ने हमें एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लें और एक भजन दास साहब की ही बहुत प्यारी सी आवाज में सुने, और फिर लौट के आते हैं हम दास साहब के पास।

0: बहुत सुंदर। अब दस, आप देखिए, ये तो थियोरेटिकल बात हुई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, निराकार ईश्वर के बारे में और साकार ईश्वर के बारे में। अब अगर हम लोग, फिर हम लोग ने सोशल मीडिया के बारे में भी बात की, आज का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दुनिया का। अब हम बात करें एक और प्रैक्टिकलिटी की, आध्यात्मिकता का हमारी जिंदगी में यूज क्या है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो क्या अध्यात्म हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से आजाद होने में हमारी मदद कर सकती है क्या? स्पिरिचुअलिटी वो कैसे करेगी हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में?
1: देखिए सर, एक सही आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में इन जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ये तो मन की बात है, ये सारी चीज मन की है। उनके शारीरिक दैहिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उनका बीपी वगैरह ये सब कम होते जाते हैं।
0: ओके,
1: दूसरी बात ये है सर, एक बात इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दान घर से होनी चाहिए। तो उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम करना चाहिए, उनको अपने माता पिता की प्रेम करना चाहिए बिना स्वार्थ के, कि माता पिता हमें उनका प्रॉपर्टी देंगे इसके लिए नहीं, ऐसा कोई मोह माया नहीं रहनी चाहिए। जब उनका जन्म हुआ, माता पिता ने अपने स्वार्थ भूल के उनको बड़ा किया, माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे आगे जाके बड़ा होके उनको देखेंगे कि नहीं, उनको केयर लेंगे कि नहीं, उन्होंने, कोई माता पिता ऐसा नहीं सोचते। तो उनको भी अपने माता पिता को सबसे पहले इसी तरह प्रेम देना है।
0: करेक्ट।
1: फिर अपने बच्चे जो होंगे, अपने पत्नी जो होंगे, उनके पति भी निस्वार्थ प्रेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तो यानी मतलब है आपके परिवार में आध्यात्मिकता की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू हो चुका है।
0: वाओ, ओके।
1: Okay. यानी आप सभी के अंदर अपने आत्मा को देख रहे हो, यू आर यूनाइटिंग योर सेल्फ विथ ऑल रेस्ट whosoever is अराउंड यू, आपके साथ जो है उनके साथ आपका आत्मा की एक जोग स्थापित हो गया, यही आत्मा आध्यात्मिकता।
0: वाओ, ब्यूटीफुल, क्या बात बताई आपने, एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आपने बड़ी ही प्यारी चीज हमारे सामने रखी भाई, बहुत सुंदर। कई बार ऐसा होता है कि इस चीज को समझ कर भी, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को समझ कर भी लोग बाग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। मतलब बात तो वही हो गई, कहने को कुछ और, करने को कुछ और, लेकिन फिर भी कोई एक सीधा साधा सा इंसान हो तो वो क्यों नहीं कर पाता है ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस, दास साहब क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
1: क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और त्याग की आवश्यकता है।
0: ओके।
1: और कुछ जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन या किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहचर्य, उनके साथ किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहना, जिसको बोलते हैं कि आपको संग बोलते हैं
0: जी,
1: साधु संघ, साधु जातक मीन, साधु का मतलब ये नहीं कि कोई फॉर्मली गेरुआ पहन के घूम रहा है, साधु व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उनके संगत से ये प्राप्त होता है। इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आत्मानुशासन, त्याग और ज्ञानी

0: की संग ये अगर मिले एक हो जाए, तब आपको धीरे धीरे आपके पास आध्यात्मिकता की झलक आना शुरू होगा।
1: ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, बहुत खूब। जाहिर सी बात है, उस तरीके का सानिध्य, उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ हो, तब हम उस तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सुंदर,
0: बिल्कुल
1: बहुत सुंदर सुधा साहब। तो चलिए एक और प्यारे से भजन के साथ एक पॉज लेते हुए दास साहब की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा भजन, और फिर हम वापस लौटते हैं।

0: दास साहब, फर्ज कीजिए कोई बहुत ही साधारण सा इंसान, सीधा साधा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो आपकी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम को सुनकर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छा अभ्यास हो सकता है, मेरे को शांति मिलेगी, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस वो कैसे शुरू करे, कुछ प्रैक्टिकल इजी रोजमर्रा के स्टेप्स थोड़े से सजेस्ट कीजिए ना।
1: देखिए सर, आध्यात्मिकता की शुरू वो कर सकते हैं ऐसे कि हमारे समाज में आज भी दारिद्र है, आज भी कुसंस्कार सुपरस्टिशन है, आज भी गलत अभ्यास गलत प्रैक्टिसेस है, तो जिनमें जहां पे लोग भटके हुए लोग हैं सही रास्ते में, लोग धीरे धीरे आज के युवा समाज में देखिए, आज के जो समाज ओवरऑल इट इज ज्यादातर इट एग्जिस्ट, ये कहां पे समाज टिका हुआ है आपको दिखेगा, नजर आएगा सोशल मीडिया में, लोग अपने परिवार अपने बंधु इन सबको साथ रहते लेकिन अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, कोई अपने लैपटॉप में डूबे हुए रहते हैं, तो इन लोगों को कोई कुछ समय नहीं है कि ये आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकालें। लेकिन एक चीज आप जरूरी है, अगर हर व्यक्ति समाज के एक कोई दरिद्र शिशु को, दरिद्र व्यक्ति को, दरिद्र कोई लड़का लड़की जो भी है, वो अपने साधक के अनुसार, हम जो कोई एक घंटा करके जो दरिद्र शिशु है उनको पढ़ाए, या किसी कहीं पर जाके, खूब सारे मैं आपको बोलता हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कलकत्ता में COVID-19 के टाइम में रविन हुड बोल के एक बैच हुआ करता था, जिसमें कॉलेज के लड़के अपने आप को रविन हुड सोचते थे, और जहां पर जिसको खाने की अभाव हो या कुछ द्रव्य की नेसेसरी आर्टिकल्स, जहां पर जिसका भी कुछ भी अभाव हो रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो लोग जाके उद्योग अपने उद्योग में अपने मेहनत में लोगों को हेल्प करते थे, खास करके ओल्ड कपल्स, बूढ़े पेरेंट्स जिनको अपने पुत्र छोड़ गए, खास करके कुछ दरिद्र फैमिली जो हु आर लिविंग ऑन फुटपाथ, ऐसे करे। तो ऐसे किसी सही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो समाज के लिए कुछ करता है, कोई ऊपर का दिखावट ही नहीं है, ऐसा कुछ है, इसमें लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकाले, निकाल के उनके साथ कनेक्ट करें, ऐसा ऐसा करके हम लोग आध्यात्मिकता का मतलब यही है कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति से क्या होगा अगर ये समाज का के लिए भी कुछ अच्छा ना हो, तो हम हमारे आध्यात्मिकता का इस तरह का हम शुरू कर सकते हैं कि हम समाज के काम में आए, समाज मतलब और दूसरे सारे लोग, मेरे परिवार के बाहर जो लोग हैं, सभी आम लोग हो जाए, जो आर्थिक रूप से आपके ज्यादा धनवान नहीं है, इन लोगों के कुछ काम में आए, जो पढ़ाई में पीछे है ऐसे बच्चों को कुछ काम में आए, ज्यादातर आप देख लेंगे सेंट्रल बोर्ड के जो होते हैं CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड, ऐसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा पढ़ाई में आगे होते हैं, स्टेट बोर्ड में जो है वो हम लोगों ने देखा है स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़ा पीछे होते हैं,
0: पीछे होते हैं।
1: काफी बच्चों के पास गांव में काफी बच्चों के पास सर मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होती है,
0: राइट,
1: आजकल के पढ़ाई AI ML से है, बहुत सारे एडुटेक कंपनी है, कॉलेज के पढ़ाई के साथ भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलता है, जो हमारे जो स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं मिलता, उनको पता भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को जो पीछे है, ये बच्चे हमारे समाज के जाति है, फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, तो वो अगर हम उन बच्चों को भी थोड़ा हेल्प करें, मदद करें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तो इसमें आध्यात्मिकता ही, ये आध्यात्मिकता ही प्रैक्टिस है, और कोई व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता उसको पता नहीं, स्पिरिचुअलिटी पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम करके वो अपने आप ये काम कर रहा है, तो वो बिना जाने विदाउट हिज नॉलेज ही इज स्पिरिचुअल।
0: वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी प्रैक्टिस है, जैसा कि अभी अभी दास साहब ने बता दिया, नॉर्मल रूटीन, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, आसपास ही बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग मिल जाएंगे जिनकी आपने मदद की, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। भाई वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर दास साहब की आवाज का एक और भजन हम लोग सुने, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत सुंदर। एक कदम पीछे लौटने की कोशिश करूंगा दास साहब। आध्यात्मिकता की बात हुई और धर्म की बात हुई, क्या ये दोनों एक चीजें हैं या अलग अलग?
1: सर, आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे के परिपूरक है, कंप्लीमेंटरी है, लेकिन लेकिन लोग धर्म के नाम पे कभी कभी माइथोलॉजी, ये पौराणिक कथाओं को आध्यात्मिक कथा के साथ वो लोग उलझ लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं।
0: ओके,
1: इसमें स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन धर्म है, या स्पिरिचुअलिटी एंड मिथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी रिलीजियन एंड मिथोलॉजी, आध्यात्मिक कथा, धर्म और पौराणिक कथा, ये तीनों चीजों के अंदर जो डिफरेंस है और जहां पर संपर्क है, इसके बारे में वेरी स्पष्ट सुस्पष्ट उनका कॉन्सेप्ट या आइडिया या धारणा होनी चाहिए। और वो धीरे धीरे, जैसे वो आध्यात्मिक कथा के रास्ते में धीरे धीरे जाएंगे या किसी धर्म के रास्ते में भी धीरे धीरे जाए, कोई सिंसियरिटी सही ढंग से अगर वो चले, तो वो एक दिन उनको इन तीनों के डिफरेंस, तीनों जो थोड़ा थोड़ा अलग है, तीनों एग्जैक्टली एक नहीं है, ये इन लोगों को आगे जाके पता चल जाता है, वो अपने अनुभव से पता चलता है।
0: Okay.
1: हम लोगों को जो एक सिक्स्थ सेंस है, जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं।
0: Yes.
1: इंट्यूशन आगे जाके अगर बहुत गहरा, स्ट्रॉन्ग, गहरा और बलशाली इंट्यूशन है, वो ही आगे जाके हमारा तीसरा नेत्र बनता है। तो उसमें ये पार्थक्य नजर आता है, जो नॉर्मल आईज, साधारण आंखों में नजर नहीं आता है।
0: बहुत सुंदर, सही बात।
1: तो सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता यही है, आत्मानुभव का रास्ता आध्यात्मिक कथा में यही है।
0: ओके, बहुत सुंदर भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपको ये भी आज समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है, क्या तो समानता है, या इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। बहुत सुंदर। चलिए ना, एक और भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं।

दास साहब, चलते चलते मुझे ये बताइए कि आगे आने वाला समय जो है, जो भी आज चल रहा है, ठीक है, आपने आध्यात्मिकता की, धर्म की जो कुछ भी जानकारी ज्ञान लिया, आपके मामा जी से लिया, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, आपका इंटरेस्ट था, सीखा आपने, और आज का जो करंट प्रोस्पेक्टिव है उसमें भी आपने दोनों की रेलेवेंस को, मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी जो रियलिटी है उसको समझा आज के प्रोस्पेक्टिव में,

0: अब आगे की बात करें, आगे का जो फ्यूचर है जो कि हम अपने यंग जनरेशन को देकर जाएंगे, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब रहेगा? क्या आगे बढ़कर, लेट्स से आगे 20 इयर्स ऑनवर्ड स्पिरिचुअलिटी काम आएगी? क्या उसकी सार्थकता होगी?
1: देखिए सर, निकट भविष्य में युद्ध बिना शादी की भविष्यवाणियां की जा रही है। तब अधिकाधिक लोग संसार की दिखावटी सुंदरता से विमुख हो जाएंगे। वे अपने भीतर झांकेंगे और स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे।
0: ओके।
1: तो ये आने वाले दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एक आशा रखते हैं कि आशा नहीं, आशा बोलिए या दुराशा बोलिए, एक तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, या इससे भी कम कुछ आजकल नहीं हो रहा है। आजकल का चारों तरफ जो युद्ध की माहौल बनी हुई है, अंतर्देशीय युद्ध की माहौल जो बनी हुई है, इसमें हम लोगों का वो जो भय है हमारे मन के अंदर, वो भय हम लोगों को जब सच हो जाएगा वो युद्ध, तब हम लोगों का बहुत नुकसान होगा। अपने अपने आदमी हम लोग खोएंगे, हम हमारे स्वजनों को खोएंगे, हम हमारे संपदा खोएंगे, शायद हम लोग अपना देश भी खो सकते हैं। तो उसमें उसी टाइम हम अपने भीतर भी जाएंगे, क्योंकि दुनिया का आकर्षण हमारे लिए उस टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी में से कुछ लोग अपने आप जाकेंगे, स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे, ये जब वो शांति को खोजना चाहेंगे।
0: करेक्ट।
1: तो ये आने वाले दिन का मुझे भविष्य ऐसा लगता है।
0: ऑल राइट, बिल्कुल सही बात है। आज के प्रस्पेक्टिव में जिस तरीके का भी माहौल चारों तरफ बना हुआ है, हम अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दास साहब ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक पिक्चर हमें दिखाई है कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तब लेकिन दास साहब का मानना है, और उन्होंने हमें बताया कि आध्यात्मिकता की, रिलीजन की, धर्म की और इस बारे में विचार करने की सार्थकता, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यूटिलिटी बढ़ेगी। सोचना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुख इतना ज्यादा हो जाएगा जब कभी किसी अपने को खो देंगे तो अवसाद में डूब जाएंगे, तो फिर आध्यात्मिकता ही है जो हमें बाहर निकालेगी। बहुत सुंदर,
1: बिल्कुल
0: भाई, बहुत सुंदर। दास साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर की आपने। सरल शब्दों में बताया कि क्या है आध्यात्मिकता, क्या है धर्म, क्या है उसका यूसेज, क्या है सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस, क्या है यंग जनरेशन के लिए उसका मतलब, बड़ी सारी चीजें आपने बहुत ही प्यारे ढंग से और आज के नए भाषा में आपने हमें समझाई। दास साहब, आपके भजन तो फिर सोने पे सुहागा हो गए। जिन बातों को आपने प्यार से समझाया, आपके भजनों ने उसको सपोर्ट किया और हमें बहुत बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या है अध्यात्म और क्यों हमें अध्यात्म को स्वीकारना चाहिए। चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप दास साहब?
2: सर, आपने मुझसे पूछा कि मैं श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव सिखाना चाहिए। राष्ट्र की आत्मा में अपनी आत्मा को देखना सिखाना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता स्वतः उत्पन्न होगी। स्वतंत्रता के इतिहास को ही देख लीजिए, हर स्वतंत्रता सेनानी आध्यात्मिक थे। एक और बात यह है कि हर कोई मृत्यु से डरता है, केवल आध्यात्मिकता ही इस भय को दूर कर सकती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस दी है दास साहब ने। दोस्तों, बिल्कुल सच, एकदम खरी खरी एडवाइस, बहुत खूब। दास साहब, बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत साफ तौर पे आपने कई चीजें हमें बताई और आपके भजन भी हमने प्यारे प्यारे सुने। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: मोस्ट वेलकम सर।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। आइए सुनते हैं एक गीत, शीर्षक है चलना सीखो।

बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं बैठी होती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लेकिन सच बताऊं, कभी कभी ये स्ट्रेंथ नहीं होती, ये थकान होती है। लंदन की सियोन जोन्स का एक केस सुन लीजिए और खुद ही जज करिए। उनके फादर ICU में एडमिट हुए। डॉक्टर से बात करना, मेडिकल नोट्स लेना, ट्रीटमेंट समझना, अपडेट्स लेना, सब कुछ उन्होंने अकेले हैंडल किया, हर चीज। रिजल्ट, स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उनके बाल झड़ने लगे उम्र से पहले। फिर भी उन्होंने किसी से हेल्प नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि आजकल का नया ट्रेंड है ना, हाइपर इंडिपेंडेंस, हर चीज हाइपर, हर चीज खुद करना, फिर किसी पे डिपेंडेंट मत होना, और इमोशनली भी खुद को सिर्फ मिसहैंडल करते रहना हर समय। साइकोलॉजिस्ट कैथलीन सैक्सटन कहती हैं, आज के टाइम में लोग आई डोंट नीड एनीवन को पावर समझने लग गए हैं। लेकिन रियलिटी में ये लोनलीनेस, बर्नआउट और डिस्टेंसेस क्रिएट करता है और कुछ नहीं। सोचिए, अगर आप हमेशा सब कुछ खुद करते रहोगे तो लोग इवेंचुअली मान लेंगे इसे हेल्प की जरूरत ही नहीं है, और फिर जब सच में जरूरत होगी शायद कोई आगे ही नहीं आएगा। बहुत बार ये हैबिट बचपन से शुरू होती है, जब इमोशनल सपोर्ट कंसिस्टेंट नहीं मिलता, जब ट्रस्ट्स बार बार ब्रेक होते हैं, जब बच्चा क्वाइटली यही डिसाइड कर लेता है कि फाइन, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ, और वो सर्वाइवल मोड अडल्टहुड तक चलता है। लेकिन सर्वाइवल और कनेक्शन अलग चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम इंसान हैं, कोई सोलो प्रोजेक्ट नहीं। उर्वशी लाड 43 साल तक सिंगल रही। उन्हें लगता था हेल्प मांगना मतलब वीक दिखना है। उन्होंने थेरेपी और जर्नलिंग स्टार्ट की, स्लोली खुद को ओपन करना सीखा। उन्होंने बताया, पहली बार जब उन्होंने किसी को कॉफी के लिए पे करने दिया, उन्हें बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। कॉफी लेने देना भी अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वही स्मॉल स्टेप उनकी लाइफ चेंज कर गया। आज वो शादी करने वाली हैं। कभी कभी हीलिंग ग्रैंड जेस्चर नहीं, छोटी सी कॉफी से शुरू होता है। सारा हार्टिश एक बड़ी सिस्टम को सजेस्ट करती हैं। एक ऐसा फ्रेंड या पार्टनर चूज करो जो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो। वीक में एक बार उसके साथ बैठो, अपना वर्कलोड शेयर करो, उनसे एडवाइस मांगो। बस एक एडवाइस मांगना ये सिग्नल देता है कि तुम मैटर करते हो मेरे जीवन में। और डॉक्टर नादिया रहमान भी यही कहती हैं कि हम सब बायोलॉजिकली कनेक्शन के लिए बने हैं। कोलैबोरेशन ह्यूमन नेचर है, तो हेल्प लेना वीकनेस का साइन कैसे हो सकता है? शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम परफेक्शन में ट्रैप हो गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बस हेल्प लेने से डरते हैं। हमें लगता है अगर किसी ने हेल्प दी और वो परफेक्ट नहीं हुई तो शायद हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, या शायद कोई मना कर दे हेल्प करने से तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पर रिलेशनशिप परफेक्ट आउटपुट के लिए नहीं होते, वो शेयर्ड एफर्ट के लिए होते हैं।
अगली बार जब कोई चैलेंज आए तो खुद से एक लाइन बोल कर देखिए, इस बार अकेला नहीं, इस बार मिलकर। हो सकता है पहले ऑकवर्ड लगे, हो सकता है सामने वाला आइडियल रिस्पॉन्स ना दे, पर स्ट्रॉन्ग होना ये नहीं है कि आप कभी रोए नहीं। स्ट्रॉन्ग होना ये है कि जब रो रहे हो तो किसी को कॉल कर सको और बिलीव करो कि वो उठाएगा, वो रहेगा, वो साथ देगा। दोस्तों, हाइपर इंडिपेंडेंस शील्ड लग सकता है, लेकिन शील्ड पहनकर आप किसी को गले नहीं लगा सकते। कभी कभी आमर उतारना पड़ता है, हेल्प मांगनी पड़ती है। हेल्प मांगना कोई वीकनेस नहीं है, वो सच में करज है। और शायद असली स्ट्रेंथ यही है, जब आप एक्सेप्ट करते हो, मैं अकेला नहीं रहना चाहता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत सॉर्टेड चलती है। सुबह 6 बजे योगा, ग्रीन माचा, सनराइज की रील। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे तो मेरी सिर्फ एक ही रील चल रही होती है, मेरी बेडशीट लपेटने की रील। लोग कहते हैं ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, मैं कहती हूँ ग्रेटफुल कि वाईफाई चल रहा है यार।

darang

जब खामोशी ने जान बचाई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि खामोशी भी किसी की जान बचा सकती है? हम अक्सर सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जोर से बोलता है, जो स्पीचेस देता है, जो आवाज उठाता है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी खामोशी। नाम था मार्सेल मार्सियो। आज सारी दुनिया उन्हें सबसे मशहूर माइम आर्टिस्ट के नाम से जानती है। एक ऐसा कलाकार जो बिना एक शब्द बोले हंसा देता था, रुला देता था और सोचने पर मजबूर कर देता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उन्हें खामोश रहना सीखा कैसे और क्यों। वर्ल्ड वॉर टू का वक्त था, फ्रांस पर नाजीज का कब्जा था। मार्सेल एक यंग ज्यूइश लड़का था। स्टेज और स्पॉटलाइट के सपने देखने की जगह वो सर्वाइवल का मतलब समझ रहा था। ये वो दौर था जहां गलत नाम, गलत पहचान और एक गलत आवाज मौत का सबब बन जाता था। मार्सेल ने फ्रेंच रेजिस्टेंस ज्वाइन की। वो बंदूक लेकर लड़ने नहीं गया, उसका मिशन कुछ और था। उसे बच्चों को बचाना था। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे, कुछ इतने छोटे कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, खतरा होता क्या है। उन्हें नाजी टेरिटरी में चुपचाप निकलना था, फॉरेस्ट से गुजरना था, चेक पॉइंट्स क्रॉस करने थे, सोल्जर्स खड़े थे जो जरा सी भी आवाज पे सब खत्म कर देते थे, और सबसे मुश्किल काम, बच्चों को चुप रखना। आपने कभी छोटे बच्चों को 5 मिनट से ज्यादा चुप करवाने की कोशिश की है? यहां बात घंटों की थी, दिनों की थी, जिंदगी की थी। ना गाना, ना कहानी जोर से, ना हंसी की आवाज, सिर्फ खामोशी, एक लंबी खामोशी। लेकिन मार्सेल ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। उसने खामोशी को पनिशमेंट नहीं बनाया, उसने खामोशी को खेल बना दिया। अपने एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन से, इनविजिबल ऑब्जेक्ट से, हवा में कहानियां बनाकर, बॉडी लैंग्वेज से, आंखों की चमक से वो बच्चों को एंटरटेन करता। वो हवा में इमेजिनरी बॉल उछालता, इनविजिबल रोप खींचता, गिरते हुए वॉल का ड्रामा करता। बच्चे हंसते थे लेकिन बिना आवाज के। वो डर को वंडर बना देता था, खौफ को क्यूरियोसिटी में बदल देता था। वो फॉरेस्ट्स के बीच कांस्टेंट थ्रेट के नीचे एक साइलेंट परफॉर्मेंस चलता था, और वो परफॉर्मेंस सिर्फ आर्ट का नहीं था, वो शील्ड था, एक प्रोटेक्शन था। बच्चे चुप थे क्योंकि वो डरे हुए नहीं थे, वो कैप्टिवेटेड थे। एक एक करके मार्सेल उन्हें सेफ बॉर्डर तक ले गया। हर बच्चा, जो भी बचा, एक फ्यूचर था जो जिंदा रहा, एक कहानी जो खत्म नहीं हुई। वॉर के बाद जब दुनिया ने क्लैप किया, जब स्टेज लाइट्स जली, जब मार्सेल ने अपना आइकॉनिक कैरेक्टर बिप द क्लाउन क्रिएट किया, तब तक वो सिर्फ परफॉर्मर नहीं था, वो इंसान था जिसके लिए खामोशी का मतलब अप्लॉज नहीं, जिंदगी था। उसकी साइलेंस एम्प्टी नहीं थी, वो फिल्ड थी, भरी हुई थी यादों से, ट्रॉमा से, करेज से, और सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी से। इसलिए शायद जब मार्सेल स्टेज पर इनविजिबल वॉल बनाता था, लोग सिर्फ एक फनी एक्ट नहीं देखते थे, वो देखते थे एक इंसान जिसे पता था कभी कभी आवाज से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। आज के दौर में हम नॉइस से घिर गए हैं। नोटिफिकेशंस, डिबेट्स, ओपिनियंस, लाउड रिएक्शंस, ट्विटर वॉर्स एंड क्या नहीं। हर किसी को बोलना है, हर किसी को सुना जाना है। लेकिन शायद मार्सेल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि साइलेंस भी एक एक्शन है। कभी कभी सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जिंदा रहना होता है। स
सबसे बड़ी आर्ट प्रोटेक्ट करना होता है, और सबसे बड़ा करेज होता है डर के बीच में किसी और को मुस्कुराने का एक रीजन देना। मार्सल मार्सेओ ने दुनिया को सिर्फ हंसाया नहीं, उसने दुनिया को बचाया, और शायद इसीलिए आज भी उसकी खामोशी बोलती है, क्योंकि वो खामोशी कभी खाली नहीं थी, वो इंसानियत से भरी हुई थी। सुनकर देखिए।

0: खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न दूंगा, मगर ये कहूँगा, मगर ये कहूँगा।
1: क्या?
0: यही है, यही है, यही तो है वो।

खामोशी से खिलना और खामोशी से खिलने की कला। कभी ऐसी सुबह होती है जब दुनिया थोड़ी ज्यादा तेज लगती है, हॉर्न की आवाज, नोटिफिकेशंस की वाइब्रेशंस, डेडलाइंस का प्रेशर और वो अजीब सी थकान जो पूरी नींद लेने के बाद भी फील होती है। लेकिन इसी दुनिया में किसी कोने में एक छोटा सा फूल खिला होता है, ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई स्पॉटलाइट, ना कोई सेलिब्रेशन, बस धीरे से एक पंखुड़ी खुलती है और उस खामोशी में जीने का एक पूरा लेसन छुपा होता है। मैं इसे कहती हूं द फ्लावर बींग, जैसे ह्यूमन बींग होता है। फ्लावर मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है, ये याद करना है, वापस आना है, खुद से खुद को मिलवाना है। जब हम सच में किसी फूल के पास बैठे होते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए, तब कुछ बदलने लगता है। आप नोटिस करना अगर अभी तक नहीं किया। उस फूल की खूबसूरती में कोई एफर्ट नहीं है, वो इम्प्रेस नहीं कर रहा, वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, वो बस धूप को एक्सेप्ट कर रहा है, बाहें फैलाए हवा को महसूस कर रहा है और वक्त को अलाव कर रहा है। और धीरे धीरे हमारा मन भी कोमलता में घिर जाता है। कभी आपने फूल को ध्यान से देखा है, सच में देखा है? उसकी स्टेम का हल्का सा झुकना, पेटल्स का टेक्सचर, लाइट का उनके किनारों पर हिलना, बस कुछ पल के लिए अंदर की सारी नॉइज खत्म हो जाती है, अर्जेंसीज डिसॉल्व होने लगती हैं। जो बचता है वो होता है एक प्रेजेंस, और वही मेडिटेशन है। हर फूल के अंदर एक सीक्रेट होता है, ब्यूटी और इम्परमनेंस दुश्मन नहीं होते। बट किसी कली का फूल तक जो सफर होता है वो इतना सुंदर होता है, इतना सेक्रेड होता है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। फूल को कोई पैनिक नहीं होता खिलने का, उसे डर भी नहीं होता मुरझाने का, वो सिर्फ अपने सीजन्स को ऑनर करता है। और हम क्या करते हैं? हम सब समय एंडिंग से डरते हैं, हम विंटर्स को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट स्प्रिंग का आतुरता से सिर्फ वेट करते रहते हैं। लेकिन असली ग्रोथ सरेंडर मांगती है। जैसे अनीस निन ने कहा है, एक दिन आता है जब बड बनकर रहना ब्लॉसम होने से ज्यादा पेनफुल हो जाता है।

फूल कभी कली बनकर छिप नहीं सकता, ना छिपा रहता है, वो खुलने का रिस्क लेता है। अलग अलग कल्चर्स में फूल हमेशा अवेकनिंग का सिंबल रहे हैं। वेदास में सहसरा लोटस, जो सर के ऊपर डिवाइन अवेयरनेस की अनफोल्डिंग है। बुद्धिज्म लोटस में कीचड़ से उठकर प्रिस्टीन ब्लूम बन जाना। और सूफी पोएट्स के लिए हर पत्ता हर बूटा एक कहानी कहता है। रूमी कहते हैं, हर पंखुड़ी एक विजिबल प्रेयर है। और साइंस भी मानता है, फूल देखने से हार्टबीट स्लो होती है, स्ट्रेस कम होता है और मूड अपलिफ्ट होता है। जापान के शिरिन युकू, फॉरेस्ट बेदिंग जिसको कहते हैं, ये बताता है कि नेचर वापस देता है वो सब जो नॉइस छीन लेती है। लेकिन सच कहूं, हमें रिसर्च की जरूरत नहीं थी। जो इंसान शाम के वक्त एक गेंदे के फूल को देख चुका है, वो जानता है कि थेरेपी क्या होती है। जब हम फूल के साथ बैठते हैं, पहले हम उसका कलर देखते हैं, उसकी खुशबू महसूस करते हैं, धीरे से बाउंड्री ब्लर होने लगती है। आप सन को लाइट नहीं, वार्म्थ के रूप में महसूस करते हैं। हवा को सिर्फ हवा नहीं, स्पर्श के रूप में देखते हैं। फूल अपनी जगह क्वेश्चन नहीं करता, वो कंपेयर भी नहीं करता, और वो जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करता। वो अपने टाइम पर खुलता है, अपने टाइम पर बंद होता है, और अपने टाइम पर मिट्टी में लौट जाता है। उसका ट्रस्ट क्वाइट है, पर कंप्लीट है, मुकम्मल है। और शायद वही विजडम हम सभी ढूंढ रहे हैं, अपने टाइम पर भरोसा करना। हमारे अंदर भी सीजन्स होते हैं, कभी हम बड होते हैं यानी कि कली, हेजिस्टेंट डरे हुए बट पोटेंशियल से भरे हुए। कभी हम ब्लूम करते हैं, एक्सप्रेसिव और खिले हुए। और कभी हम बस फेड हो जाते हैं, जैसे फूल का गिरना या मुरझा जाना, जिसको हम जानते हैं लेटिंग गो के नाम से। हर फेज जरूरी होता है। मॉडर्न लाइफ हमें सिर्फ करने पर फोकस करना सिखाती है, फिक्स करो, इम्प्रूव करो, चेस करो। लेकिन फूल एक सच कहता है, बिकमिंग फोर्स से नहीं होती, बिकमिंग स्पेस देने से होती है। आप हैमर से बड को नहीं खोल सकते, पुश करके पेटल्स नहीं ला सकते। ग्रोथ को सिर्फ अलाउ किया जा सकता है। जब मैं आज एक फूल देखती हूँ, मुझे उसकी फ्रेजिलिटी नहीं दिखती, उसकी कोमलता सिर्फ नहीं दिखती, मुझे उसमें दिखती है एक क्वाइट स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ जो चिल्लाती नहीं, जो कंपेयर भी नहीं करती, जो बस अपनी जगह पर खिलती रहती है। हर ब्लूम एक छोटा सा मिरेकल है। और जब उसका सीजन खत्म होता है, वो जमीन पर गिरता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगली बार जब आप किसी फूल के पास से गुजरें, जरा सा रुकिए, सिर्फ देखिए मत, विटनेस कीजिए, उसकी खामोशी को महसूस कीजिए, उसकी ओपननेस को देखिए, और शायद आप भी थोड़ा सा धीरे खिलने लगे। इस दुनिया में जो हसल मांगती है, फूल हमें स्टिल रहना सिखाता है। और शायद सबसे बड़ा मेडिटेशन यही है, आंखें बंद करना नहीं, पर आंखें खोल के एक फूल को देखना, उसे महसूस करना, उसे अपने जीवन में उतारना। इसे ही फ्लावर बीइंग कहते हैं। शायद ह्यूमन बीइंग को कुछ सिखा दे, सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ऑनलाइन शॉपिंग ने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोटो में मॉडल को देख के लगता है ये जैकेट में तो मैं हीरो लगूंगा। पार्सल आता है, मैं पहनता हूँ, मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और लगता है जैकेट नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशंस टाइट थी। फिर रिव्यू पढ़ता हूँ, एग्जैक्टली सेम एज शोन। तब समझ आता है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं थी।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपनी खुद की प्रतिभा, अपने खुद के चरित्र और अपने खुद के बारे में। इस बात को आराम से समझिए दोस्तों, आप ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएशन, रचना, कृति या कुछ भी कह लीजिए, प्रकृति में उपस्थित एक

ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई कंपटीशन नहीं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा कुछ सामान ले जाएगा, मेरा हक छीन लेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। प्रकृति के नियम हैं, जो आपके लिए आया है वो कोई दूसरा ले ही नहीं जा सकता। होड़ में मत लगिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने आप में धैर्यवान रहते हुए पूरी तरह से सुनिश्चित रखिए, करिए कि आप वही हैं जो ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा है और सब कुछ आपके लिए तय है। अपना काम करते चलिए। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते चलिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते चलिए। यूं तो गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि काम करता चल, फल की इच्छा मत कर। लेकिन दोस्तों, हम इंसान हैं, बिना फल की इच्छा किए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो जितना मैंने समझा उसके हिसाब से मैं सुझाव दे देता हूं। आपको जमे तो रखिए, नहीं जमे तो जाने दीजिए। वो ये कि काम करते तो जरूर चलिए, फल भी अपने दिमाग में रखिए, लेकिन दूसरों के फल को देखकर तड़पिए मत। गौर कीजिए, हम इंसानों की यही तकलीफ है। किसी के पास कोई बेहतर गाड़ी, कोई बेहतर मकान, कोई बेहतर सुविधाएं, कोई बेहतर कपड़े और न जाने क्या क्या। हम अपने आप को बस उनसे कंपेयर ही करते चलते जाते हैं। जो हमें मिला, जो हमारे पास है, जो हमें मिलने वाला है, जो ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे लिए तय कर रखा है, हम उसके बारे में जरा सा भी न तो शुक्रिया कहते और न ही खुश होते हैं। गौर कीजिए ना आप, क्या सचमुच आपके पास जो मोबाइल है उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? क्या सचमुच आपके पास जो बाइक है, जो कार है, जो मकान है, जो परिवार है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? जब आपने उनके लिए शुक्रिया अदा किया ही नहीं तो और कैसे मांगेंगे आप? ये तो कुछ ऐसा है ना कि आपको चाय दी गई पीने के लिए, मजे लेने के लिए, रिफ्रेश हो जाने के लिए, और आप कहते हैं नहीं साहब, मुझे तो कॉफी चाहिए। अरे, जो आया सामने वो ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है, प्रकृति ने, कुदरत ने आपके पास भेजा है, पहले उसे स्वीकार कर उसका शुक्रिया अदा तो कहिए। मेरा बहुत तहे दिल से मानना है, जिंदगी में और बहुत सारा कुछ पाने के लिए आसान सा एक तरीका है शुक्रिया कहते चलना। जो भी है हमारे पास, शुक्रिया कहते चलिए। इससे कुदरत को एक संदेश मिलता है कि इस इंसान को और चाहिए, तभी तो जो कुछ भी मैंने इसे दिया वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, तो इसे और दो। जिस भी वक्त आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो कुदरत को यह संदेश मिलता है कि ठीक है, इस इंसान को और नहीं चाहिए, ये चीज, ये सुविधा या ये समृद्धि मैं किसी और को दे देती हूं। इसलिए जो कुछ भी आए शुक्रिया कहिए और की उम्मीद में खुश रहिए दोस्तों।

चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं हरमन हेस से, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये मानव सभ्यता की नाकामी ही तो है कि ना तो मन की आग शांत होती है और ना ही युद्ध की। रह रह कर धधक उठती है और इंसान अपने ज्ञान की तमाम महान पवित्र पोथियों को किनारे रखकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। युद्ध के दिन दिलो दिमाग से मिटाई नहीं मिटते। उन दिनों भी दुनिया पहले विश्व युद्ध पर उतरी हुई थी। माहौल ऐसा बन गया था कि लगता था किसी ना किसी दिन सबको लहूलुहान होना पड़ेगा। वो दुबले पतले से भावपूर्ण नैन नक्श वाले लेखक भी युद्ध की आंच से तप रहे थे। जब पास ही आग लगी हो तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जाता। यूरोप के ज्यादातर कवि लेखक भी देश के लिए बंदूक थाम चुके थे। कुछ युवा लेखकों की तो जंगी मोर्चे पर जान भी जा चुकी थी। सभी पर युद्ध में जाकर दो दो हाथ करने का गजब का दबाव था। इस लेखक ने भी अपना नाम इंपीरियल सेना में बहाली के लिए लिखवा दिया, पर उस नाजुक मन रचनाकार को युद्ध लड़ने के अयोग्य पाया गया। उन्हें युद्ध बंदियों की देखभाल से जुड़ी सेवा में लगा दिया गया। ऐसा लगता था कि दुनिया अब लड़कर ही खत्म होगी। कवियों के बीच भी बहुत नफरत पसर गई थी। उन्हीं दिनों इस नफरत के खिलाफ इस लेखक ने एक लेख लिखा। उन्होंने सबको समझाया कि राष्ट्रवादी पागलपन और नफरत की खाई में ऐसे ना गिरें कि फिर निकलना ही मुमकिन ना हो। नफरत से बड़ा है प्यार, क्रोध से बड़ी है समझ और युद्ध से महान है शांति। दुर्भाग्य की बात है, कोई नहीं समझ पाया। लेखक बिरादरी दुश्मन हो गई और मीडिया शब्द बाण बरसाने लगा। बहुत धमकियां मिली। लेखक का घर से निकलना दूभर हो गया। उन्होंने अपने भारत प्रेमी मित्र लेखक रोमा रोला को पत्र लिखा, दोस्त, सियासी मामलों में प्यार आजमाने की मेरी कोशिशें नाकाम हो गई। निर्णायक पल था, दिल बिखर गया। अवसाद ने अपने भंवर में लपेट लिया। वैसे भी मुसीबतें खुदरा नहीं, थोक में आती हैं। पहाड़ की तरह साथ खड़े पिता जिंदगी की जंग हार गए। सगा पुत्र गंभीर बीमारियों में पड़ गया और पत्नी की मानसिक दशा अपनी दिशा भटक गई। फिर तो कुछ भी ना बचा, कौन संभालता। मन इतना डगमगाया कि दिमाग ने भी जवाब दे दिया और लेखक का शरीर एक मनोरोगी उपचार केंद्र में पहुंच गया। एक अच्छे लेखक के बारे में लगभग घोषणा ही हो गई कि उसे युद्ध की आंधी उड़ा ले गई है। पढ़ना लिखना तो छूट ही गया, पर सौभाग्य की बात थी कि उन्हें मनोचिकित्सकों ने बहुत सहारा दिया। जो अच्छी चीजें उनके अंदर सूख गई थी उन्हें फिर से हरा भरा करने की कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगी। किसी भी तकलीफ या किसी एक हार पर दुनिया खत्म नहीं होती। सुख दुख, भोग योग, संयम त्याग, उपवास की ओर मन बहने लगा। दुख के बादल भी ओझल होने लगे। धर्म चिंतन ने तमाम कष्टों और असुरक्षा बोध की गहरी गुफा से बाहर ला दिया। सनातन धर्म के साथ साथ गौतम बुद्ध बार बार याद आने लगे। लेखक महोदय कुछ वर्षों पहले जर्मनी से श्रीलंका तो आए थे, पर भारत आने से पहले बीमार पड़ गए थे और स्वदेश लौटना पड़ा था। पर भारत के पास से गुजरते हुए इस मोक्ष भूमि के प्रति प्रेम का बीज उनके मन में पहले से पड़ा हुआ था, वो अब अंकुरित हो गया। उन्होंने भारतीय दर्शन और बुद्ध को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा। नाम था सिद्धार्थ। भोग में भी योग तलाश करने की कला के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो ज्ञान उन लेखक महोदय को मिला, उसने कमाल कर दिया। साहित्य की दुनिया में जब सिद्धार्थ का आगमन हुआ, तब विश्व युद्ध बीत चुका था और दुनिया विकास की नई लहर से पुलकित हो रही थी। दुनिया ने अपने एक महान लेखक हरमन हेस को भारतीयता से ओतप्रोत नई रोशनी में देखा। सिद्धार्थ लिखने के बाद हरमन न जाने कितनी वर्जनाओं और उलझनों से एक झटके में उबर गए।
तो फिर घर नहीं लौटे। उन्होंने पुराने जीवन के कारागार को तोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में जा बसे। दुनिया को एक से बढ़कर एक कृतियों से संपन्न कर दिया और साहित्य के सर्वश्रेष्ठ सम्मान नोबेल से नवाजे गए। अकेले अमेरिका में इस उपन्यास की 50 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। गौर कीजिए, हरमन हेस 1877 से 1962 तक यह पुस्तक अपने भारत प्रेमी मित्र रोमा रोला के नाम समर्पित की थी इन्होंने। जी, वही रोमा रोला जिन्होंने कभी कहा था, यदि पृथ्वी पर कोई एक जगह है जहां जीवित मनुष्यों के सभी सपनों को शुरुआती दिनों से ही घर मिला हुआ है, जब मनुष्यों ने अस्तित्व का सपना देखना शुरू किया था, तो वो भारत है।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

आइए दोस्तों मिलते हैं कैडेंस लाइटनर से, जो एक समाज सेविका हैं। मां के मन को तो भगवान ही जानता है। मां की ममता का विस्तार वहां तक होता है जहां किसी की कोई पहुंच नहीं होती। मां ऐसे खतरों के प्रति भी सचेत होती है जो शायद कभी होते ही नहीं। बच्चे की हिचकी से जमीन पर पैर रखने तक और गोद से उतरकर कदम जमाते तक सब कुछ मां को महसूस होता है। पर यहां तो इस मां की एक बच्ची कुछ कदम नहीं, बल्कि इतनी दूर चली गई कि जहां से कोई नहीं लौटता। मन में दर्द के ज्वार उमड़ते हैं और मां बेचैन बावली हो उठती है। वो मां सोचती रहती है कि मेरी बच्ची का भला क्या दोष था। वो तो सड़क किनारे चुपचाप मस्ती से चली जा रही थी, पर पीछे से एक गाड़ी आई और 125 फीट दूर घसीटती ले गई। क्या ड्राइवर इतना बेहोश था कि सड़क से किनारे साइकिल पथ पर गाड़ी दौड़ाने लगा? लोगों ने बताया कि ड्राइवर नशे में था, नशे में ही सब तबाह कर दिया। वो मां भागती हांफती घर पहुंची। किसी ने बताया था कि हमने कैरी को खो दिया। मां ने विश्वास के साथ कहा, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो यहीं कहीं पड़ोस में होगी, हम खोज लेंगे उसे। तब उस मां को दो टूक बताया गया कि सुनो, तुम्हारी बच्ची कैरी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक कार वाले ने टक्कर मार दी और अब वो चल बसी, अब ना लौटेगी। ये सुनकर तो मानो अंधकार टूट पड़ा, बदहवासी छा गई। जब कुछ होश आया तो मन हुआ कि बच्ची के अंग अगर किसी के काम आ जाएं तो। तब डॉक्टर्स ने कहा, माफ कीजिएगा, दुर्घटना में एक भी अंग सलामत नहीं बचा। यह सुनकर तो दिल और बैठ गया। तब दुख और रोष की गठरी बनी हुई इस मां ने कहा, उस ड्राइवर को मत छोड़ना जिसकी वजह से मेरे आंगन ने अपनी प्यारी चिड़िया को हमेशा के लिए खो दिया, जिसने मेरे चहचहाते हुए संसार को हाहाकार में बदल दिया, उस अपराधी को मत छोड़ना। मन तो नहीं मानता था। वो मां अक्सर उस जगह से गुजरती थी जहां बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी और उस दिन वहां पुलिस वाले जांच में जुटे थे। सवाल से भरी हुई वो मां वहीं रुक गई तो पता चला कि दोषी ड्राइवर खुलेआम घूम रहा है, जमानत हो गई उसकी, उसके जेल जाने की भी कोई संभावना नहीं थी। और तो और ये भी पता चला कि वो शराबी आदतन दुर्घटनाएं करता ही रहता है। ये दुर्घटना तो उसके खिलाफ चौथा मामला है और वो कुछ ही दिनों पहले जमानत पर छूट गया। वो इस बार अपने घर में 3 दिन तक शराब पीने के बाद बस कार से तफरी करने निकला था। उसने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। पुलिस वालों ने ही बताया कि क्या करें, कानून ही ऐसा है कि सड़क दुर्घटना में सजा नहीं होती। नशे में धुत गाड़ी चलाना आम बात है, मासूम लोग रोज ही सड़कों पर मारे जाते हैं। ये सब जानकर उस मां का दिल सिर्फ रोया नहीं, गुस्से से उफन पड़ा। ठान लिया कि ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं है। ये रोज न जाने कितनी माओं की गोद सूनी करते हैं, ये सड़क पर ही नहीं बल्कि सभ्य समाज में भी चलने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को इनके ठिकाने पर पहुंचाना ही होगा। गुस्से और जुनून से लैस उस विरल मां कैडेंस लाइटनर पर अमेरिका की निगाह पड़ गई। लाइटनर ने देश में सबसे ज्यादा जुर्म होने वाले इन मामलों में व्यवस्था और सामाजिक स्वीकृति के प्रचलित रवैये को बदल देने के लिए बगावत का बिगुल बजा दिया। वो घर से निकल पड़ी और मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग अभियान की शुरुआत की। उन्होंने न केवल नशे में गाड़ी चलाने को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य करने का आंदोलन किया, बल्कि पीड़ितों की अग्रणी वकील भी बन गई। उन्होंने पीड़ितों और दुर्घटना में बाल बाल बचे लोगों को सिखाया कि अदालत में न्याय के लिए कैसे लड़ें। अमेरिका की संसद में भी उन्हें ध्यान से सुना गया। दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए और
सड़कों पर इंसानियत की बहाली के लिए अमेरिकी राज्यों और देश में 100 से ज्यादा कानून बनाए गए या बदल दिए गए। एक मां ने अनगिनत माओं के साथ मिलकर देश का मिजाज ही बदल डाला। उनका यह अभियान दूसरे देशों में भी जा फैला। अकेले अमेरिका में ही उन्हें 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाने का श्रेय मिला। वहां शराबी हत्यारों को 4 साल से लेकर 30 साल तक की सजा होती है। इस मां की संस्था के पास 20 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और करोड़ों रुपयों का कोष भी है। अद्भुत मां कैडेंस लाइटनर को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी नागरिकों में गिना जाता है। उन्हें राष्ट्र की अंतरात्मा और आंदोलन की जननी भी कहा जाता है।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश लेता हूँ। साइकिल पर चलता हूँ फिर भी फोन को फ्लाइट मोड पर डालता हूँ।
3: हंसो मत, बोलो

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: हमारे जल संसाधन।
2: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए ये इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
3: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
2: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
3: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
2: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है।

0: की धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
1: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहां तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है, और उसके नीचे भूमिगत जल।
0: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
1: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
0: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मानसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, 2 कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
1: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 1/10 भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं, तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
0: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और 3 तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
1: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है।

या किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है। या कई मौतें जल प्रदूषण से हो जाती हैं।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है। बांध के जल का उपयोग कृषि में सिंचाई के लिए नहरों के माध्यम से किया जाता है और सूखे में पानी की कमी से बचा जा सकता है। भारत में भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, रिहंद बांध, मिस्र में अश्वान बांध और पाकिस्तान में तरबेला बांध और अमेरिका में कूली और हैवर बहुउद्देश्य परियोजनाओं के उदाहरण हैं। वर्षा के पानी को जमा करके खेती के लिए और यहाँ तक कि घरेलू जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सावधानी से जमा किया हुआ पानी साफ होता है और सुरक्षित भी।

0: रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार। कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी बोलो, ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह, इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं। अरे हाँ सुनू दीदी।
0: हाँ,
1: ये जंगल कैसा होता है?
0: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
0: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
0: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, शेर, हिरण, हाथी, हाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है, है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा,
2: समझे? हाँ, ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई, अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ, और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा, पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा, वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और बेटे, अगर वन न हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो, वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें, जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी, वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काट कर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी, दादाजी ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा, झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा, ऐसा करते हैं?
2: हाँ, इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
2: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
0: दादाजी,
2: बोलो बेटे।
0: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
2: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
2: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: अरे रेंजर चाचा आप आइए। नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर आओ भाई और सुनाओ कैसे हो। आओ इधर आओ इधर।
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा और सुनाओ बच्चों दादाजी से क्या बातें हो रही थी।
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए।
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर,
2: बिल्कुल,
1: और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों
0: जी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहां वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा
1: जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी।
0: चाचा जी।
1: हाँ बेटा।
0: फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं।
1: शाबाश।
0: हाँ और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
0: चलो चलो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तोते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैया सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई। पिताजी, देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं?
3: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
2: अच्छा,
3: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
2: हाँ, अरे हाँ हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
4: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
3: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया। उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
5: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
3: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे है। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
5: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
3: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़। यहाँ से इसमें हंसने की क्या बात है?
5: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
3: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
5: ठीक है,
3: चल चल चल, हट हट।
5: ये अब नहीं निकलेंगी।
3: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
4: मैं इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
5: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
3: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
2: जी?
3: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
2: जी।
3: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
2: जी। अच्छा पिताजी।
3: हट, हट, हट।
4: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लपके। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
5: अरे अरे, अरे क्या करते हो जी?
3: गलती से लग गया।
5: आराम से।
4: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
5: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
4: माँ तालियां बजाने लगी और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
3: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
4: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
3: अरे
5: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
4: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
5: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
3: बाहर मत निकालो, तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूं और खुद तमाशा देखता रहूं?
5: सुनो तो, रुक जाओ।
4: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झुलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़े और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
3: गई।
4: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
6: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अभी सुन कर ये।
4: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो ना जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठा कर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
5: तुम्हारे बस की नहीं है।
3: फिर कोशिश करता।
4: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
3: अब देखो,
4: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा चींची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
3: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
5: हाँ।
3: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
5: अरे हाँ बेटे।
4: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ है, कहाँ है हमारे माँ बाप। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
5: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
4: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
3: अरे
4: वो उनकी नन्हे नन्हे चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
3: सच में
7: छोटे और बड़े।
8: अरे छोटे बड़े।
9: जी दादाजी।
8: मैंने तुम्हारे लिए जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
9: जी दादाजी।
8: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो। हाँ जाओ बेटा
9: खेलेंगे।
10: ओ भाई छोटे।
11: हाँ भाई बड़े।
10: आज हम पार्टी करते हैं।
11: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
10: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
11: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
10: सही कहा भाई तुमने। अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
11: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
10: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
11: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
12: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे। और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी। इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली,
1: रोटी और चावल मिले,
0: बहुत स्वादिष्ट है। छोटे?
2: हाँ भाई बड़े।
0: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
2: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो बस। अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे। क्यों है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना? कितने अच्छे लगते हैं दांत, तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल।
6: है ना
4: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी? लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
3: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
0: अरे भाई छोटे।
4: हाँ भाई बड़े।
0: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
4: हाँ
0: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
4: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
0: हाँ चलो चलो दादाजी।
4: दादाजी
0: भूख लगी है, बहुत भूख लगी है।
4: भूख लगी है।
7: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहां जगह बनाते हैं। चलो
0: चलो आओ। दादा, चलो
4: चलो
0: दादा, चलो।
3: इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। आज सबसे पहले सुनते हैं ये गीत, शीर्षक है रीछ।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, काव्य रचना प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार महेश प्रभाकर, गायन स्वर देवाशीष, धीरा घोष, अनुपमा, मेघा, दीक्षा, संस्कृति, राशि और अनुराग, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टांटिया भील 90.8 FM में। किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी काफी किसानों ने और विद्यार्थियों ने इसे अपने फोनों में डाउनलोड किया है और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के ऐप के माध्यम से लिया है। किसान साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का खेती बाड़ी कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि हमारा जो किसान है उसकी आय के स्रोतों में वृद्धि हो, साथ ही उन्हें नए आय के नए स्रोतों के बारे में जानकारी मिले, हमारे भारत देश की खेती संबंधी योजनाओं का लाभ उठा सके, साथ ही हमारे कृषि में होने वाले नए नए बदलावों को जान सके और देश विदेश की मंडी भावों के बारे में जान सके, साथ ही उन्हें मौसम के हाल से लेकर हमारे पर्यावरण के बदलावों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो कृषि भूमि है पूर्णतः पर्यावरण के ऊपर आश्रित है। इसीलिए किसान भाइयों हमें यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता है कि हमें पर्यावरण में हो रहे बदलावों को देखते हुए हमें हमारी कृषि में भी बदलाव की आवश्यकता है। किसान साथियों जैसा कि अभी आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आज हमारा जो किसान है वो किसान अभी व्यावसायिक खेती करने लगा है, व्यावसायिक खेती के लिए अधिक लाभ पाने के चक्कर में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है जिससे उन्हें अच्छी से अच्छी फसल हो मिल सके। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ कमाने अधिक से अधिक लाभ लेने के चक्कर

0: में हम हमारे पर्यावरण को, हमारे जल को, हमारे वातावरण को, हमारे कृषि भूमि को और हमारे जीव जंतुओं आदि को हम दूषित कर रहे हैं। किसान साथियों, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रासायनिकों का प्रयोग किए बिना जैविक दवाइयों का प्रयोग करके और जैविक खेती करके अच्छे से अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें एक बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि यह बदलाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जीव जंतु जो कि जो खरपतवार हम डालते हैं उसमें से काफ़ी खरपतवार है, जो हम खेतों से निकाल कर हमारे पशुओं को देते हैं, जो अनाज हम खाते हैं उसमें भी जितना हम रसायनों का प्रयोग करेंगे वो रसायन हमारे खाद्य फसलों में ही रह जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका प्रयोग कम से कम करें और हमें जैविक जितना हो सके हम जैविक कृषि की ओर ध्यान दें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: दोस्तों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली भी गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फसल बीमा योजना किस तरीके से हम करवा सकते हैं और फसल बीमा योजना से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से कैसे हम फसल योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: विभास कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर PC सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं सहायक आयुक्त फसल बीमा कृषि मंत्रालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णवीर चौधरी जी हैं अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से, कृष्णवीर जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप किसानों का पक्ष यहाँ पर रखेंगे और साथ ही हमारे साथ सुधाकर जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी काम करती है, और सुनील जी बताएंगे कि कैसे सरकार इस योजना को किसानों तक पहुंचा रही है, कैसे इसे और व्यवहारिक बनाया जा रहा है, किसान कैसे से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमारे साथ विभास जी हैं जो कि बताएंगे कि अगर किसान को किसी तरह की समस्या आती है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके लिए राह और आसान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट पर।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर बताया कि किस तरीके से योजना काम कर रही है, समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए ताकि किसानों के लिए और आसानी हो सके, और जो उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगी कि जो फसल बीमा वीक हम मना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, इसका मकसद क्या है?
3: देखिए, ये फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई है और इसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चूंकि इनरोलमेंट शुरू होता है, जनरली जो खरीफ का इनरोलमेंट है वो 1 जुलाई पर व्यवहारिक रूप से पिक पर रहता है या वहां से स्टार्ट हो जाता है, और जो कट ऑफ डेट है वो बहुत सारे राज्यों में 15 जुलाई है और बहुत सारे राज्यों में जो है 31 जुलाई है। तो इसमें ये किया गया था, इसका जो बनाने का स्वरूप था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक जगह जमा करें, सभी को सेंसिटाइज करें और फार्मर्स के इनरोलमेंट के प्रति उनको दायित्व फिक्स करें कि आप जो है इनको समझाएं, और जो भी उनकी जो मशीनरी है उसको पूरी की पूरी 1 सप्ताह में हम एक्टिवेट कर दें कि वो फसल बीमा इजी वे में हर एक जगह, हर एक गांव में, हर एक जगह वो पहुंच जाए ताकि किसानों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसका एक और पर्पस है कि चूंकि हम पहले योजना के बारे में बता देना चाहते हैं, तो और जो समय मिलता है किसान भाइयों बहनों को वो उसमें निर्णय ले पाएंगे और उसमें अच्छे से पूरे कागजात वगैरह जमा करके वो बीमा अपनी करा सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं कि पूरी स्टेक होल्डर्स को उसमें एक्टिवेट करना होता है।
1: मैं सुधाकर जी से जानना चाहूंगी, सर ये बताएं कि देखिए अभी हम फसल बीमा वीक मना रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो किसानों के मन में ये होता है कि कुछ नया किया गया होगा, कुछ चीजें बेहतर की गई होंगी, कुछ चीजें उनकी सहूलियत के अनुसार इसमें शामिल की गई होंगी। तो इस बार इस वीक में किसानों को क्या नया बताने वाले हैं, क्या नया उन्हें, क्या कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है?
4: जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि ये फसल बीमा सप्ताह हम ये तीसरी बार हम करने जा रहे हैं, पिछला खरीफ हुआ, फिर रबी हुआ, ये फिर से खरीफ आ गया है। तो इसका जैसे कई सारे उन्होंने बताया क्यों मनाया जा रहा है, उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी लोनी फार्मर थे, जो बैंक से लोन लेते थे, उनका अपने आप बीमा हो जाता था। अब जो है उनको बताना जरूरी है कि ये बीमा हम ले क्यों, तो जब तक उनके हम घर पे नहीं जाएंगे तो हर बार जो है कुछ ना कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको चुनते हैं। इस बार भी करीब 75-80 डिस्ट्रिक्ट चुना गया है और वो हर उसमें से कुछ कुछ ब्लॉक्स पे जाकर के, गांव के घर तक जाकर के, इतने अधिक मतलब जितने भी हमारे पास साधन है प्रचार प्रसार के, सभी का इस्तेमाल करते हुए और जितने हितधारक हैं सभी के कान तक एक बार आवाज जरूर पहुंच जाए कि बीमा है क्या और इसको हम कैसे लें और उसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं और मतलब नुकसान होने पे फसल का उनको क्या इससे फायदा होगा और आगे फसल अपना जो है खेती बाड़ी आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये सबसे प्रमुख बिंदु है जिसपे कि हम फोकस करना जा रहे हैं इस बार।
1: जी बिल्कुल, यानी जो एक किसानों की तरफ से लगातार मांग थी कि कुछ किसान ऐसे थे जिनका ये कहना था कि अगर हमने ऋण नहीं लिया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो उनका क्यों बीमा किया जाए। मतलब अगर ऋण लिया है और तब भी अपने आप ही पहले बीमा हो जाया करता था, और अगर उन्हें नहीं कराना है तो ये उनके पास अब सुविधा है कि वो बैंक में जाकर इसकी जानकारी दे दे कि भले ही मेरा बीमा आप ना करें अगर ऋण लिया है तब भी, लेकिन इसके बारे में आपको सही समय पर सूचना देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं विभास जी से। विभास जी देखिए, हम जब गांव जाते हैं और किसानों से बात करते हैं और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा भी मकसद रहता है कि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक समस्या किसानों के बीच देखते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उनकी तरफ से शिकायत एक तरह से कह सकते हैं कि रहती है कि हम जाएं कहां, कोई हमें सुनने वाला नहीं, अगर हमें नहीं भी कराना है बीमा और अगर हो गया है तो उसके बारे में हमें बैंक जाना पड़ता, कोई सुनता नहीं है, हमें कंपनी की तरफ से, जो बीमा कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें समझा सके, इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है।
5: देखिए, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहलाते हैं CSCs, सारे किसान भाइयों को पता है। तो हम लोगों का पूरा पर्पज ये है कि फसल बीमा की पूरी जानकारी किसानों को दी जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हम लोग कैंप्स लगा सकते हैं, हम लोग ये सब करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं लोकल एरियाज में, उन लोगों को बताया जाता है कि फसल बीमा में क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद पूरा एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है जिसपे किसान अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी जमीन का बीमा करा सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे CSC के थ्रू होती है। और उसके अलावा फिर मतलब उनको एक हम रसीद देते हैं जिससे ये उनको प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट करा है। उसके बाद का उनका पॉलिसी का या जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका स्टेटस क्या है, वो भी हमारे वीएलई उनको समझा सकता है। तो इसलिए पूरी क्लेम अगर कभी आता है और अगर उनको इंटीमेट करना होता है तो उसके लिए भी वो हमारे वीएलई के पास आके अक्सर उनसे हेल्प लेते हैं, और फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि बेसिकली हमारा काम कनेक्शन का है। तो जो भी नियरेस्ट CSC है, और हमारे काफी CSCs हैं सारे, उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक करीब करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स को हम लोग एनरोल कर चुके हैं थ्रू द CSC नेटवर्क। तो
1: ठीक है, कृष्णवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। अब ये बताएं कि देखिए, इस योजना को आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया है, और कहते भी हैं कि किसी योजना की कामयाबी या फिर उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको समझने के लिए 5 साल का वक्त काफी होता है, और कहते भी हैं कि किसी भी स्कीम का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 5 साल आप लेकर चलिए। अब आप कहाँ देखते हैं किसानों को इस योजना को लेकर, उनमें कितना आत्मविश्वास है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
6: देखिए अंजू, जो उद्देश्य था सरकार का इस योजना को बनाने का, वो किसानों को जो नुकसान होता रहा प्राकृतिक आपदाओं से, उससे बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जो पहले योजना थी उसमें जो लोन किसान का था उसमें कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसमें शिकायतें ये रही, कुछ बैंकों ने पैसा काट लिया, जमा नहीं किया पॉलिसी में, बहुत सारी शिकायतें रही। इसी वजह से अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की अपनी मर्जी है कि वो उसमें अपना इंश्योरेंस पॉलिसी में किस तरीके से भागीदार लें। ये सच्चाई है कि अब जब सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य ये है कि किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप इसमें आइए और आप फसल बीमा कराइए, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हो सके। ये तो है योजना का उद्देश्य, और योजना का जो लाभ है वो किसानों के लिए है, लेकिन कुछ कमियां, जो सुधार हो रहा है बराबर, अभी भी खामियां हैं। खामियां क्या है कि जब फसल बीमा योजना को लागू करते हैं खरीफ का, तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे रबी का करते हैं, लेकिन जब आपदा से नुकसान होता है देश के किसी भी कोने में, तो ये सच्चाई है कि अब तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी तरफ से जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसलिए लागू करवाया जिससे सर्वे के लिए ड्रोन जो है सबसे एक सही रास्ता चुना गया है और उससे नुकसान का जो है एक सर्वे होता है और उसी तरीके से किसानों का जो है बीमा योजना की धनराशि दी जाती है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि पूरे गांव में जब नुकसान होगा, पहले तो ब्लॉक होता था, अब सरकार ने गांव कर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नुकसान होगा। ये हो सकता है कि एक तरफ से गांव के एक हिस्से में नुकसान हो और दूसरा हिस्सा ठीक रह जाए। तो मेरा सुझाव ये रहा है और आज फिर मैं कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से फिर मेरा सुझाव है कि हर किसान के हर खेत का सिर्फ रसीद देना भर से जिम्मेदारी हक पूरा नहीं हो जाता, उसको कवर नोट दिया जाए कि ये फसल है, ये इसकी वैल्यू है और यदि नुकसान होगा तो इतनी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें भी दो चीजें हैं, एक केंद्र सरकार का धनराशि है और दूसरा प्रदेश सरकारों की उसमें धनराशि होती है। कई बार प्रदेश सरकारें समय पर धनराशि अदा नहीं कर पाती तो किसानों को ये फसल बीमा कंपनियां उसको जो लाभ समय पे नहीं दे पाते। कुछ प्रदेशों ने तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की अपने यहाँ, जैसे पंजाब है तो वहां परेशानियां होती हैं लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। एक सिर्फ मेरा दो सुझाव है कि जब किसान को आपदा का मुकाबला करने का हालात होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां ब्लॉक लेवल पर होना जरूरी है, अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं है तो जिला लेवल पे परमानेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस कंपनी का जो उस जिले में इंश्योरेंस कर रही है फसलों का, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब ऑनलाइन जो है सब कुछ में काम नहीं चलता, ऑनलाइन किया जा सकता है लेकिन जब लेने का नंबर आता है तो ऑनलाइन में अधूरापन रहता है और किसान उसमें भटकता है। इस कमी में सुधार करना है।
1: जी जी सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें जो कृष्णवीर जी ने, एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो कवर लेटर होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार है, मकान है, यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस, सब में ये एक आपको बकायदा पॉलिसी मिलती है, उसमें जो जो चीजें कवर हैं, कितना सम इंश्योर्ड है, सब चीजें होती हैं। तो ऐसा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आगे इस पर कुछ किया जा रहा है?
3: देखिए, जो अभी पूरे चर्चा चल रही थी उसका स्वरूप है कि जो सरकार जो है मुख्यतः तीन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसमें हम लोग बहुत काम करने में सफल हुए। पहला चीज है कि हम फसल कटाई प्रयोग को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में करके हम किसानों को भागीदार बना के हम उनको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, क्लेम दे दें। उसकी दूसरी चीज है कि इनरोलमेंट हम करें कि किसान को इनरोलमेंट में कहीं भटकना ना पड़े, हम उनकी पूरी चीज को है वो द्वार तक पहुंचाएं, और इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, सीएससी, पोस्ट ऑफिस या फिर टेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसानों को हम योजना के बारे में बताएं, उसमें कोई त्रुटि रह गई उनको विश्वास हो और उसमें भागीदार बने। तो ये इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार वगैरह कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये फसल बीमा सप्ताह इस बार लागू चलाई जाएगी। लेकिन मुख्य जो आप कह रहे थे कि हम उनको रिसीट देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ हम लोग आज से 2-2.5 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बैंक में बीमा कराते हैं, बैंक के थ्रू बीमा होता है, उनको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर या अभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे उनको तत्काल तुरंत हाथ में ही उनको पॉलिसी दिया जाता है। अच्छा। उसका पर्पस ये है, जो हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं, इसका बहुत वैल्यू है क्योंकि आपके पास एक कागजात है, कागजात में एक सारे चीजें लिखे होती है कि आपका किस फसल का बीमा हुआ, आपने कितना प्रीमियम दिया, सरकार ने उस आपको प्रीमियम सहायता के रूप में आपके लिए कितने बीमा कंपनियों को भुगतान किया, किस खेत में है, किस खेत में किस फसल के लिए बीमा किया गया है, कितनी धनराशि है, बैंक का नंबर, खाता नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, इसके अलावा फिर हम किसान भाई को और जागरूक करते कि अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई तो इसको तत्काल हम लोग से सुधारवाए, बीमा कंपनियों को संपर्क करें ताकि इसमें सुधार किया जाए, ताकि हम भुगतान जब आपको भुगतान करना हो तो जल्द से जल्द भुगतान करें, किसी तरह की व्यवधान ना पैदा हो। खास करके ऐसा देखा गया है, पीछे हम लोग ने अनुभव किए थे कि अगर बैंक के माध्यम से जब इंश्योरेंस होता था तो किसान भाई को पता भी नहीं होता था कि मैं मेरी किस खेत की किस फसल के लिए बीमा हो गई है। तो ये एक चैलेंज था। जब हम इसमें व्यक्तिगत खेतवार आकलन करने की व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे पेरिल्स हैं जोखिम जिसको खेतवार आकलन किया जाता है, जब बीमा कंपनी राज्य सरकार के जो संयुक्त समिति होती है जब सर्वेक्षण के लिए जाती है तो वहां जिस फसल के लिए बीमा होता किया गया है वो फसल नहीं मिल पाती थी। तो ये सारे चीज जो चुनौतियां जो फील्ड में थी
7: देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारी कौन सी फसल का बीमा हो गया, और वो तो जो उसको जो फसल लेनी वो लेता है, और बाद में पता चलता है कि जो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड फसल है जिसकी अधिसूचना है उसी का ही बीमा मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसी स्थिति ही क्यों आती है?
3: देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार इसमें अधिसूचित करती है फसलों को, इसमें योजना में उनके लिए जो एक क्षतिपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड होता है, ग्रांटेड यील्ड दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल का उपज आंकड़ा की आवश्यकता होता है, प्लस जो अभी हम लोग तत्काल में अगर कोई क्षति होती है क्षति का जो मापदंड होता है वो भी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। तो राज्य सरकार ये देखती है कि किस फसल में जोखिम है, हमारे पास डेटा उपलब्ध है।

0: उनको हम लोग राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं, बात करते हैं
1: कि
0: मौसम आधारित बीमा योजना में, जैसे खास करके आप बागवानी फसलें हैं, खास करके आपके जो सब्जी की फसलें हैं जो आजकल शहर के नजदीक या गांव में भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो वहां भी हम लोग उनके डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है अलग अलग वेरायटी के कारण, अलग अलग टाइम के कारण। तो हम लोग कहते हैं उनको कि मौसम आधारित बीमा योजना है, उसमें आप इसको अधिसूचित करें।
1: जी
2: गन्ना भी है, वो भी बाहर है, अभी उत्तर प्रदेश क्या पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, 8 प्रदेश हैं, लेकिन गन्ना भी अभी योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और पूरे इस सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, डोर टू डोर पहुंचा जाए, किसानों के घर तक पहुंचा जाए और इसके लाभ के बारे में उन्हें बताया जा सके, ताकि वो इससे जुड़े, इसका लाभ ले और जो उनकी आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
3: किसान भाइयों, अभी हमने फसल बीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: एनेक।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए और जानते हैं कुछ और इस फसल बीमा सप्ताह के अंदर क्या जानकारियां हमें मिल सकती है, आइए सुनते हैं।
3: 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा वीक मनाया जा रहा है ताकि आप किसानों को इसके लाभ के बारे में बताया जा सके और आपकी समस्याओं को भी सुना जा सके ताकि उनको सुनकर बीमा को लेकर जो सुझाव हैं बदलाव भी किए जा सके, संशोधन भी किए जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले सर मैंने कहा था कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक पहुंचे हैं हम इन लगभग 5-6 सालों में, पहले क्या आंकड़ा था और अब कहां कितने किसानों को इसमें कवर किया गया है और कितनी नई फसलों को शामिल किया गया है। सुनील जी,
4: देखिए पहले जब हम पुराने योजनाओं में अगर देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग ने देखा कि क्यों कम है, क्या किसान जानते हैं बीमा योजना के बारे में या नहीं जानते हैं, या राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर पाती फसलों को। तो ये सारे चर्चा करके हुआ कि नहीं, इसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हम इनको अच्छे से ढंग से योजना को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें पहले वर्ष में जो थे वो आप अगर संख्या देखेंगे किसानों का तो करीब वो 4 करोड़ एप्लीकेशन आए थे। और खरीफ अगर 16 की बात करें, अगर अभी हम पिछले खरीफ की बात करें तो स्वैच्छिक होने के बावजूद, योजना स्वैच्छिक हुई है, आधार इसमें कंपलसरी किया गया है, लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि इसमें किसी तरह से डी डुप्लीकेशन हम प्रॉपर कर पाए, वो इसकी गलत फायदा लोगों ना उठा पाए। तो ये सारे चीजों को करने के बाद भी अभी हमारे पास खरीफ में केवल 5 करोड़ किसान अभी बीमित हुए हैं। और हम लोग आशा कर रहे हैं ये कोविड काल का पीरियड है जब तक हम लोग के पास बहुत संसाधन कॉन्स्टेंट था, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर एप्लीकेशन को हम बीमित करेंगे इस बार। तो इसी तरह से देखेंगे क्लेम के बारे में अगर हम कहें तो क्लेम का भी अच्छा रहा है। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं 5 साल में आए हैं वहां क्लेम किसानों को मिला है। हाँ, किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि ये बीमा योजना है, बीमा योजना में लाभ उसी जगह मिलता है जहां आपकी फसल नुकसान हुई है।
3: ठीक है,
4: तो जहां जहां नुकसान हुई है वहां वहां फसल का बीमा मिला है। सरकार इसको पूरी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, देखते रहती है और इसके लिए बहुत सुचारू तंत्र भी लगाया गया है कि ताकि आपको किसी तरह की कठिनाइयां ना हो इसमें। अगर खास करके मैं आज बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो है शिकायत किसानों का होता था उसके लिए क्या करना चाहिए, तो किसान के लिए शिकायत पहले सीधे मंत्रालय को आता था, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति और मंत्रालय को। ये सारे चीजों को हम लोग ने बहुत ग्राम स्तर तक ले जा रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कहा गया कि टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी शिकायत को करें और उनको निवारण करें। इसमें भी अब जो है केंद्र सरकार ने ये निश्चित किया है और इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट हो चुका है कि पूरी कॉल सेंटर शिकायत के लिए पूरी स्ट्रेटजी, हर एक स्टेट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव टोटल होंगे ताकि आपको शिकायत पूरे डॉकेट नंबर के साथ हो और हर एक चीज पर केंद्र सरकार उस पर निगरानी रख सके कि आपकी शिकायत कैसे हुआ और कब निपटारा।
3: ठीक है सुधाकर जी, जैसे कि कृष्णवीर जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक समस्या ये भी आती है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि वो हमें बजट के हिसाब से चीजें करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो पूरा मैन पावर होता है वो उसके अनुसार ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे तो किससे बात करेंगे किसान।
5: देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट होता अगर ये शायद 2 साल पहले तक तो ये रेलेवेंट था। आज के समय में आप देखेंगे तो जो भी कंपनी काम कर रही है तो उसका एक प्रतिनिधि जिला स्तर पे भी है और उसका एक एक प्रतिनिधि हर ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पे उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां हमारी कंपनी भी कार्यरत है 37 जिलों में, तो वहां 200 के आसपास हमारे प्रतिनिधि पूरे फील्ड में मौजूद हैं। तो उसमें वैसे जिले भी हैं जहां पर की प्रीमियम जहां जो जिससे कंपनी का आमदनी होता है वहां नहीं के बराबर है, वहां भी जो है हमारे हर ब्लॉक में आपको आप हमारे प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो ये समस्या आती है ज्यादातर उन छोटे राज्यों में जहां पर की प्रीमियम ही बहुत कम है। अगर सारे जगह पे प्रतिनिधि लगा दिया जाए तो जितनी प्रीमियम नहीं आती है उससे अधिक हमारा
3: कॉस्ट
5: बढ़ जाएगा। तो वहां पे एक समस्या है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से उसको भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है, शायद उसको भी कुछ जल्दी से
3: उसको लेकर क्या किया जा रहा है सुनील? जैसा कि
4: देखिए इसमें चीजें हैं जैसे अभी बता रहे थे, जिसमें पहले सेगमेंट में ही सुधाकर जी बताया कि कुछ ऐसे जिलों को हम लोग चिन्हित करते हैं जहां पोटेंशियल हो और इंश्योरेंस सभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट इस बार भी चुने हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनके लिए बिजनेस है, सरकार के लिए है कि किसानों को सुविधा है, तो उसके बीच में क्या बैलेंस हो और कैसे करे, तो इनके इंश्योरेंस कंपनी के जो तंत्र हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट करते हैं, प्लस जो है ये फसल बीमा सप्ताह, फसल बीमा पाठशाला, ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं। और जो चीजें वहां अगर पोटेंशियल है और किसानों को नहीं है तो टारगेट भी दिया गया है कि हम आप वहां जाएं और टारगेट करें। तो बिजनेस के साथ साथ जो उनकी सरकार की दायित्व है उसमें पूरी समायोजित करके योजना बनाई जाती है और वहां हम लोग करते हैं, राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग हर एक किसानों को समझाते हैं कि हाँ आपके पास जो है यहाँ क्षति हो सकती है, यहाँ रिस्क है, इस रिस्क में आपको बीमा करानी चाहिए, बाकी स्वैच्छिक है बीमा, किसान चाहते हैं तो बीमा होती है।
5: और इसमें मैं एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे सीएससी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, पहले भी उन्होंने बताया कि ये हर गांव में एक सेंटर तो है ही, कई कई गांव में तो दो दो सेंटर भी है और कोई बहुत अधिक घनत्व वाला है तो हॉस्पिटल उससे भी ज्यादा संख्या मिल जाए, तो वो जो सेंटर्स पे है उनको बीमा कंपनी, राज्य सरकार के और स्वयं सीएससी के द्वारा भी जो वहां काम कर रहे हैं, इसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको काफी उनको मैन पावर इन्हांसमेंट होती है, उनकी जो तकनीकी जानकारी बढ़ाई जाती है, समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है, तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए योजना का एक्सटेंडेड आर्म है, वो भी हर तरह से हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए सामने खड़े हैं वो, तो चाहे बीमा का लाभ लेना हो या बीमा कराना हो।
3: अच्छा जी जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी कि आप ये फसल बीमा मित्र कुछ हम सुन रहे हैं, ये क्या है?
5: हाँ, ये एक नई कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लाई है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में कह लीजिए कि एक वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन क्या मतलब, जो भी वॉलंटियर करेंगे तो एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा कि फसल बीमा मित्र के रूप में आप कार्य कीजिए
3: किसानों के बीच में
5: से ही।
0: असली बात यह है कि इसलिए मित्र खड़ा करना पड़ रहा भारत सरकार को कि कंपनियों के और किसान के बीच में जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो मित्र जो है हर गांव में करना जरूरी हो गया, इसीलिए किया जा रहा है, जिससे इसका किसानों को जो समस्याएं हैं वो है समय पर उसको इंश्योरेंस का जो प्राइस प्रीमियम जो देता है उसका नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाए, भरपाई करवाने के लिए ही ये ग्राम लेवल पर भारत सरकार मित्र जो है योजना खड़ा कर रही है।
3: जी मैं आपसे समझना चाहूंगी विभास जी, सीएससी का रोल किस तरह का है और कैसे इसे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को किसानों को समझाएंगे?
6: देखिए जैसे अभी सुधाकर जी ने यूपी की बात करी थी तो मैं यूपी का एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यूपी में हमारे करीब 80,000 केंद्र हैं, एवरेज हो गया करीब करीब 1100-1200 केंद्र हर जिले में
3: जी।
6: तो ये ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने कहा हर गांव में एक केंद्र है ही, हर ग्राम पंचायत में डेफिनेटली एक केंद्र है और वहाँ पे सारी उन लोगों को जानकारी होती है फसल बीमा के बारे में, तो हमारे किसान भाई वहां जाके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से जाके एनरोलमेंट भी कर सकते हैं,
3: दोनों चीजें
6: हो सकती है, जिसमें कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं उनसे, तो वो एक सप्लीमेंट्री मैनपावर की तरह से भी यूज होता है, कई लोग करते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो उसके स्टेटस के बारे में, अगर कोई रिफंड या रिजेक्टेड पॉलिसी है उसके स्टेटस के बारे में, ये सारी चीजें हमारे केंद्र से पता की जा सकती है
3: जी। और कृष्णवीर जी, अब मैं आपसे यहाँ पर जाना चाहूंगी, किसानों की एक समस्या हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो कोई अगर क्षति होती है या कोई आपदा आती है तो राज्य की तरफ से भी वो आपदा राहत राशि होती है, और वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अगर वो किसान लाभ ले रहा है, अगर उसने बीमा भी करवाया उस फसल का, तो यहां पर किसान कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमें पैसा कौन सा मिल रहा है, दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये आप अब जब किसानों से बात करते हैं तो किस तरह की शिकायत रहती है उनकी तरफ से?
0: देखिए, प्रदेश सरकारों का जो आपदा में पूरा प्रबंधन करती है सरकार और जो पैसा किसानों को देती है, वो राशि जो है वो कम होती है, और वो कम राशि इसलिए होती है क्योंकि तत्काल किसानों को एक मदद है आर्थिक रूप से, जो तुरंत मदद की आवश्यकता है किसान को, तो प्रदेश सरकारें सिर्फ तुरंत सहायता के लिए मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल बीमा कराया गया है और जिस कंपनी ने किया है, जितना नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए, और वो समय पे भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी तक शिकायत ये थी कि समय पर उसको पैसा जो नुकसान है वो उसको मिल जाए। किसान ये चाहता है कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान है वो हर किसान को समय पर मिल जाए, और जिस दिन कंपनियां देना शुरू करेंगी तो एक किसान जो है 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं बल्कि 13 करोड़ किसान इस योजना को स्वीकार करें।
3: सुनील जी, आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे?
4: देखिए, ये चुनौतियां सरकार के पास रही है और अभी बहुत हम लोग सफल हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते कि पूरे हम लोग जितना लक्ष्य रखे हैं उसमें सफल हो पाए हैं, लेकिन पहले देखिए, पहले इसमें धीरे धीरे कड़ी हम लोग हटा रहे हैं कि क्यों देरी होती थी। पहले चीजें थी कि डेटा जो आता था बहुत देर से आता था, उसको डेटा को कैलकुलेट करने में कि कितना क्षति होगी उसमें दिक्कत होती, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का समावेश किए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको क्षति का आकलन कर पाए। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा आता था बड़ा फिजिकली आता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होता था, उस सारे चीज ठीक हुए। दूसरा मेन चीज था कि पहले हम लोग सीधे बैंक को देते थे और बैंक जो है सीधे जो इंश्योर्ड फार्मर होते थे उनके खाते में ट्रांसफर करते थे, अब हम लोग सीधे इंश्योर्ड फार्मर्स के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां थी उसको हम लोग ने दूर कर दिया है। अब केवल चुनौती केवल इतना ही बच गया है कि कहीं कहीं जो है राज्य सरकार जो है प्रीमियम नहीं दे पाती है समय से, इसके कारण भुगतान डिले होता है, लेकिन हम लोग जो है ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जो अब ऐसे बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो तत्काल 2 महीने का हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2 महीने के अंदर जो मौसम फसल कटाई प्रयोग खत्म होते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान करना होता है, इसके लिए मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, प्लस अगर भुगतान नहीं किए तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और उन पर 12% का ब्याज दर निर्धारित करके हम लोग भुगतान भी करवाते हैं। ये सारी चीजें आई है, तो जिसके कारण से जो है सबको दायित्व दिया गया है, दायित्व के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक समय दिया गया है, उस समय में करें, और टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया ताकि ट्रांसपेरेंट वे में मॉनिटरिंग हर एक स्टेक होल्डर हर एक आदमी कर पाए, वो अपने मोबाइल के माध्यम से है। लेकिन अगले सीजन से हम लोग जो है सीधे सीधे भारत सरकार ही पैसा ट्रांसफर करेगी, ऐसी व्यवस्था कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। दूसरे 2-3 फायदे हैं कि हम लोग को पूरे राज्य सरकार और पूरे उनके प्रतिनिधि साहब को पता होगा कि कब पैसा ट्रांसफर हुआ, और किसान को ट्रैक कर पाएंगे पूरे एक्टिविटीज को। तो ये अगले सीजन से हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग चालू करने वाले, तो ताकि अब हम लोग एकदम रूट कॉज में पता कर पाए।
1: किसान साथियों, अभी हमने सुना किस तरीके से पहले जितनी समस्या आती थी हमें हमारे बीमा काम करने में, किस तरह कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं आया, इन सारी समस्याओं को जितना हो सके जो लंबी प्रोसेस थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते और सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: कि किसान भाई को सराहता कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ, मेरा जो आकलन हुआ ठीक नहीं हुआ, वहाँ प्रतिनिधि पूरे अगर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में आके और सारे चीज रिकॉर्डेड रहेगा और हम लोग उस चीज को बाद में भी ऑडिट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवांसेज बनेगी तो हम लोग तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं, ये सारे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। योजना का पर्पस ही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में पूरे हम फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लाएं कि हम आपको पूर्ण सुरक्षा दे रहे हैं।
5: मैडम, एक और मैं इस कड़ी में और एक बात बोलना चाहूंगा कि किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी इस बीमा योजना का लाभ मिले, जैसे समय अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि देर हो रहा है, उससे देर होने का मुख्य कारण एक तो सब्सिडी है, दूसरा है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आता है हमारे पास, तो इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट शुरू किया है। इस बार प्रपोजल है जिसमें कि सारा रिमोट सेंसिंग से लॉस एस्टिमेशन होगा ताकि वो तुरंत डेटा आ जाए और उस तरह से
3: तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिसका जिक्र सुनील जी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि किसानों की तरफ से एक ये भी सवाल रहते हैं या फिर आशंका रहती है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना सही हुआ है, किस आधार पर हुआ है, तो उसे और पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स भी पढ़ रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए, तो उनमें से एक पॉइंट था कि उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा और जो बीमित राशि है, जो मूल्य है, उसे कम नहीं किया जाएगा। तो ये किस तरह से ये इसका गणित क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है?
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें। अंकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है, नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।
3: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मूल्य की बात कर रहे हैं कि जो उपज है उसकी जो बीमित राशि है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मानक क्या है, क्या है इसके पीछे का पूरा गणित, तो मुझे लगता है सुनील जी आप इसे बेहतर समझा पाएंगे।
4: देखिए इसमें सरकार की हम मंशा रही है कि हम पूरे जितने क्षति हो उसको हम पूर्ण भरपाई करें, समानुपातिक जितनी क्षति हुई उसको करें। अगर 100% लॉस हुआ तो 100% देंगे, 50% लॉस हुआ तो 50% देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो है दो तरह के हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि या तो आप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण मुहैया कराते हैं उसी के आधार पर वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी बहुत साइंटिफिक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि C2 जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है उसके आधार पर हर एक जिले में जो आप वैरायटी लगाते हैं, जो आप इनपुट यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, उसके आधार पर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित होता है। इस और उसी को हम लोग सम इंश्योर्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं। दूसरा एक राज्य सरकार को और दिया गया है कि आप उसको कुछ क्रॉप्स का कि बहुत दिनों से नहीं अपग्रेड हुआ होगा स्केल ऑफ फाइनेंस या उसमें लगता होगा कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक चॉइस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले जो आपका 7 साल का उपज है उसको एवरेज यील्ड लीजिए और आज का जो पिछले साल MSP घोषणा की गई है या इस साल जब आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें MSP की घोषणा हो गई है तो उस MSP से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू

0: आएगा पर हेक्टेयर वो सम इंश्योर्ड होगा, यील्ड आपको आ गया पर हेक्टेयर और एमएसपी के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सम इंश्योर्ड।
1: ठीक है सुधाकर जी, तो ये सब कैलकुलेशन किस स्तर पर होती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं जो गाइडलाइंस मिली है सरकार की तरफ से उसके आधार पर?
2: नहीं, ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है, जब जैसा आपको पता होगा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कंपनियां सबसे कम प्रीमियम रेट देती हैं उसी को वो डिस्ट्रिक्ट में बीमा करने का अधिकार मिलता है। जब टेंडर का डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी समय राज्य सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सम इंश्योर्ड होगा। जैसा भी सुनील जी ने बताया कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, राज्य सरकार के अधीन है कि वो किस तरीके को अपना करके सम इंश्योर्ड तय करती है, तो पहले ही डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये सम इंश्योर्ड इस बार इस क्रॉप में रहेगा। और इंडेमनिटी लेवल दूसरा होता है कि जो क्षतिपूर्ति का स्तर क्या होगा वो भी पहले ही तय हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो 70% हो, 80% हो या 90% हो। जो क्रॉप अधिक रिस्क की है उसको 70% पर राज्य सरकार रखती है और जो हमेशा अच्छा उपज देने वाली है उसको 90% तक रखती है। तो ये सारा राज्य सरकार करती है, बीमा कंपनियों का इसमें रोल नहीं है।
1: जी कृष्णवीर जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो C2 की बात की जा रही है, स्केल ऑफ फाइनेंस की बात की जा रही है, इसे कितना समझते हैं किसान?
3: देखिए, जो क्रॉप कटिंग का जो प्रोडक्टिविटी का पिछला 7 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव बराबर आता रहता है और जो पिछला एमएसपी है उससे कैलकुलेट करके जो सरकार योजना बना रही है, ये इस पर काम चल रहा है अभी, इस पर काम चल रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि जो जिला स्तर की यील्ड होगी, जो लेवल होगा प्रोडक्टिविटी का, और उसको एमएसपी से कैलकुलेट करके जो टोटल फसल का दाम होगा उससे किसान को जो है कंपेंसेट जो है नुकसान होने पर जो है वो दिया जाएगा। ये किसान के हित में जरूरी है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से जो पहले जिला और गांव लेवल पर दिक्कतें थी उसका समाधान करने का प्रयास सरकार ने किया है। खासतौर से जो असेसमेंट का सुधार किया है टेक्नोलॉजी का, वो समय की आवश्यकता थी और उसको सरकार ने लागू किया है। अब सिर्फ स्थिति यहां आके रुकी हुई है कि केंद्र सरकार जिस दिन जो है सीधे किसानों को नुकसान का पैसा उनके खाते में देना शुरू करवा देंगे, जैसा कि सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हम किसानों के नुकसान का पैसा केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में दे, ना कि बैंक को बीच में रखे या पोस्ट ऑफिस को रखे या कंपनियों को अभी तक जो रखा गया, क्योंकि उसी से किसान जो है अभी तक जो समस्याएं हैं उसी लेवल पर है। वो समस्या का समाधान जिस दिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंगल क्लिक पर जो है 13 करोड़ किसानों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके सारी योजना है। तो ये भी योजना जिस दिन केंद्र सरकार अपने तरफ से सीधे किसानों खाते में देना शुरू कर देगी तो उस दिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रदेश सरकारें जो अपना पैसा भागीदारी का है वो समय पर दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये तो
1: जवाबदेही भी यहाँ पर तय हो जाएगी,
3: किसान के हित में किया।
1: जी बिल्कुल विभास जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, जो इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं इसे और सशक्त बनाया जा रहा है?
4: देखिए मैं तो सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ, हमारे यहाँ एनरोलमेंट बढ़े हैं। हर सीजन में लगातार एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं और ज्यादा ज्यादा लोग आके जुड़ रहे हैं इस स्कीम के साथ थ्रू द सीएससी नेटवर्क। तो हमको तो लग रहा है कि ये स्कीम
1: काफी लोकप्रिय हो रही
5: है। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटाबील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
5: जानकारियों को बढ़ाते हुए ये सुनते हैं कैसे आसानी से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
0: देखिए मैं किसान भाई बंधु को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक आप खेती करते हैं, खेती में जोखिम बहुत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप एक भविष्य के लिए एक निश्चित आय आप सोचते हैं कि हमको ये आएगी और उसके लिए वर्तमान में आय से आप फ्यूचर की क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। अगर किसी न किसी कारण से, वैसा कभी ना हो हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण कारण आपके जो है फसल नुकसान हो जाए और जो आप आय के लिए जो आशा किए थे वो आय में बाधा हो, इस चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। आप इसका लाभ लें, बहुत सिंपल है, आपको केवल 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ फसलों के लिए, रबी में 1.5% प्रीमियम है अधिकतम, बाकी बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है जो कम ही है, और वो जो है वो बाकी शेष राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करती है। आप योजना में देखें, अपने योजना के बारे में जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप कृषि विभाग से ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, आला प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बीमा कंपनी के जितने कार्यालय वहां तक हम लोग लगाए, इसके अलावा होर्डिंग हम लोग वैन वगैरह चलवा रहे हैं कि हर एक गाँव में पहुंचे, आपको जानकारी दे, पंपलेट बांटे ताकि आपके पास रहे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जब आए तो सारे चीजें मिले, ये सारे चीजें हमको जानकारी
1: एक्सटेंशन वर्क जो है वो भी
0: आप जो है बहुत सिंपल है, हर एक जगह इसकी उपलब्धता है, आप बैंक के माध्यम से करा सकते हैं, सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल पर जाके कर सकते हैं, ये कहीं भी डोर स्टेप पर हम लोग कोशिश किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए बहुत सरल तरीका है, केवल आपको 3 कागजात देने हैं, कागजात भी नहीं कहिए, कागजात के रूप में केवल आपको केवल अगर आप भूमि स्वामी हैं तो रसीद देने पड़ेंगे उनके, अगर आप पट्टे पर लिए हैं तो उनके आपके लिए घोषणा देना पड़ेगा, एक राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है, आपको क्रॉप के बारे में स्व घोषणा करना है कि हम ये क्रॉप के लिए बीमा करा रहे हैं। हाँ, ध्यान दें कि जिसका बीमा कराए वो ही फसल लगाए, अगर फसल बदलते हैं तो आप बीमा कंपनी में जाके बदलवा दें ताकि आपको भविष्य में कठिनाई

0: पहुंच पाए और लैंड रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन किए हैं ताकि जो है जिस लैंड में है उसी लैंड का आपका बीमा हो और पूरा डिटेल हमारे पास हो और किसी तरह के जल्दी से जल्दी
1: किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के
0: ट्रांसपेरेंट वे करें।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
3: किसान साथियों, आपने फसल बीमा योजना से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है साहित्य और संगीत की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी पहचान केवल एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक संवेदनशील लेखिका, प्रेरणादायी व्यक्तित्व और अद्भुत जज्बे वाले इंसान के रूप में भी है। उन्होंने कानून की पढ़ाई गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से की, प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और साथ ही अपनी लेखनी के माध्यम से समाज, रिश्तों, संवेदनाओं और आत्मबल को बेहद गहराई से अभिव्यक्त किया। उनकी पहली पुस्तक इलेक्ट्रल रिफॉर्म जैसे गंभीर विषय पर आधारित थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। और अब उनकी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म रिश्तों, आत्मसम्मान, हीलिंग और इनर स्ट्रेंथ जैसे विषयों को एक नई संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं लेखिका, वक्ता और राजस्थान सरकार की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर कोमल जैन का। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच आलोक जी।
1: तो कोमल जी, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस बातचीत की, बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब शुरुआत से ही कर लेते हैं और शुरुआत आपके बचपन से कर लेते हैं। बताइए कुछ अपने बचपन के बारे में, बचपन आपका कहाँ बीता, अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, आपका घर का माहौल कैसा था, फादर आपके जुडिशियल सर्विसेज में थे तो क्या बहुत गंभीर वातावरण था, कुछ उसके बारे में बताइए हमें।
2: जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ आलोक जी। मेरा बचपन जो है वो जोधपुर में बीता था और ये मेरे नाना नानी ने मुझे बड़ा किया था। टिल द एज ऑफ 8 ईयर्स मैं अपने ननिहाल में ही बड़ी हुई हूँ। तो मेरे नाना जी का एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्हें लोग जानते हैं और वो भी उसी विभाग में थे जिसमें अभी मैं हूँ। तो वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एडिशनल डिविजनल कमिश्नर से रिटायर हुए थे। और मेरे नाना और नानी दोनों का ही मेरी एजुकेशन और स्पोकन इंग्लिश पे विशेष फोकस था। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश और राजस्थानी भाषा बोलने पे बहुत ज्यादा उनका जोर था कि मातृभाषा बोलो, मायर्ड भाषा बोलो और इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलो ताकि आप ग्लोबली एक अपनी पहचान बना सको। तो आज जो भी मेरी स्पोकन इंग्लिश है उसका श्रेय मैं अपने नाना नानी को देना चाहूंगी।
1: That is wonderful. आपको तो बहुत ही अच्छा एक अपब्रिंगिंग मिली है और बहुत ही एक ऐसे माहौल में थी जहाँ बहुत ही मतलब पढ़ाई लिखाई का वातावरण था, आपके सब लोग अच्छे अच्छी पोजीशंस पे थे। तो आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग जो है सेंट मैरीज स्कूल उदयपुर में हुई है, कुछ खास कोई उस दौर की याद हो, कोई आपके दोस्त की आपको याद हो उस जगह की या उस स्कूल का कोई दोस्त आपके साथ हो, ऐसी कोई खास याद है?
2: ऐसी बहुत सी यादें हैं उदयपुर से। उदयपुर इज माय फेवरेट सिटी इन द होल वर्ल्ड। वो बहुत ही सुंदर शहर है और मैंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों सेंट मेरीज कॉन्वेंट उदयपुर से किया है। उस समय मेरे जो पापा हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उदयपुर थे और मम्मा वहाँ पे मीरा गर्ल्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे। तो उस समय की कुछ यादें हैं जैसे कि लेक पिछोला में फैमिली के साथ बोटिंग करना और अपने भाई और अपनी दादी साहब के साथ सुखाड़िया सर्किल पे पैडल बोट चलाना, फतेह सागर पे वॉक और साइकिलिंग करना। और उस समय सेंट मेरीज में मेरी कुछ काफी दोस्त थे, लेकिन एक खास दोस्त थी मेरी जिनका नाम है रजनी कुमावत और वो अभी राजस्थान जुडिशियल सर्विस में है। तो उनका और मेरा एक कॉमन शौक था गजलें सुनना। तो उस समय जगजीत सिंह जी की एक उनका एक एल्बम था मिराज, तो उसकी कैसेट उन्होंने मुझे दी थी और मैंने उसको काफी लंबे टाइम तक सुना था, तो ये एक बहुत सुनहरी याद है।
1: ब्यूटीफुल, मजा आ गया। तो आपको शुरू से ही जगजीत सिंह पसंद थे, तो आप थोड़ा सा आपके कानून की पढ़ाई की तरफ आते हैं। आपने कानून की पढ़ाई को अपना क्षेत्र चुना, ये कैसे कि आपके चूंकि फादर भी इसी जुडिशियल सर्विसेज में थे, तो इस वजह से या कोई और खास रीजन था?
2: सर मेरी जो कानून की पढ़ाई है उसके लिए मुझे मेरे नाना जी पन्ने चंद जी सिंह जी ने प्रेरित किया, जो कि खुद प्रशासनिक अधिकारी थे और उस समय पुराने समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को जुडिशियल पावर्स भी होते थे, तो उन्होंने मुझे लॉ के बारे में काफी कुछ बचपन से ही बताया था। और मेरे पापा श्री हेमंत कुमार जी जैन, उनसे मुझे लॉ की प्रेरणा मिली। वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं और वो खुद भी एक बहुत ही धार्मिक और एक बहुत मर्यादित व्यक्ति हैं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा।
1: तो आपने LLM में सेकंड पोजीशन आपको मिली है और साथ ही महाराणा फतेह सिंह अवार्ड और नीति बांठिया अवार्ड जैसे सम्मान भी मिले हैं, तो कैसा लगता है जब ये सम्मान मिले? आपको लगा कि नहीं अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा इसके लिए बहुत ही जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, किस तरह से, हाउ डू यू फील अबाउट दीज अवार्ड्स?
2: जी हाँ आलोक जी, बिल्कुल, इन अचीवमेंट्स ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और मुझ में एक हौसला जगाया कि मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है। और बीइंग अ गर्ल कैंडिडेट फ्रॉम राजस्थान, जो कि कंपैरेटिवली एक कंजर्वेटिव स्टेट है, मुझे सारे फीमेल कैंडिडेट्स में एक एग्जांपल सेट करना है और ऐसा करियर बिल्ड करना है कि मैं भारत देश में लोगों की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ और कॉमन पीपल से जुड़ सकूँ।
1: तो चलिए, चूंकि आपने अभी बात वहां जगजीत सिंह जी की चला दी थी और आपकी अपनी फ्रेंड का भी आपको नाम याद आ गया था उसकी गजलों से, तो हम रुक के यहाँ एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। बस थोड़ा सा पॉज लेंगे और फिर आई विल कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
2: श्योर।

0: तो वेलकम बैक डॉक्टर कोमल, आप एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी हैं और लेखिका भी। प्रशासनिक जीवन और रचनात्मक लेखन, इन दोनों दुनियाओं को साथ लेकर चलना कितना चैलेंजिंग है, कैसे करते हो आप ये मैनेज, ये कुछ हमें भी बताइए।
1: जी आलोक जी, ये काफी चैलेंजिंग टास्क है। एक टैक्सेशन ऑफिसर होने के साथ साथ एक लेखिका होना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। एक सरकारी अफसर होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों से बंधी हूँ, जबकि एक लेखिका के रूप में मैं अपनी कलम की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उपयोग करना चाहती हूँ। तो इन दोनों चीजों में सामंजस्य बैठाना काफी चुनौतीपूर्ण है, पर जितना हो सके मैं इसको बैलेंस करके चलती हूँ।
0: तो चलिए, अब मैं कुछ आपको पुरानी जिंदगी में ले जाना चाहता हूँ कि लेखन की शुरुआत कैसी हुई, कौन सा ऐसा ट्रिगर था, या क्या ऐसा एकदम आपकी लाइफ में हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आपने लेखन शुरू किया? क्या डायरी लिखती थी आप, किस तरह, हाउ डिड यू स्टार्ट इट?
1: सर, मेरा सबसे पहला जो लेखन था वो एक लॉक डायरी से शुरू हुआ था। मेरे बचपन में मेरी मासी ने मुझे एक लॉक डायरी प्रेजेंट की, जिसपे एक छोटा सा लॉक लगाया जा सकता था। और ये एक पॉकेट डायरी थी। तो मेरी जो नानी सा है, उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया, उनका नाम चंद्रकांता जी है, और उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि जब भी बैठो एटलीस्ट 4-5 लाइनें लिखो, अपने हाथ में हमेशा कलम और पेपर रखो, एक डायरी रखो और कुछ लाइन लिखते रहो, इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी बनी रहेगी।
0: ये बहुत खूबसूरत बात है। तो मतलब आपकी जिस तरह से, अगर बड़े लोग आपको इस तरह से इंस्पायर कर दें लिखने के लिए डायरी का, तो बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए फिर आगे आते हैं। आपकी पहली पुस्तक है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, ये तो बहुत ही सीरियस सा विषय है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और रिसर्च बेस्ड भी है। तो आमतौर से लोग शुरुआत करते हैं, भाई कविता लिख ली, कहानी लिख ली, उपन्यास लिख लिया, लेकिन आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा विषय क्यों चुना?
1: पर इलेक्टोरल रिफॉर्म का विषय जो है वो हमेशा से मेरा पसंदीदा विषय रहा है। और मेरी डॉक्टरेट या पीएचडी थीसिस का टॉपिक भी यही था। 2021 का जो चुनाव था वो 2021 एक चुनाव का वर्ष था, और इसी में मेरी ये पुस्तक रिलीज हुई थी। तो इसके माध्यम से मैं आम जनता से कनेक्ट होके चुनाव प्रक्रिया के सारे सुधार उनको बताना चाहती थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से वर्क करता है। तो लॉ को मैं कॉमन मैन से कनेक्ट करना चाहती थी और इलेक्शन इसका सबसे बेहतरीन माध्यम था। कहानी और उपन्यास लिखन भी मेरा बहुत पसंदीदा विषय है, और मुझे मेरा बहुत मन था कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तो इसे मैं अपनी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म के माध्यम से पूरा करूंगी।
0: वंडरफुल, ये तो बहुत ही आपने बड़ा चैलेंजिंग काम लिया और उसको पूरा भी किया। तो अच्छा बताइए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आपकी पुस्तक को राष्ट्रीय स्तर पर काफी अप्रिसिएशन भी मिला है, तो ये कैसा लगा आपको, बहुत संतोष मिला? किस तरह से आपने मीडिया में भी कवरेज किया होगा इसको, तो उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी सर, बिल्कुल। मेरी जो पुस्तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया अ कंपैरेटिव स्टडी विद यूके एंड यूएस लीगल सिस्टम्स है, इसका विमोचन 15 जनवरी 2021 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा जी ने नई दिल्ली के निर्माण सदन में किया था। और इसे ये जो बुक है सर, इसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया था इसकी लॉन्च को। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये जो बुक लॉन्च है इसने मुझे एक नेशनल लेवल फेम दिलाया, और मेरे जो राइटिंग स्किल्स है, मेरा जो लेखनी का करियर है, उसके लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ। और मुझे इस एनकरेजमेंट के बाद लगा कि मैं और लिखूंगी और देश के नागरिकों से जुड़ूंगी, और ये वेलफेयर करने का मेरा खुद का माध्यम होगा।
0: That's wonderful. ये तो बहुत ही बड़ी, इतनी कम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आपने इतना बड़ा काम कर लिया। तो चलिए ऐसा करते हैं कि आपकी इस जो आपको मीडिया में सराहना मिली, तो एक इसी खुशी में एक गाना सुन लेते हैं, एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर हम आगे बातचीत को जारी रखते हैं।
1: श्योर सर।

0: तो वेलकम बैक डॉक्टर कोमल। अब आ रहे हैं हम कुछ आपकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, और आजकल हिंदुस्तान में भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है ये टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो बुक है द काम आफ्टर द स्टॉर्म, इसके बारे में बातचीत करते हैं। अब आप बात आपकी इस पुस्तक के बारे में बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका नाम भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, द काम आफ्टर द स्टॉर्म, तो ये शीर्षक आपने कैसे, टाइटल कैसे दिया इसको, क्या क्या इसके पीछे भावना थी, क्या विचार था?
1: जनरली आपने एक सेइंग सुनी होगी कि तूफान से पहले की शांति के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन द काम आफ्टर द स्टॉर्म ये जो है ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और मेरी अपकमिंग नॉवल भी है। द काम आफ्टर द स्टॉर्म एक इंसान को खुद से जोड़ती है, और स्पेशली ये एक इंडियन मॉडर्न इंडियन मैरिड वुमेन के बारे में है, ये जीवन एवं रिश्तों के बारे में और उनमें आने वाले तूफानों के बारे में बताती है, और उनसे उबरने और खुद को पहचानने तथा आगे बढ़ने की एक जर्नी है। इन अदर वर्ड्स द काम आफ्टर द स्टॉर्म इज अबाउट सेल्फ लव, बाउंड्रीज, लेटिंग गो एंड सरेंडर टू द डिवाइन। और ये सारे जो लेसन्स हैं वो उस नॉवेल की मेन कैरेक्टर सिया, जो कि एक मॉडर्न इंडियन मैरिड वुमन है, शी इज अ वर्किंग वुमन, उसकी जर्नी है और उसका रियलाइजेशन है अपने आप के साथ।
0: तो इसमें क्या प्रेम, विश्वासघात, आत्मसम्मान, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, तो आप क्या लग रहा है कि आज की जो हमारा मेट्रो सिटीज की लाइफ है वहाँ आदमी बहुत इमोशनली अकेला होता जा रहा है, खासतौर से विमन जब मैरिज के बाद में जाती हैं तो बड़े बड़े शहरों में उनको जिंदगी बिल्कुल अलग तरह की मिलती है, तो क्या उस विषय को टच किया है आपने, किस तरह से किया है?
1: जी बिल्कुल, ये जो कहानी है ये आजकल की मैरिड वुमेन के बारे में है, और जिस तरह से हमारे देश में ये केसेस आ रहे हैं डाउरी रिलेटेड, और ये जो ब्राइड्स हैं शादी के कुछ ही सालों में उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है और सोसाइटी को वेकअप होने की जरूरत है। तो आजकल का जो समाज है उसमें गहरे प्रेम और लगाव पे आधारित जो रिश्ते हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। एक जमाना था जब लोग लव लेटर्स लिखा करते थे, प्रेम पत्र लिखते थे, अब आजकल एंड्रॉइड फोन्स का और सिचुएशनशिप्स का जमाना है जब हर दिन हर घंटे लोगों की फीलिंग्स बदलती हैं। तो आजकल प्रेम में करुणा, त्याग, किसी का वेट करना, ये सारी फीलिंग्स तो लुप्त हो गई हैं कम्प्लीटली। और आजकल अगर हम बात करें कि आजकल की यंगस्टर्स हैं, जेन ज़ी हैं, तो आजकल की जो पीढ़ी है वो डेटिंग और मोमेंट्री प्लेजर्स के बारे में ज्यादा फोकस्ड हैं, और ऐसे में विवाह की जो संस्था है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कमिटमेंट्स हैं, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत से लोग विवाहित या कमिटेड होने के बावजूद भी इमोशनली बहुत अकेले हो गए हैं, और ऐसा माने कि रिश्तों में आधुनिकता की ठंडी सूखी बर्फ सी जम गई है।
0: बात तो बहुत गहरी कह रही हैं आप, और अब इसका इलाज जो है या इसके को किस तरह से ओवरकम किया जाए, महिलाएं अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपनी पावर को पहचाने, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ खड़ी हो जाएं, तो ये किस तरह से महिलाओं को स्ट्रेंथन किस तरह से किया जाए, कुछ इस विषय को भी टच किया है क्या आपने?
1: जी हाँ बिल्कुल, महिलाएं या जो स्त्री है वो अन्नपूर्णा है, वो शक्ति स्वरूपा है, शी हैज टू रियलाइज हर ओन पावर। उसमें हर एक तूफान का सामना करने का सामर्थ्य है, उसमें धरती जैसी स्थिरता और चंद्रमा जैसी शीतलता है, और जीवन के बड़े से बड़े तूफानों को एक महिला शांति से परिवर्तित कर सकती है और अपने साहस से समाज में सुधार ला सकती है। लेकिन ये सिर्फ स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है। कि हमें पता चले कि एक परिवार में और समाज में महिलाएं मेंटली और इमोशनली कैसा फील करती हैं, क्योंकि महिलाओं की मेंटल हेल्थ पे तो हमारा समाज फोकस ही नहीं कर रहा कि एक महिला कैसा फील करती है. ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज हैं.
0: लेकिन ये भी बात है कि आजकल समाज में अगर कोई दिक्कत भी होती है तो उसके बाद में समाज में या अपने पारिवारिक लोगों के बीच में भी खुलकर बातचीत करने से अभी भी लोग हिचकते हैं. ये जो दिक्कत आती है, जैसे अभी ये केस चल रहा है, उसमें भी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने बिल्कुल अपने फैमिली के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बात शेयर नहीं की और बाद में इतना ऐसा बड़ा हादसा हो गया. इसका किस तरह से क्या किया जाए, क्या सोचते हैं इसके बारे में?
1: देखिए, आजकल समाज में चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं. पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं. तो सबसे पहले तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में लीगली अवेयर होना बहुत जरूरी है. और किसी भी रिश्ते में, चाहे बेटी का उसके माँ बाप से हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, इनमें पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, ताकि सबको एक दूसरे की भावनाओं के बारे में एक खुले तरीके से पता रहे. और इनके अलावा आजकल लॉयल्टी, सैक्रिफाइस जैसे मानवीय गुण रिश्तों में होना बहुत आवश्यक हो गया है.
0: सही बात है. तो चलिए, ये जो रिश्तों की जटिलता है या रिश्तों की आपाधापी है, इस पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं. और हमारी फिल्मों में तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से कई गानों के थ्रू भी लाया गया है. तो ये गाना सुनते हैं और फिर आगे इसी विषय पे थोड़ी सी बातचीत और करते हैं.
1: जी बिल्कुल.

0: हाँ, तो आप ये बताइए, जैसे रामायण से सिंबॉलिक पैरेलल्स लेने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मॉडर्न लाइफ में देखना पाठकों को एक अलग सा नजरिया देता है, पर्सपेक्टिव देता है? क्या क्या
1: जी
0: विचार है, आपने किस तरह से किया ये?
1: बिल्कुल आलोक जी, ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अडॉप्ट किया है अपनी नॉवेल में, अपकमिंग नॉवेल में। और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट करके मैं युवाओं को उनके प्रति सजग करना चाहती हूँ, ताकि हमारे युवा रामायण जैसी एपिक्स से जुड़ सकें। और इस तरह की लेखनी के लिए प्रसिद्ध लेखक अमिश हमेशा से मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यदि हम मॉडर्न इंडियन वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो भी आपको हर घर में एक सिया मिलेगी, केकई और मंथरा जैसे कैरेक्टर्स आपको हर परिवार में मिलेंगे। और असामाजिक और संस्कारहीन महिलाओं के रूप में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रूप में एक सूर्पणखा आपको जगह जगह मिलेगी। और यदि हम एक हस्बैंड का रोल देखें, तो कलयुग में कोई भी पुरुष आपको कंप्लीटली राम के रूप में तो नहीं मिलेगा, उसमें रावण के दुर्गुण भी हो सकते हैं। तो जो कैरेक्टर है वो राम और रावण का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने माइथोलॉजी को मॉडर्न इंडियन कैरेक्टर्स के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया है, जिससे आम लोग माइथोलॉजी के साथ और हमारे एपिक्स और स्क्रिप्चर्स के साथ जुड़ सकें और उनसे रिलेट कर सकें।
0: दैट्स वंडरफुल डॉक्टर कोवल, मजा आ गया आपकी बात सुन के। आपका ये कहना कि आज के समाज में अगर हम देखें या परिवारों में देखें, तो आपको केकई भी मिल जाएगी, मंथरा भी मिल जाएगी,
1: जी
0: और सभी मिल जाएंगी, सुमित्रा भी मिल जाएगी, लेकिन और राम मिलना
1: सर, जी
0: मुश्किल है, सुपर कार भी मिल
1: जी
0: जाएगी। बिल्कुल ठीक है,
1: जी
0: बिल्कुल ठीक है। और राम जो है वो वास्तव में मुश्किल है, शायद लक्ष्मण
1: जी
0: जैसा भाई कभी कभार मिल जाए, लेकिन आजकल तो भाई कहाँ रहे।
1: जी
0: लेकिन मजा आ गया, ये पैरेलल तो आपने बहुत बढ़िया बात सुन के आपकी बहुत अच्छा लगा कि किस
1: जी
0: तरह से आपने इसको आज की दुनिया से रिलेट किया है।
1: थैंक यू
0: और
1: सर।
0: बस जो सूखापन आ गया है हमारे रिश्तों में, और लेकिन कहीं भी देखिए, हमारी किसी भी पुरानी मैथोलॉजिकल उस पे चले जाइए, महाभारत भी आजकल घर घर में हो रही है और रामायण भी हर जगह है। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो आपने इसका थॉट था इस बुक के पीछे, इस पे कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है जिससे आप इस पे इंस्पायर हुई हो और आपने ये किताब लिखी हो?
1: सर ये क्वेश्चन मुझे काफी लोगों ने पूछा, मेरे जो रीडर्स रहे हैं पहली बुक के, कि ये क्या ये आपकी लाइफ से प्रेरित है। तो मैंने उनसे कहा कि आई एम एन इंडियन वुमेन, मैं भारत की बेटी हूँ और सबसे पहले राजस्थान की बेटी हूँ। तो ये जो कहानी है, हो सकता है कि इसमें कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन ये हम सबकी कहानी है। ये अकेले मेरी कहानी नहीं है, ये उन सभी बेटियों की कहानी है जिनके मामले न्यूज में आ रहे हैं, जिन्होंने तरह तरह की प्रताड़नाएं झेली हैं। तो ये हर मॉडर्न इंडियन वुमेन की कहानी है, जो वर्किंग है, जो एक मैरिड इंडियन वुमेन है और जो चैलेंजेस फेस करती है अपनी लाइफ में, और फिर वो स्पिरिचुअली खुद से कनेक्ट करती है। तो ये एक जर्नी है, इट इज अ जर्नी ऑफ एवरी इंडियन वुमेन।
0: दैट्स वंडरफुल,
1: और
0: बहुत
1: बाकी मैं
0: बढ़िया।
1: चाहती हूँ कि जो मेरे रीडर्स हैं वो मेरे बारे में जाने, वो मेरी किताबों को पढ़े तो मेरे बारे में भी पढ़े, और फिर वो कनेक्ट कर पाएंगे कि बुक कहाँ तक रिलेटेड है, और मेरे बारे में भी जान पाएंगे। तो आई विल फील बेटर कनेक्टेड टू माय रीडर्स।
0: चलिए, तो हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस किताब के लिए। आई एम श्योर के आपकी लेखनी बहुत कंपैशनेट भी होगी, फियरलेस भी होगी। और चलिए, इस बात पे रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे आपकी जिंदगी के बारे में और बातचीत करते हैं।
1: जी।

0: वेलकम बैक कोमल जी। अब
1: जी
0: थोड़ा
1: सर,
0: सा मैं एक सेंसिटिव सब्जेक्ट की तरफ या आपके एक लाइफ के पार्ट की तरफ आना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो, कि आपने अपने जीवन में विजुअल इम्पेयरमेंट जैसी चुनौती भी फेस किए है और
1: जी
0: इतनी इसके बावजूद भी इतने अचीवमेंट्स आपके रहे। तो अगर बहुत ही एक सहजता से पूछूं तो आपको पहली बार कब ऐसा एहसास हुआ कि आपकी जो साइट है वो नॉर्मल लोगों से अलग है, और ये किस तरह से हुआ?
1: सर, ये मुझे बचपन से ही है और ये बहुत स्लाइट या माइल्ड फॉर्म में है, तो मैंने इसे हमेशा सामान्य जीवन का फॉर्म ही माना, पार्ट ही माना, और मैंने इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानकर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कभी भी इसे कोई कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में एक्सेप्ट किया। और मुझे याद है कि जब मेरे पेरेंट्स मेरी थोड़ी चिंता करते थे, तब मैंने उन्हें हमेशा यही कहा कि आप पॉजिटिव साइड देखिए, आधा ग्लास तो भरा है, उसमें मैं आइस क्यूब्स डाल के उसे पूरा भर लूंगी। ये मैंने कहा था जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी।
0: अरे वंडरफुल, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इस तरह की चीजों से कई बार लोगों में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कई बार ये हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं भी बहुत पहले से कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे भी जब बाद में पता लगा तो लगा कि ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन बाद में लाइफ चलती रही इसी तरह से। बिल्कुल, आई एम श्योर।
1: हाँ सर, लाइफ विल ऑलवेज गो ऑन, और कभी भी किसी को भी अपनी किसी भी कमजोरी को अपनी वीकनेस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस एंड नेवर एवर गिव अप।
0: तो पेरेंट्स का किस तरह से, क्या मतलब जब उनको पता लगा तो हाउ डिड दे सपोर्ट यू, किस तरह से आपको वो हिम्मत
1: दे
0: दिलाते थे, क्या
1: ऑलवेज
0: करते?
1: सपोर्टेड मी, एजुकेशन में बहुत सपोर्ट किया और मुझे पढ़ने के लिए गुजरात भेजा, और फिर हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। मुझे इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए उन्होंने फ्लोरिडा भी भेजा, जिसमें इंटरकल्चरल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में मैंने बहुत अच्छी पोजीशन भी सिक्योर की। मैं मियामी के सेंट थॉमस स्कूल ऑफ लॉ में जाके और मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन फाइट करके आई। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई वॉज अप अगेंस्ट एक्चुअल अमेरिकन लॉयर्स व्हेन आई वॉज अ लॉ स्टूडेंट। तो
0: अच्छा,
1: मेरी मोबिलिटी को लेके, एजुकेशन को लेके, हर चीज को लेके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया।
0: तो ये किस तरह का, क्या कोई आप स्कॉलरशिप पे गए थे या किस तरह से आप स्पॉन्सर होके गए थे, कुछ बताइए उसके बारे में,
1: जी
0: कैसे
1: हाँ
0: गए थे?
1: सर, ये नेशनल लेवल पे हमारी स्क्रूटनी हुई थी जब मैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में थी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे जब मैंने मेरिटोरियसली परफॉर्म किया, तब उन्होंने मुझे इंटरनेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट किया, और तभी सारी फंडिंग और स्पॉन्सरशिप होने के बाद हमें सेंट थॉमस स्कूल ऑफ लॉ ने वहां पे इस कॉम्पिटिशन के लिए सम्मिलित किया।
0: अच्छा, दैट्स वंडरफुल। तो आपने तो इतने अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं लाइफ में, तो उन यंगस्टर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी या क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो फिजिकल लिमिटेशन, इमोशनल सेटबैक के कारण अपने आप को और अपने सपनों को से आगे बढ़ने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाते?
1: जी हाँ आलोक जी, मैं हर यंगस्टर को कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो किसी लिमिटेशन को एक सेटबैक ना समझें, और अपने आप को आप कंट्री के लिए और कॉमन पीपल के लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं, इस बारे में आप अपनी रणनीति बनाएं। और एक छोटी सी कहावत मैं यंगस्टर्स के लिए कहना चाहूंगी, उन्हें प्रेरित करने के लिए, कि परिंदों ने उड़ान भरी है, परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान अभी बाकी है, जीती है अभी चंद वादियां, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।
0: वाह,
1: कीप
0: बहुत
1: गोइंग,
0: बहुत
1: डोंट गिव अप।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए इसी अच्छी लाइंस पे हम रुक के गाना सुन लेते हैं, परिंदों की उड़ान और जीवन की उड़ान के भावों को लेता हुआ, और फिर आगे की बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ कोमल जी, अब आते हैं आपके एक और पसंदीदा विषय की तरफ, संगीत।
1: जी हाँ।
0: आपने जीवन में कानून, प्रशासन, साहित्य तीनों को साधा है, तो संगीत से आपका रिश्ता कब से है और कैसे ये शुरुआत हुई?
1: सर, संगीत से मेरा रिश्ता बहुत छोटी उम्र से है, क्योंकि मुझे एक हारमोनियम मिला था जो कि हमारी तीन चार पुश्तों ने मेरे ननिहाल साइड से, मेरे पर नाना जी ने भी उस श्री तखतराज जी के मावत ने उसे यूज किया था, उस पे संगीत सीखा था। और उसके बाद 6 साल की उम्र से मैं ऐसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ, और उदयपुर में श्रीमती पामल भंडारी मोदी और श्री प्रेम भंडारी, ये दोनों मेरे गुरु रहे हैं, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया।
0: ओके, तो किस तरह का म्यूजिक खास पसंद है? पुराने फिल्मी गीत है, भजन है, सूफी है, गजल, या कुछ और आपको क्या किस तरह का पसंद है?
1: आलोक जी, मुझे भजन गायन का विशेष शौक है। अच्छा। और इसके अलावा, जी हाँ बिल्कुल, और स्पेशली ठाकुर जी के भजन, श्री कृष्ण के भजन गाने का मुझे बहुत ही शौक है। और इसके अलावा गजल्स हैं, ओल्ड फिल्म सॉन्ग्स हैं, ये भी मुझे काफी पसंद है, और ये मुझे बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड और मेंटल काम भी देते हैं।
0: तो कोई ऐसा गीत आपको बताइए जो अपने आपके लाइफ के चैलेंजेस को और होप को, दोनों को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता हो, ऐसा कोई गीत आपके दिमाग में है, जहन में है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, एक गीत है जो डोर फिल्म का है, और ये मैंने हमेशा इसको गुनगुनाया जब भी मैंने किसी चुनौती को फेस किया। तो क्या मैं उसके बोल बताऊं या गाकर सुनाऊं, आप बताइए?
0: अगर गाकर सुनाए तो नथिंग बेटर देन दैट,
1: जी
0: सुनाने तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: उसके बोल
0: और हाँ,
1: ये हौसला कैसे झुके, ये आरजू कैसे रुके।
0: ओके, बहुत अच्छा है।

0: वंडरफुल। मैं तो आपसे ये सोच रहा था कि अभी थोड़ा सा और सुनाएंगी। खैर, इसके अलावा आप और कोई गीत अगर हमारे को गजल या भजन सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है। हम तो मजा आ गया आपका इतने सी दो लाइनें सुन के। सुनाइए आप, अगर कोई आपको पसंद हो, कोई भी एनीथिंग जो आप सुनाना चाहें तो हमें सुनाइए।
1: जी हाँ, मैं ठाकुर जी का एक भजन सुनाऊंगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है।
0: बस इतना ही, और भी सुनाना चाहेंगी?
1: चलिए हम भी थोड़े करके लास्ट में मैं आपको कुछ और पंक्तियां सुना सकती हूँ।
0: हम भी थोड़ा ग्रीडी होते जा रहे हैं। बिल्कुल
1: जी, इट्स माय प्लेजर सर। एक और है भजन जिसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, तो जैसे ही आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें आई विल गो विद अनदर भजन।
0: नहीं नहीं, अब ऑलमोस्ट हम आखिरी पायदान पे आ गए हैं। अब एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा मैं आपसे, और टाइम इतनी जल्दी गया आपके साथ बात करने में कि मुझे पता ही नहीं लगा कि हम इतना टाइम निकल चुका है हमारा
1: जी,
0: है ना। तो चलिए यहाँ रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर अपन इसको लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं।
1: बिल्कुल सर।

0: वेलकम बैक कोमल जी। अब आप ये बताइए कि आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो क्या हैं? क्या किसी नई पुस्तक या नए विषय पर आप काम कर रही हैं? क्या सोच रही हैं, आगे किस तरह से देखती हैं इसको?
1: जी सर, मैं अभी अपनी आगामी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म के कंप्लीशन और एडिटिंग पर वर्क कर रही हूँ। और ये पुस्तक मेरे बहुत ही करीब है, क्योंकि मैं इस पुस्तक से समाज में बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं इसमें जो महिलाओं के प्रति समाज का फर्ज है और दृष्टिकोण है, वो बदलना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मॉडर्न इंडियन वुमेन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर करें, तब भी वो खुद को ना भूलें। दे मस्ट चूज देमसेल्व्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड ईच एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं हो कि वो महिला जो एक शादी के संस्था में एंटर करती है, वो धीरे धीरे खुद को उसमें खो दे। वो अपने आप से कनेक्टेड रहे और सेल्फ लव और सेल्फ रियलाइजेशन तथा अपनी स्पिरिचुअलिटी पर भी फोकस करे और ग्रो करे।
0: आई नो, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है समाज में, या तो महिलाएं शादी नहीं करना चाह रही हैं, और
1: जी
0: शादी
1: हाँ
0: करना चाह रही हैं तो मैरिड लाइफ में किसी तरह से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। जिनकी शादियां हो जाती हैं वो चाहती है कि हमारे बच्चे नहीं हों। तो आजकल तो जहाँ भी समाज में देखते हैं, खासतौर से बेंगलोर, मुंबई, इस तरह के बड़े शहरों में जो लाइफ है

0: लेकिन क्या उन सबसे भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस एक महिला को खुश रखे जो अपना सब कुछ छोड़ के आती है? और अगर वो विवाह नहीं करना चाहती तो इट शुड बी हर चॉइस। अभी लेटेस्ट बहुत सारे सर्वेज आए हैं जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक 45% महिलाएं विवाह की संस्था में एंटर नहीं करेंगी। तो ये फैसला क्यों हुआ? ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे समाज ने महिलाओं का किया है, उसकी वजह से महिलाएं लिबरेट हुई हैं, या उन्होंने ये ओपन एटीट्यूड अडॉप्ट किया है? तो अगर वो नहीं करना चाहती विवाह, तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये नहीं होना चाहिए समाज को कि वो हर महिला को मेंटली प्रेशराइज करे कि वो विवाह में एंटर करे। बहुत सारी चीजें हैं जो वो बिना विवाह के भी कर सकती है, जैसे कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अकेडमिक ग्रोथ, ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो हर महिला को विवाह की संस्था में झोंक देना एक बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। सोसाइटी उनको अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करे अगर वो अपने करियर या किसी और चीज पे फोकस करना चाहती हैं। और रही बात बच्चे और परिवार आगे बढ़ाने की, तो इस बारे में भी सर मेरा ये मानना है कि हैविंग अ चाइल्ड शुड बी अ वुमेन्स चॉइस बिकॉज इट इज हर बॉडी, इट शुड बी हर चॉइस। जनसंख्या ऑलरेडी करोड़ों पार कर चुकी है, तो अगर कुछ लोग चूज करते हैं कि वी डू नॉट वॉन्ट अ चाइल्ड, इट शुड बी अ मैटर ऑफ देयर चॉइस बिकॉज इट इज अबाउट अ वुमेन्स हेल्थ। सो मेरे आइडियाज कुछ फेमिनिस्ट हैं और कई बार मुझे लोगों से इस बारे में थोड़ा सा ये फेस करना पड़ता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं महिलाओं के पक्ष में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। क्योंकि लड़कियां, आपने जैसा न्यूज में देखा होगा कि लड़कियों की डेथ हो रही है, लड़कियां प्रेशर में हैं, और समाज अभी तक इस बारे में, हमारा समाज जवाब नहीं दे पाया है। तो समाज को जवाब देना होगा कि 2026 है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, देश और दुनिया, तो फिर हमारी बेटियों के साथ ऐसे क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है उन्हें?
1: बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बहुत सारी बातें कह दी और बहुत ही एक गंभीर बातें हैं। और आज के समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उसको जब तक ताकत नहीं मिलेगी और उनकी जिंदगी की मालिक वो खुद हैं, जब तक ये फीलिंग हमारे, हम लोग भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे ओन देयर बॉडी एंड दे ओन देयर माइंड बोथ, तो ये जब तक उनमें खास बात नहीं आएगी तब तक बहुत बहुत मुश्किल होगा। चलिए कोमल जी, तो फिर अब आखिरी पायदान पे हम आपसे यही पूछते हैं कि ऐसे लोग जो एक इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप कोई खास संदेश देना चाहें या कोई गाना उनको सुनाना चाहें, एनीथिंग जो आपको पसंद हो वो आप मोस्ट वेलकम।
0: जी हाँ, जब भी जीवन में कोई तूफान आता है वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, वो हमें एक बदलाव लाने के लिए आता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़े चैलेंज या तूफान या स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, तो मेरा मैसेज आपको यही है कि पिक अप द पीसेस एंड मूव ऑन, डू नॉट स्टैगनेट, आप वहीं पे फंसे ना रह जाइए, मूव ऑन करिए, कभी हार ना माने, और उस स्टॉर्म को या उस तूफान को एक लेसन की तरह उसे सीखें और उसके बाद काम या स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग अ फ्यू लाइन दैट बी पेशेंट इन द स्टॉर्म एंड फोकस ऑन द सनशाइन आफ्टर, क्योंकि उस तूफान के बाद जरूर रोशनी आएगी, जरूर पॉजिटिविटी आएगी। धन्यवाद।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कोमल जैन जी, आज की बातचीत केवल एक इंटरव्यू नहीं बल्कि संवेदनाओं, साहस, आत्मविश्वास और इनर हीलिंग की खूबसूरत यात्रा रही। आपने जैसी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ रिश्तों, आत्मसम्मान, संघर्ष, फॉरगिवनेस और जीवन की चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए, वह निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के दिलों को छुएगा। आपकी कहानी ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि इंसान के भीतर विश्वास, धैर्य और आगे बढ़ने का साहस हो तो हर तूफान के बाद एक शांत और सुंदर सुबह जरूर आती है। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला।
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। कि आपने मेरे

0: स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड ओपिनियंस को एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इसको सुने, अपने लीगल राइट्स के प्रति अवेयर हों और अपने आप से एक रिश्ता कायम करें।
1: तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पुस्तक द काम आफ्टर द स्टॉर्म पाठकों के दिल तक पहुंचे और उन्हें जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं रेडियो SN। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत पर एक नई बातचीत के साथ। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपनी खुद की प्रतिभा, अपने खुद के चरित्र और अपने खुद के बारे में। इस बात को आराम से समझिए दोस्तों, आप ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएशन, रचना, कृति या कुछ भी कह लीजिए, प्रकृति में उपस्थित एक ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई कंपटीशन नहीं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा कुछ सामान ले जाएगा, मेरा हक छीन लेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। प्रकृति के नियम है, जो आपके लिए आया है वो कोई दूसरा ले ही नहीं जा सकता। होड़ में मत लगिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने आप में धैर्यवान रहते हुए पूरी तरह से सुनिश्चित रखिए, करिए कि आप वही हैं जो ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा है और सब कुछ आपके लिए तय है। अपना काम करते चलिए। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते चलिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते चलिए। यूं तो गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि काम करता चल, फल की इच्छा मत कर, लेकिन दोस्तों हम इंसान हैं, बिना फल की इच्छा किए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो जितना मैंने समझा उसके हिसाब से मैं सुझाव दे देता हूं। आपको जमे तो रखिए, नहीं जमे तो जाने दीजिए। वो ये कि काम करते तो जरूर चलिए, फल भी अपने दिमाग में रखिए, लेकिन दूसरों के फल को देखकर तड़पिए मत। गौर कीजिए, हम इंसानों की यही तकलीफ है। किसी के पास कोई बेहतर गाड़ी,

बेहतर मकान, कोई बेहतर सुविधाएं, कोई बेहतर कपड़े और न जाने क्या क्या। हम अपने आप को बस उनसे कंपेयर ही करते चलते जाते हैं। जो हमें मिला, जो हमारे पास है, जो हमें मिलने वाला है, जो ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे लिए तय कर रखा है, हम उसके बारे में जरा सा भी न तो शुक्रिया कहते और न ही खुश होते हैं। गौर कीजिए ना आप, क्या सचमुच आपके पास जो मोबाइल है उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? क्या सचमुच आपके पास जो बाइक है, जो कार है, जो मकान है, जो परिवार है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? जब आपने उनके लिए शुक्रिया अदा किया ही नहीं तो और कैसे मांगेंगे आप? ये तो कुछ ऐसा है ना कि आपको चाय दी गई पीने के लिए, मजे लेने के लिए, रिफ्रेश हो जाने के लिए, और आप कहते हैं नहीं साहब मुझे तो कॉफी चाहिए। अरे जो आया सामने वो ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है, प्रकृति ने, कुदरत ने आपके पास भेजा है, पहले उसे स्वीकार कर उसका शुक्रिया अदा तो कहिए। मेरा बहुत तहे दिल से मानना है जिंदगी में और बहुत सारा कुछ पाने के लिए आसान सा एक तरीका है शुक्रिया कहते चलना। जो भी है हमारे पास शुक्रिया कहते चलिए। इससे कुदरत को एक संदेश मिलता है कि इस इंसान को और चाहिए, तभी तो जो कुछ भी मैंने इसे दिया वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, तो इसे और दो। जिस भी वक्त आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो कुदरत को यह संदेश मिलता है कि ठीक है इस इंसान को और नहीं चाहिए, ये चीज, ये सुविधा या ये समृद्धि मैं किसी और को दे देती हूं। इसलिए जो कुछ भी आए शुक्रिया कहिए और की उम्मीद में खुश रहिए दोस्तों।

चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं हरमन हेस से, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये मानव सभ्यता की नाकामी ही तो है कि ना तो मन की आग शांत होती है और ना ही युद्ध की। रह रह कर धधक उठती है और इंसान अपने ज्ञान की तमाम महान पवित्र पोथियों को किनारे रखकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। युद्ध के दिन दिलो दिमाग से मिटाई नहीं मिटते। उन दिनों भी दुनिया पहले विश्व युद्ध पर उतरी हुई थी। माहौल ऐसा बन गया था कि लगता था किसी ना किसी दिन सबको लहूलुहान होना पड़ेगा। वो दुबले पतले से भावपूर्ण नैन नक्श वाले लेखक भी युद्ध की आंच से तप रहे थे। जब पास ही आग लगी हो तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जाता। यूरोप के ज्यादातर कवि लेखक भी देश के लिए बंदूक थाम चुके थे। कुछ युवा लेखकों की तो जंगी मोर्चे पर जान भी जा चुकी थी। सभी पर युद्ध में जाकर दो दो हाथ करने का गजब का दबाव था। इस लेखक ने भी अपना नाम इंपीरियल सेना में बहाली के लिए लिखवा दिया, पर उस नाजुक मन रचनाकार को युद्ध लड़ने के अयोग्य पाया गया। उन्हें युद्ध बंदियों की देखभाल से जुड़ी सेवा में लगा दिया गया। ऐसा लगता था कि दुनिया अब लड़कर ही खत्म होगी। कवियों के बीच भी बहुत नफरत पसर गई थी। उन्हीं दिनों इस नफरत के खिलाफ इस लेखक ने एक लेख लिखा। उन्होंने सबको समझाया कि राष्ट्रवादी पागलपन और नफरत की खाई में ऐसे ना गिरें कि फिर निकलना ही मुमकिन ना हो। नफरत से बड़ा है प्यार, क्रोध से बड़ी है समझ और युद्ध से महान है शांति। दुर्भाग्य की बात है, कोई नहीं समझ पाया। लेखक बिरादरी दुश्मन हो गई और मीडिया शब्द बाण बरसाने लगा। बहुत धमकियां मिली। लेखक का घर से निकलना दूभर हो गया। उन्होंने अपने भारत प्रेमी मित्र लेखक रोमा रोला को पत्र लिखा, दोस्त, सियासी मामलों में प्यार आजमाने की मेरी कोशिशें नाकाम हो गईं। निर्णायक पल था, दिल बिखर गया। अवसाद ने अपने भंवर में लपेट लिया। वैसे भी मुसीबतें खुदरा नहीं, थोक में आती हैं। पहाड़ की तरह साथ खड़े पिता जिंदगी की जंग हार गए। सगा पुत्र गंभीर बीमारियों में पड़ गया और पत्नी की मानसिक दशा अपनी दिशा भटक गई। फिर तो कुछ भी ना बचा, कौन संभालता। मन इतना डगमगाया कि दिमाग ने भी जवाब दे दिया और लेखक का शरीर एक मनोरोगी उपचार केंद्र में पहुंच गया। एक अच्छे लेखक के बारे में लगभग घोषणा ही हो गई कि उसे युद्ध की आंधी उड़ा ले गई है। पढ़ना लिखना तो छूट ही गया, पर सौभाग्य की बात थी कि उन्हें मनोचिकित्सकों ने बहुत सहारा दिया। जो अच्छी चीजें उनके अंदर सूख गई थी उन्हें फिर से हरा भरा करने की कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगी। किसी भी तकलीफ या किसी एक हार पर दुनिया खत्म नहीं होती। सुख दुख भोग योग संयम त्याग उपवास की ओर मन बहने लगा। दुख के बादल भी ओझल होने लगे। धर्म चिंतन ने तमाम कष्टों और असुरक्षा बोध की गहरी गुफा से बाहर ला दिया। सनातन धर्म के साथ साथ गौतम बुद्ध बार बार याद आने लगे। लेखक महोदय कुछ वर्षों पहले जर्मनी से श्रीलंका तो आए थे, पर भारत आने से पहले बीमार पड़ गए थे और स्वदेश लौटना पड़ा था। पर भारत के पास से गुजरते हुए इस मोक्ष भूमि के प्रति प्रेम का बीज उनके मन में पहले से पड़ा हुआ था, वो अब अंकुरित हो गया। उन्होंने भारतीय दर्शन और बुद्ध को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा। नाम था सिद्धार्थ। भोग में भी योग तलाश करने की कला के साथ ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो ज्ञान उन लेखक महोदय को मिला उसने कमाल कर दिया। साहित्य की दुनिया में जब सिद्धार्थ का आगमन हुआ तब विश्व युद्ध बीत चुका था और दुनिया विकास की नई लहर से पुलकित हो रही थी। दुनिया ने अपने एक महान लेखक हरमन हेस को भारतीयता से ओतप्रोत नई रोशनी में देखा। सिद्धार्थ लिखने के बाद हरमन न जाने कितनी वर्जनाओं और उलझनों से एक झटके में उबर गए।
तो फिर घर नहीं लौटे। उन्होंने पुराने जीवन के कारागार को तोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में जा बसे। दुनिया को एक से बढ़कर एक कृतियों से संपन्न कर दिया और साहित्य के सर्वश्रेष्ठ सम्मान नोबेल से नवाजे गए। अकेले अमेरिका में इस उपन्यास की 50 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। गौर कीजिए, हरमन हेस 1877 से 1962 तक ये पुस्तक अपने भारत प्रेमी मित्र रोमा रोला के नाम समर्पित की थी इन्होंने। जी, वही रोमा रोला जिन्होंने कभी कहा था, यदि पृथ्वी पर कोई एक जगह है जहां जीवित मनुष्यों के सभी सपनों को शुरुआती दिनों से ही घर मिला हुआ है, जब मनुष्यों ने अस्तित्व का सपना देखना शुरू किया था, तो वो भारत है।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

आइए दोस्तों मिलते हैं कैडेंस लाइटनर से, जो एक समाज सेविका हैं। मां के मन को तो भगवान ही जानता है। मां की ममता का विस्तार वहां तक होता है जहां किसी की कोई पहुंच नहीं होती। मां ऐसे खतरों के प्रति भी सचेत होती है जो शायद कभी होते ही नहीं। बच्चे की हिचकी से जमीन पर पैर रखने तक और गोद से उतरकर कदम जमाते तक सब कुछ मां को महसूस होता है। पर यहां तो इस मां की एक बच्ची कुछ कदम नहीं, बल्कि इतनी दूर चली गई कि जहां से कोई नहीं लौटता। मन में दर्द के ज्वार उमड़ते हैं और मां बेचैन बावली हो उठती है। वो मां सोचती रहती है कि मेरी बच्ची का भला क्या दोष था। वो तो सड़क किनारे चुपचाप मस्ती से चली जा रही थी, पर पीछे से एक गाड़ी आई और 125 फीट दूर घसीटती ले गई। क्या ड्राइवर इतना बेहोश था कि सड़क से किनारे साइकिल पथ पर गाड़ी दौड़ाने लगा? लोगों ने बताया कि ड्राइवर नशे में था, नशे में ही सब तबाह कर दिया। वो मां भागती हांफती घर पहुंची। किसी ने बताया था कि हमने कैरी को खो दिया। मां ने विश्वास के साथ कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो यहीं कहीं पड़ोस में होगी, हम खोज लेंगे उसे। तब उस मां को दो टूक बताया गया कि सुनो, तुम्हारी बच्ची कैरी अब इस दुनिया में नहीं रही। एक कार वाले ने टक्कर मार दी और अब वो चल बसी, अब ना लौटेगी। ये सुनकर तो मानो अंधकार टूट पड़ा, बदहवासी छा गई। जब कुछ होश आया तो मन हुआ कि बच्ची के अंग अगर किसी के काम आ जाएं तो। तब डॉक्टर्स ने कहा, माफ कीजिएगा, दुर्घटना में एक भी अंग सलामत नहीं बचा। ये सुनकर तो दिल और बैठ गया। तब दुख और रोष की गठरी बनी हुई इस मां ने कहा, उस ड्राइवर को मत छोड़ना जिसकी वजह से मेरे आंगन ने अपनी प्यारी चिड़िया को हमेशा के लिए खो दिया, जिसने मेरे चहचहाते हुए संसार को हाहाकार में बदल दिया, उस अपराधी को मत छोड़ना। मन तो नहीं मानता था। वो मां अक्सर उस जगह से गुजरती थी जहां बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी और उस दिन वहां पुलिस वाले जांच में जुटे थे। सवाल से भरी हुई वो मां वहीं रुक गई तो पता चला कि दोषी ड्राइवर खुलेआम घूम रहा है, जमानत हो गई उसकी, उसके जेल जाने की भी कोई संभावना नहीं थी। और तो और ये भी पता चला कि वो शराबी आदतन दुर्घटनाएं करता ही रहता है। ये दुर्घटना तो उसके खिलाफ चौथा मामला है और वो कुछ ही दिनों पहले जमानत पर छूट गया। वो इस बार अपने घर में 3 दिन तक शराब पीने के बाद बस कार से तफरी करने निकला था। उसने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। पुलिस वालों ने ही बताया कि क्या करें, कानून ही ऐसा है कि सड़क दुर्घटना में सजा नहीं होती। नशे में धुत गाड़ी चलाना आम बात है, मासूम लोग रोज ही सड़कों पर मारे जाते हैं। ये सब जानकर उस मां का दिल सिर्फ रोया नहीं, गुस्से से उफन पड़ा। ठान लिया कि ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं है। ये रोज न जाने कितनी माओं की गोद सूनी करते हैं, ये सड़क पर ही नहीं बल्कि सभ्य समाज में भी चलने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को इनके ठिकाने पर पहुंचाना ही होगा। गुस्से और जुनून से लैस उस विरल मां कैडेंस लाइटनर पर अमेरिका की निगाह पड़ गई। लाइटनर ने देश में सबसे ज्यादा जुर्म होने वाले इन मामलों में व्यवस्था और सामाजिक स्वीकृति के प्रचलित रवैये को बदल देने के लिए बगावत का बिगुल बजा दिया। वो घर से निकल पड़ी और मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग अभियान की शुरुआत की। उन्होंने न केवल नशे में गाड़ी चलाने को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य करने का आंदोलन किया, बल्कि पीड़ितों की अग्रणी वकील भी बन गई। उन्होंने पीड़ितों और दुर्घटना में बाल बाल बचे लोगों को सिखाया कि अदालत में न्याय के लिए कैसे लड़ें। अमेरिका की संसद में भी उन्हें ध्यान से सुना गया।
दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए और सड़कों पर इंसानियत की बहाली के लिए अमेरिकी राज्यों और देश में 100 से ज्यादा कानून बनाए गए या बदल दिए गए। एक मां ने अनगिनत माओं के साथ मिलकर देश का मिजाज ही बदल डाला। उनका यह अभियान दूसरे देशों में भी जा फैला। अकेले अमेरिका में ही उन्हें 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाने का श्रेय मिला। वहां शराबी हत्यारों को 4 साल से लेकर 30 साल तक की सजा होती है। इस मां की संस्था के पास 20 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और करोड़ों रुपयों का कोष भी है। अद्भुत मां कैडेंस लाइटनर को 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अमेरिकी नागरिकों में गिना जाता है। उन्हें राष्ट्र की अंतरात्मा और आंदोलन की जननी भी कहा जाता है।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश लेता हूँ। साइकिल पर चलता हूँ फिर भी फोन को फ्लाइट मोड पर डालता हूँ।
3: हंसो मत, बोलो

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं झाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे, तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

इस आग में जलते हो चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहे भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुड़ियां चलती है, जब चैन से कोई सोता है।

0: दिल का पर्दा खोल दो, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाख में भला पाके तुम्हें कोई खोता है, जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार पतंगे चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: कटारी
1: है मीठी

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
0: ओ छोड़ दो आजकल जमाना

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवानंद साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल।

अरुणा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

हिमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और

0: दोस्तों, हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हाँ सर, बोलो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।

सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर कर देखते हैं। सो उस शहर में कुछ दिन ठहर कर देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर और शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर को देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात भर उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामाए फलक से उतर कर देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर कर देखते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त हाथी रॉय, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपका अपना महफिलों की रौनक बढ़ाने वाला प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब दुनिया की बंदिशें और रोज़मर्रा की मसरूफियात हमारे जहन को थका देती हैं, तब दिल किसी ऐसे साए की जस्तजू करता है जहां वो अपने बिखरे ख्यालात समेट सके। ऐसे ही लम्हों में शायरी और मौसीकी की हमारी तन्हाई के साथ जैसे चोली दामन का साथ बन जाता है। कमाल की बात तो ये है दोस्तों, जो बातें हम अपनों से भी कहने से कतराते हैं, कोई ज़हीन शायर उन्हें सिर्फ एक मिसरे में पिरोकर हमारी रूह को एक मखमली तसल्ली अता कर देता है। आज की ये नफीस शाम भी कुछ इसी दिलकश मिजाज को अपने आगोश में समेटे हुए आगे बढ़ेगी। तो अपनी मसरूफियात को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, जहन को बिल्कुल सुकून दे दीजिए और कुछ देर इन सुरों को अपने नाम कर लीजिए। आइए बिना और देर के आगाज करते हैं सुरों के इस नए सिलसिले का और रुख करते हैं हमारी आज की पहली पेशकश की ओर। दोस्तों, आज जब मैं YouTube पर गज़लों को ढूंढ रही थी तो अचानक ये वीडियो सामने आ गया, कोई जागृति फिल्म्स भुज कच्छ का कोई लाइव प्रोग्राम था। फिर मैं रुकी, बैठी और सुना तो बहुत पसंद आई ये गज़ल, नगमा या जो भी था। जो भी शख्स इसको गा रहा था वो खूब गा रहा था। गज़ल का मिसरा है, तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या और किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, माय लव फिल्म की गज़ल या नगमा जो हमारे मुकेश साहब ने गाया था।
1970 में, जिसके मौसिकार थे दान सिंह और इसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने। इतनी पुरासर कैफियत, कितनी बेलौस मोहब्बत, कितनी तिश्नगी, क्या क्या नहीं इस इजहार मोहब्बत बयां में, सच कोई कमी नहीं। और जिस अंदाज से मुकेश साहब ने इसे गाया है उसकी तो कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये किसी महफिल में कोई शख्स गा रहा था और मुझे उसकी गायकी पसंद आई। ये गज़ल हम सब के माजी की कोई याद की तर्जुमानी ज़रूर करती होगी। मुझे अच्छे से याद है, मैं इसे अक्सर गाया करती थी।

आपके लिए एक बेशकीमती जवाहर चुनकर लाई हूँ। आपके मूड को 360 डिग्री मोड़ कर एक ऐसी रूहानियत की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तबले की थाप का अंदाज बदल जाता है, दिल बस झूमने लगता है। परेशान दिल भी उठकर अपना गम भूलकर इसकी थाप पर नाचने लगता है। जी हाँ, मैंने हमारी बज़्म में दावत एक बार फिर से दी है पद्मश्री से सम्मानित हंसराज हंस जी को। इस मस्त बेबाक नगमे को उन्होंने जिस अंदाज से पेश किया वो काबिले तारीफ है। इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने और संगीत से सजाया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने और गाया बकौल गायक हंसराज हंस जी ने। कहते हैं इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में डूबा। इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में डूबा। एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले जान अपनी। फिर फरमाते हैं खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा, यानी जान भी मांगता है इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। इश्क की गली से कोई कोई ही निकलता है। फिर कहते हैं जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। लाख बचाए दामन लोभ लग जाता है। इश्क इश्क है मैदाने ओ जंग दा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। आप जब सुनेंगे तो यकीनन मज़ा आएगा क्योंकि पंजाबी एक्सेंट होने के बावजूद साफ साफ समझ में आ जाता है कि नाम है दीवाना दूजा नाम कोई नहीं, प्यार के जैसा बदनाम नहीं कोई, इश्क से बड़ा इल्ज़ाम नहीं कोई। इश्क आशकानू सूली उत्ते टंगदा, इश्क आशकानू सूली उत्ते टंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। तो सब कुछ भूल भाल कर बस हंसराज हंस की मस्त गायकी का लुत्फ उठाएं। खाली दिल नहीं जानवी ये मंगदा।

दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि दिल बुझ सा जाता है, या फिर किसी की चाहत में बिल्कुल ही दीवानावर हो जाता है। तब किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगता। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने इस कलाम में दिल के उसी मुकम्मल बेपनाह दीवानगी को साफ साफ लफ्ज़ों में बयां किया है। वो कहते हैं कि भले ही मुझे लफ्ज़ों में मोहब्बत की गहराई नापना ना आता हो, मगर सच यही है कि तुम्हारे साथ के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं। बुनियादी तौर पर राग भैरवी की शास्त्रीय बंदिशों में लिपटे इस तारीखी दर्द को आज हम गुजरे दौर की एक ऐसी शख्सियत के अंदाज में पेश करने जा रहे हैं कि जिनकी आवाज़ को छूना हर किसी के बस की बात नहीं। ये मुकम्मल पेशकश है सुरों की मलिका बेगम परवीन सुल्ताना जी की। पटियाला घराने की इस अजीम फनकार ने जब आर डी बर्मन साहब की इस नाजुक धुन को अपने बुलंद और मखमली लहजे से नवाजा, तो ये कलाम सिर्फ नगमा नहीं रहा बल्कि रूह की पुकार बन गया। मजरू साहब की कलम से निकले इस गज़ल का ये हसीन मिसरा ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। जहाँ सदियों पुरानी दीवानगी छलकती है, वो कहते हैं, मैं तो सदा की तुमरी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी हाय कदर न जानी। और बिरहा का दर्द तान और आलापों के जरिए अपनी आखिरी हदों को छूता है, तो बेगम साहिबा की बुलंद आवाज में ये सीधे कलेजे के पार होता है। फिर कहती हैं, कोई जो डाले तुम पे नयनवा, कोई जो डाले तुम पे नयनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा, जले मोरा मनवा। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद नफीस और आलिशान मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना की आवाज में इस नगमे को। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना आपकी नजर।

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तहानों की जिस आजमाइश की का ज़िक्र आज हमारे सफ़र का मरकज़ है, उसकी एक बहुत ही हसीन शक्ल हमें इस सूफियाना कलाम में देखने को मिलती है। ये शाहकार मुकम्मल तौर पर उस रूहानी कश्मकश को बयां करता है जहां आशिक अपने महबूब के सामने अपनी बेपनाह चाहत का इकरार करता है, मगर हायरी किस्मत, सामने वाले को उसकी इस पाक मोहब्बत पर यकीन ही नहीं, वो सिर्फ उसे एक बहाना समझता है। ये गज़ल बुनियादी तौर पर गुलाम अली जी की आवाज़ में बहुत मकबूल हुई थी, लेकिन इस पंजाबी सूफियाना दर्द को हम एकदम नए लहजे में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस कलाम की अपनी बहुत उम्दा आवाज़ में रूहानी तासीर दी है पंजाब की मिट्टी से जुड़े एक बेहद ज़हीन गुलकार दविंदर पाल सिंह ने। दविंदर साहब की बुलंद आवाज़ में एक रूहानी टीस है जो गज़ल के बोलों के साथ मिलकर एक अलग सा सुकून पैदा करती है। दविंदर पाल की ठहरी हुई तान में ये मिसरा सीधे ठक करके दिल को धड़काता है। वो फरमाते हैं, ये मैं झूठ बोला ते रब जाने, ये मैं सच बोला ते इतबार तेनू। यानी अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा परवरदिगार मेरा हिसाब करे, और अगर मैं सच कह रहा हूं तो फिर तुम्हें मेरी इस सच्ची इबादत पर यकीन क्यों नहीं आता। तो आइए सुनते हैं इस खास पेशकश को, अल्फाज से एहसास तक के अछूते मरहले को छू कर निकलते हुए। मुलायजा फरमाइए दविंदर पाल सिंह की खूबसूरत आवाज में ये सदाबहार कलाम, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनो आपकी नजर।

ये गजल मुझे अभी याद आई है, पंजाबी की है तो गुलाम अली साहब ने गाई है, भीम पलासी में ही है। थोड़ा इमोशनल हो रहा।

क्या ना जफाएं दिल पे सही, क्या क्या ना जफाएं दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा ना किया। इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में। जब चांदनी रातों में खुद हमसे किया इकरारे वफा, जब चांदनी रातों में खुद हमसे किया इकरारे वफा, फिर आज है क्यों हम बेगाने, फिर आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम बेरहम निगाहों में। दोस्तों, कतील शफाई के बोल हैं और इसको सुरों से सजाने का काम सौंपा गया सरहद पार के मशहूर गुलुकार मास्टर इनायत हुसैन जी को, और इसकी गुलुकार थी इकबाल बानो जी। ये गज़ल जब रिलीज़ हुई 60 की दहाई में तो एक

रेस बन गई दोनों ही मुल्कों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इकबाल बानो जी का एक बेहद ऑर्थोडॉक्स परिवार में जन्म हुआ था और दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। ये गज़ल गाने के बाद गायकी की मिसाल कायम कर दी उन्होंने। उस वक्त में जब पाकिस्तान में गज़ल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ख़ास लोग नहीं थे, इसके तो बहुत बाद फरीदा खानम, मेहती हसन और ग़ुलाम अली जी ने गज़ल गायकी में अपने पाँव रखे थे। तब तक इकबाल बानो पाकिस्तान फिल्म्स में इनायत हुसैन, जो कि एक बहुत मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर थे, की मौसीकी में बहुत मशहूर गाने गा चुकी थी और गज़लें भी गा चुकी थी। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनका जन्म 1935 में दिल्ली में हुआ था। वो शुरुआती दिनों में क्लासिकल म्यूज़िक सीखने लग गई थी। जब वो गाती थी तो उनके जानने वालों ने उनके परिवार वालों को समझाया कि आपकी बेटी के गले में बहुत तरन्नम है, बहुत सुर है, तो इनको आप गाने का मौका दीजिए। तो उनके परिवार वाले मान गए। फिर उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखने का फ़ैसला किया और सीखने भी लग गई। तो अपने लंबे म्यूज़िक के करियर में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गज़लें और फिल्मों में नगमे गाए। साल 1954 में जब वो महज 19 साल की थी, उन्होंने अपनी पहली गज़ल रिकॉर्ड की एक मशहूर फिल्म गुमनाम के लिए। इस मशहूर गज़ल में उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करके गाया है और लफ्ज़ों की बानगी से इसको बहुत खूबसूरत बना दिया है। आइए सुनते हैं ये बहुत ही मशहूर गज़ल। उल्फत की नई मंजिल को चला, उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में।

दम सा घुटता है अगर गम की स्याह रातों में, दम सा घुटता है अगर गम की स्याह रातों में, क्षमा की लौ कोई चुपके से बढ़ा देता है। या फिर मैं तो अब अहदे वफा और से कर लूं, मैं तो अब अहदे वफा और से कर लूं, लेकिन कोई धीरे से मेरा हाथ दबा देता है। आज भी कोई मुझे दादे वफा देता है। दोस्तों, जान निसार अख्तर जी ने इस कलाम में मोहब्बत की उस अमर तासीर को लिखा है। वो कहते हैं कि भले ही वो हम सफ़र आज मेरे पास नहीं है, मगर उसके पाक जज्बातों का तसव्वुर आज भी मेरे जहन में वैसे ही ताज़ा है जैसे कल की बात हो। आज भी जब मैं गुज़रे कल को याद करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई मेरी वफा की गवाही दे रहा हो। और इस रूहानी एहसास को सुरों का पैरहन दिया हमारे अपने हरदिल अज़ीज़ मुकेश साहब ने। मुकेश साहब की गायकी की ये खासियत रही है कि उनकी आवाज़ में छुपे सोज और सच्चाई का कोई मुकाबला ही नहीं। विपिन मेहरा साहब की इस नाजुक धुन पर जब मुकेश साहब की आवाज़ गूंजती है तो जहन की तनी हुई नसें शांत हो जाती हैं। तो अल्फाज से एहसास के इस बेहद नसीब नफीस मकाम पर पूरी तवज्जो के साथ समायत फरमाते हैं मुकेश साहब की इस नायाब और सुरीली नॉन फिल्मी गज़ल को। आज भी उनकी मोहब्बत का तसव्वुर है कोई, आज भी कोई मुझे दादे वफा देता है। आपकी नज़र।

दोस्तों, इतने लाजवाब सुरीले नगमों और गज़लों में डूबते उतरते पता ही नहीं चला कब घड़ी की सुइयां चुपके से इशारा करने लगी कि अब प्रोग्राम के अहतमाम का वक्त हो चुका है। उम्मीद है आज की नगमें गज़लें आपको पसंद आई होंगी। हालांकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आप तक चुनिंदा ख़ास गज़लें लेकर आऊँ। दोस्तों, गज़लों को चुनते वक्त मैं शबरी का रोल निभाती हूँ। खाकर नहीं, एक एक गज़ल को सुन सुन कर चुन चुन कर आपके लिए लाती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये आपके दिल को भी भाएंगी। तो इन लफ्ज़ों से आप तक मेरे एहसास भी पहुँच गए होंगे। अब मुझे यानी आपकी दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाज़त और आप सुनते रहें अपना प्यारा SN रेडियो और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर, इस उम्मीद के साथ कि एक और शाम कुछ अलग लफ्ज़ों के एहसास पिरो कर लाऊंगी मैं आपके लिए। तब तक खुश रहिएगा, गाते मुस्कुराते रहिएगा, दुआओं में याद जरूर रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टंडियाबिल 90.FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी काफी किसानों ने और विद्यार्थियों ने इसे अपने फोनों में डाउनलोड किया है और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को रेडियो टंडियाबिल 90.8FM के ऐप के माध्यम से लिया है। किसान साथियों, रेडियो टंडियाबिल 90.8FM का खेती बाड़ी कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि हमारा जो किसान है उसकी आय के स्रोतों में वृद्धि हो, साथ ही उन्हें नए आय के नए स्रोतों के बारे में जानकारी मिले, हमारे भारत देश की खेती संबंधी योजनाओं का लाभ उठा सके, साथ ही हमारे कृषि में होने वाले नए नए बदलावों को जान सके और देश विदेश की मंडी भावों के बारे में जान सके, साथ ही उन्हें मौसम के हाल से लेकर हमारे पर्यावरण के बदलावों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो कृषि भूमि है, हमारी जो कृषि है पूर्णतः पर्यावरण के ऊपर आश्रित है। इसीलिए किसान भाइयों, हमें यहाँ पर बहुत ही आवश्यकता है कि हमें पर्यावरण में हो रहे बदलावों को देखते हुए हमें हमारी कृषि में भी बदलाव की आवश्यकता है। किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आज हमारा जो किसान है वो किसान अभी व्यावसायिक खेती करने लगा है, व्यावसायिक खेती के लिए अधिक लाभ पाने के चक्कर में हमारा जो किसान है वो अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग करता है जिससे उन्हें अच्छी से अच्छी फसल हो मिल सके। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ कमाने, अधिक से अधिक लाभ लेने के चक्कर में हम हमारे पर्यावरण को, हमारे जल को, हमारे वातावरण को, हमारी कृषि भूमि को और हमारे जीव जंतुओं आदि को हम दूषित कर रहे हैं। किसान साथियों, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रासायनिकों का प्रयोग किए बिना जैविक दवाइयों का प्रयोग करके और जैविक खेती करके अच्छे से अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें एक बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि यह बदलाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जीव जंतु जो कि जो खरपतवार हम डालते हैं उसमें से काफ़ी खरपतवार है, जो हम खेतों से निकाल कर हमारे पशुओं को देते हैं, जो अनाज हम खाते हैं उसमें भी जितना हम रसायनों का प्रयोग करेंगे वो रसायन हमारे खाद्य फसलों में ही रह जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका प्रयोग कम से कम करें और हमें जैविक जितना हो सके हम जैविक कृषि की ओर ध्यान दें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: दोस्तों, रेडियो टांडिया भील 90.8FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली भी गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फसल बीमा योजना किस तरीके से हम करवा सकते हैं और फसल बीमा योजना से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से हम कैसे हम फसल योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: विभास कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर PC सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं सहायक आयुक्त फसल बीमा कृषि मंत्रालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णवीर चौधरी जी हैं अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से, कृष्णवीर जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप किसानों का पक्ष यहाँ पर रखेंगे और साथ ही हमारे साथ सुधाकर जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी काम करती है, और सुनील जी बताएंगे कि कैसे सरकार इस योजना को किसानों तक पहुंचा रही है, कैसे इसे और व्यवहारिक बनाया जा रहा है, किसान कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमारे साथ विभास जी हैं जो कि बताएंगे कि अगर किसान को किसी तरह की समस्या आती है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके लिए राह और आसान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट पर।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर बताया कि किस तरीके से ये योजना काम कर रही है, समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए ताकि किसानों के लिए और आसानी हो सके, और जो उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगी कि जो फसल बीमा वीक हम मना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, इसका मकसद क्या है?
3: देखिए, ये फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई है और इसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चूंकि इनरोलमेंट शुरू होता है, जनरली जो खरीफ का इनरोलमेंट है वो 1 जुलाई पर व्यवहारिक रूप से पिक पर रहता है या वहां से स्टार्ट हो जाता है, और जब कट ऑफ डेट है वो बहुत सारे राज्यों में 15 जुलाई है और बहुत सारे राज्यों में जो है 31 जुलाई है। तो इसमें ये किया गया था, इसका जो बनाने का स्वरूप था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक जगह जमा करें, सभी को सेंसिटाइज करें और फार्मर्स के इनरोलमेंट के प्रति उनको दायित्व फिक्स करें कि आप जो है इनको समझाएं, और जो भी उनकी जो मशीनरी है उसको पूरी की पूरी 1 सप्ताह में हम एक्टिवेट कर दें कि वो फसल बीमा इजी वे में हर एक जगह, हर एक गांव में, हर एक जगह वो पहुंच जाए ताकि किसानों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसका एक और पर्पस है कि चूंकि हम पहले योजना के बारे में बता देना चाहते हैं, तो और जो समय मिलता है किसान भाइयों बहनों को वो उसमें निर्णय ले पाएंगे और उसमें अच्छे से पूरे कागजात वगैरह जमा करके वो बीमा अपनी करा सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं कि पूरी स्टेक होल्डर्स को उसमें एक्टिवेट करना होता है हम
1: जी। अब मैं सुधाकर जी से जानना चाहूंगी, सर ये बताएं कि देखिए अभी हम फसल बीमा वीक मना रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो किसानों के मन में ये होता है कि कुछ नया किया गया होगा, कुछ चीजें बेहतर की गई होंगी, कुछ चीजें उनकी सहूलियत के अनुसार इसमें शामिल की गई होंगी। तो इस बार इस वीक में किसानों को क्या नया बताने वाले हैं, क्या नया उन्हें, क्या कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है?
4: जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि ये फसल बीमा सप्ताह हम ये तीसरी बार हम करने जा रहे हैं, पिछला खरीफ हुआ, फिर रबी हुआ, ये फिर से खरीफ आ गया है। तो इसका जैसे कई सारे उन्होंने बताया कि क्यों मनाया जा रहा है, तो उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी लोनी फार्मर थे, जो बैंक से लोन लेते थे, उनका अपने आप बीमा हो जाता था, अब जो है उनको बताना जरूरी है कि ये बीमा हम ले क्यों। तो जब तक उनके हम घर पे नहीं जाएंगे तो हर बार जो है कुछ ना कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको चुनते हैं। इस बार भी करीब 75-80 डिस्ट्रिक्ट चुना गया है और हर उसमें से कुछ कुछ ब्लॉक्स पे जाकर के, गांव के घर तक जाकर के, इतने अधिक मतलब जितने भी हमारे पास साधन है प्रचार प्रसार के, सभी का इस्तेमाल करते हुए और जितने हितधारक हैं सभी के कान तक एक बार आवाज जरूर पहुंच जाए कि बीमा है क्या और इसको हम कैसे लें और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं और मतलब नुकसान होने पे फसल का उनको क्या इससे फायदा होगा और आगे फसल अपना जो है खेती बाड़ी आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये सबसे प्रमुख बिंदु है जिसपे कि हम फोकस करना जा रहे हैं इस बार।
1: जी बिल्कुल, यानी जो एक किसानों की तरफ से लगातार मांग थी कि कुछ किसान ऐसे थे जिन्हें जिनका ये कहना था कि अगर हमने ऋण नहीं लिया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो उनका क्यों बीमा किया जाए। मतलब अगर ऋण लिया है और तब भी अपने आप ही पहले बीमा हो जाया करता था, और अगर उन्हें नहीं कराना है तो ये उनके पास अब सुविधा है कि वो बैंक में जाकर इसकी जानकारी दे दे कि भले ही मेरा बीमा आप ना करें अगर ऋण लिया है तब भी, लेकिन इसके बारे में आपको सही समय पर सूचना देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं विभास जी से। विभास जी देखिए, हम जब गांव जाते हैं और किसानों से बात करते हैं और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा भी मकसद रहता है कि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक समस्या किसानों के बीच देखते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उनकी तरफ से शिकायत एक तरह से कह सकते हैं कि रहते कि हम जाएं कहां, कोई हमें सुनने वाला नहीं, अगर हमें नहीं भी कराना है बीमा और अगर हो गया है तो उसके बारे में हमें बैंक जाना पड़ता, कोई सुनता नहीं है, हमें कंपनी की तरफ से, जो बीमा कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें समझा सके, इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है।
5: देखिए, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहलाते हैं CSCs, सारे किसान भाइयों को पता है। तो हम लोगों का पूरा पर्पज़ ये है कि फसल बीमा की पूरी जानकारी किसानों को दी जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हम लोग कैंप्स लगा सकते हैं, हम लोग ये सब करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं लोकल एरियाज में, उन लोगों को बताया जाता है कि फसल बीमा में क्या क्या सुविधाएं हैं, और उसके बाद पूरा एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है जिसपे किसान अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी जमीन का बीमा करा सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे CSC के थ्रू होती है। और उसके अलावा फिर मतलब उनको एक हम रसीद देते हैं जिससे ये उनको प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट करा है। उसके बाद का उनका पॉलिसी का या जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका स्टेटस क्या है, वो भी हमारे वेली उनको समझा सकता है। तो इसलिए पूरी क्लेम अगर कभी आता है और अगर उनको इंटीमेट करना होता है तो उसके लिए भी वो हमारे वेली के पास आके अक्सर उनसे हेल्प लेते हैं, और फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि बेसिकली हमारा काम कनेक्शन का है। तो जो भी नियरेस्ट CSC है, और हमारे काफी CSC हैं इन सारे, उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक करीब करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स को हम लोग इन्वॉल्व कर चुके हैं थ्रू द CSC नेटवर्क। तो
1: ठीक है, कृष्णवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। अब ये बताएं कि देखिए, इस योजना को आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया है, और कहते भी हैं कि किसी योजना की कामयाबी या फिर उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको समझने के लिए 5 साल का वक्त काफी होता है, और कहते भी हैं कि किसी भी स्कीम का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 5 साल आप लेकर चलिए। अब आप कहाँ देखते हैं किसानों को इस योजना को लेकर, उनमें कितना आत्मविश्वास है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
6: देखिए अंजू, जो उद्देश्य था सरकार का इस योजना को बनाने का, वो किसानों को जो नुकसान होता रहा प्राकृतिक आपदाओं से, उससे बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जो पहले योजना थी उसमें जो लोन किसान का था उसमें कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसमें शिकायतें ये रही, कुछ बैंकों ने पैसा काट लिया, जमा नहीं किया पॉलिसी में, बहुत सारी शिकायतें रही। इसी वजह से अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की अपनी मर्जी है कि वो उसमें अपना इंश्योरेंस पॉलिसी में किस तरीके से भागीदार लो। ये सच्चाई है कि अब जब सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य ये है कि किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप इसमें आइए और आप फसल बीमा कराइए, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हो सके। ये तो है योजना का उद्देश्य, और योजना का जो लाभ है वो किसानों के लिए है, लेकिन कुछ कमियां, जो सुधार हो रहा है बराबर, अभी भी खामियां हैं। खामियां क्या हैं कि जब फसल बीमा योजना को लागू करते हैं खरीफ का तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे रवि का करते हैं, लेकिन जब आपदा से नुकसान होता है देश के किसी भी कोने में, तो ये सच्चाई है कि अब तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी तरफ से जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसलिए लागू करवाया जिससे सर्वे के लिए ड्रोन जो है सबसे एक सही रास्ता चुना गया है और उससे नुकसान का जो है एक सर्वे होता है और उसी तरीके से किसानों का जो है बीमा योजना की धनराशि दी जाती है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि पूरे गांव में जब नुकसान होगा, पहले तो ब्लॉक होता था, अब सरकार ने गांव कर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नुकसान होगा। ये हो सकता है कि एक तरफ से गांव के एक हिस्से में नुकसान हो और दूसरा हिस्सा ठीक रह जाए। तो मेरा सुझाव ये रहा है और आज फिर मैं कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से फिर मेरा सुझाव है कि हर किसान के हर खेत का सिर्फ रसीद देना भर से जिम्मेदारी हक पूरा नहीं हो जाता, उसको कवर नोट दिया जाए कि ये फसल है, ये इसकी वैल्यू है और यदि नुकसान होगा तो इतनी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें भी दो चीजें हैं, एक केंद्र सरकार का धनराशि है और दूसरा प्रदेश सरकारों की उसमें धनराशि होती है। कई बार प्रदेश सरकारें समय पर धनराशि अदा नहीं कर पाती तो किसानों को ये फसल बीमा कंपनियां उसको जो लाभ समय

0: पे नहीं दे पाते। कुछ प्रदेशों ने तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की अपने यहाँ, जैसे पंजाब है तो वहां परेशानियां होती हैं, लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। एक सिर्फ मेरा दो सुझाव है कि जब किसान को आपदा का मुकाबला करने का हालात होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां ब्लॉक लेवल पर होना जरूरी है। अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं है तो जिला लेवल पे परमानेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस कंपनी का जो उस जिले में इंश्योरेंस कर रही है फसलों का, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब ऑनलाइन जो है सब कुछ में काम नहीं चलता, ऑनलाइन किया जा सकता है लेकिन जब लेने का नंबर आता है तो ऑनलाइन में अधूरापन रहता है और किसान उसमें भटकता है। इस कमी में सुधार करना है।
1: जी जी सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो कृष्णवीर जी ने एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो कवर लेटर होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार है, मकान है, यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस, सब में ये एक आपको बकायदा पॉलिसी मिलती है, उसमें जो जो चीजें कवर है, कितना सम इंश्योर्ड है, सब चीजें होती हैं। तो ऐसा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या आगे इस पर कुछ किया जा रहा है?
2: देखिए, जो अभी पूरे चर्चा चल रही थी उसका स्वरूप है कि जो सरकार जो है मुख्यतः तीन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसमें हम लोग बहुत काम करने में सफल हुए। पहला चीज है कि हम फसल कटाई प्रयोग को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में करके हम किसानों को भागीदार बना के हमको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, क्लेम दे दें। उसकी दूसरी चीज है कि इनरोलमेंट हम करें कि किसान को इनरोलमेंट में कहीं भटकना ना पड़े, हम उनकी पूरी चीज को है वो द्वार तक पहुंचाएं और इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, सीएससी, पोस्ट ऑफिस या फिर टेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसानों को हम योजना के बारे में बताएं, उसमें कोई त्रुटि रह गई उनको विश्वास हो और उसमें भागीदार बने। तो ये इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार वगैरह कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये फसल बीमा सप्ताह इस बार लागू चलाई जाएगी। लेकिन मुख्य जो आप कह रहे थे कि हम उनको रिसीट देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ हम लोग आज से 2-2.5 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बैंक में बीमा कराते हैं, बैंक के थ्रू बीमा होता है, उनको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर या अभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे उनको तत्काल तुरंत हाथ में ही उनको पॉलिसी दिया जाता है। अच्छा। उसका पर्पस ये है जो हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं, इसका बहुत वैल्यू है क्योंकि आपके पास एक कागजात है, कागजात में एक सारे चीजें लिखे होती है कि आपका किस फसल का बीमा हुआ, आपने कितना प्रीमियम दिया, सरकार ने उस आपको प्रीमियम सहायता के रूप में आपके लिए कितने बीमा कंपनियों को भुगतान किया, किस खेत में है, किस खेत में किस फसल के लिए बीमा किया गया है, कितनी धनराशि है, बैंक का खाता नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। इसके अलावा फिर हम किसान भाई को और जागरूक करते कि अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई तो इसको तत्काल हम लोग से सुधार पाए, बीमा कंपनियों को संपर्क करें ताकि इसमें सुधार किया जाए, ताकि हम भुगतान जब आपको भुगतान करना हो तो जल्द से जल्द भुगतान करें, किसी तरह की व्यवधान ना पैदा हो। खास करके ऐसा देखा गया है, पीछे हम लोग ने अनुभव किए थे कि अगर बैंक के माध्यम से जब इंश्योरेंस होता था तो किसान भाई को पता भी नहीं होता था कि मैं मेरी किस खेत की किस फसल के लिए बीमा हो गई है। तो ये एक चैलेंज था। जब हम इसमें व्यक्तिगत खेतवार आकलन करने की व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे पेरिल्स हैं जोखिम जिसको खेतवार आकलन किया जाता है, जब बीमा कंपनी राज्य सरकार के जो संयुक्त समिति होती है जब सर्वेक्षण के लिए जाती है तो वहां जिस फसल के लिए बीमा होता किया गया है वो फसल नहीं मिल पाती थी। तो ये सारे चीज जो चुनौतियां जो फील्ड में थी उसको
1: देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि हमारी कौन सी फसल का बीमा हो गया, और वो तो जो उसको जो फसल लेनी वो लेता है और बाद में पता चलता है कि जो कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड फसल है जिसकी अधिसूचना है उसी का ही बीमा मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसी स्थिति ही क्यों आती है?
2: देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार इसमें अधिसूचित करती है फसलों को, इसमें योजना में उनके लिए जो एक क्षतिपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड होता है, ग्रांटेड यील्ड दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल का उपज आंकड़ा की आवश्यकता होता है, प्लस जो अभी हम लोग तत्काल में अगर कोई क्षति होती है, क्षति का जो मापदंड होता है वो भी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। तो राज्य सरकार ये देखती है कि किस फसल में जोखिम है, हमारे पास डेटा उपलब्ध है ताकि हम उसको अधिसूचित कर पाए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि हम लोग ने भी सर्वे किया है, अदर किया है, कि जो मुख्य फसल होते हैं वो सारे कवर हैं, कुछ कुछ फसलें ऐसे हैं जिनके इल डेटा नहीं उपलब्ध होते हैं, उस टाइम उनको हम लोग राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं, बात करते हैं
1: कि
2: मौसम आधारित बीमा योजना में, जैसे खास करके आप बागवानी फसलें हैं, खास करके आपके जो सब्जियों की सब्जी की फसलें हैं जो आजकल शहर के नजदीक या गांव में भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो वहां भी हम लोग उनके डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है अलग अलग वैरायटी के कारण, अलग अलग टाइम के कारण। तो हम लोग कहते हैं उनको कि मौसम आधारित बीमा योजना है, उसमें आप इसको अधिसूचित करें।
1: जी बिल्कुल।
0: गन्ना भी है, वो भी बाहर है अभी उत्तर प्रदेश, क्या पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, 8 प्रदेश है, लेकिन गन्ना भी अभी योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है।
1: जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और पूरे इस सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, डोर टू डोर पहुंचा जाए, किसानों के घर तक पहुंचा जाए और इसके लाभ के बारे में उन्हें बताया जा सके, ताकि वो इससे जुड़े, इसका लाभ ले और जो उनकी आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
3: किसान भाइयों, अभी हमने फसल बीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए और जानते हैं कुछ और इस फसल बीमा सप्ताह के अंदर क्या जानकारी हमें मिल सकती है, आइए सुनते हैं।
2: 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा वीक मनाया जा रहा है ताकि आप किसानों को इसके लाभ के बारे में बताया जा सके और आपकी समस्याओं को भी सुना जा सके ताकि उनको सुनकर बीमा को लेकर जो सुझाव हैं बदलाव भी किए जा सके, संशोधन भी किए जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले सर मैंने कहा था कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक पहुंचे हैं हम इन लगभग 5-6 सालों में, पहले क्या आंकड़ा था और अब कहां कितने किसानों को इसमें कवर किया गया है और कितनी नई फसलों को शामिल किया गया है। सुनील जी,
3: देखिए पहले जब हम पुराने योजनाओं में अगर देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग ने देखा कि क्यों कम है, क्या किसान जानते हैं बीमा योजना के बारे में या नहीं जानते हैं, या राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर पाती फसलों को। तो ये सारे चर्चा करके हुआ कि नहीं, इसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हम इनको अच्छे से ढंग से योजना को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें पहले वर्ष में जो थे वो आप अगर संख्या देखेंगे किसानों का तो करीब वो 4 करोड़ एप्लीकेशन आए थे। और खरीफ अगर 16 की बात करें, अगर अभी हम पिछले खरीफ की बात करें तो स्वैच्छिक होने के बावजूद, योजना स्वैच्छिक हुई है, आधार इसमें कंपलसरी किया गया है, लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि इसमें किसी तरह से डीडुप्लीकेशन हम प्रॉपर कर पाए, वो इसकी गलत फायदा लोगों ना उठा पाए। तो ये सारे चीजों को करने के बाद भी अभी हमारे पास खरीफ में केवल 5 करोड़ किसान अभी बीमित हुए हैं। और हम लोग आशा कर रहे हैं ये कोविड काल का पीरियड है जब तक हम लोग के पास बहुत संसाधन कॉन्स्टेंट था, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर एप्लीकेशन को हम बीमित करेंगे इस बार। तो इसी तरह से देखेंगे क्लेम के बारे में अगर हम कहें तो क्लेम का भी अच्छा रहा है। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं 5 साल में आए हैं वहां क्लेम किसानों को मिला है। हाँ, किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि ये बीमा योजना है, बीमा योजना में लाभ उसी जगह मिलता है जहां आपकी फसल नुकसान हुई है।
2: ठीक है,
3: तो जहां जहां नुकसान हुई है वहां वहां फसल का बीमा मिला है। सरकार इसको पूरी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, देखते रहती है और इसके लिए बहुत सुचारू तंत्र भी लगाया गया है कि ताकि आपको किसी तरह की कठिनाइयां ना हो इसमें। अगर खास करके मैं आज बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो है शिकायत किसानों का होता था उसके लिए क्या करना चाहिए, तो किसान के लिए शिकायत पहले सीधे मंत्रालय को आता था, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति और मंत्रालय को। ये सारे चीजों को हम लोग ने बहुत ग्राम स्तर तक ले जा रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कहा गया है कि टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी शिकायत को करें और उनको निवारण करें। इसमें भी अब जो है केंद्र सरकार ने ये निश्चित किया है और इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट हो चुका है कि पूरी कॉल सेंटर शिकायत के लिए पूरी स्ट्रेटजी, हर एक स्टेट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव टोटल होंगे ताकि आपको शिकायत पूरे डॉकेट नंबर के साथ हो और हर एक चीज पर केंद्र सरकार उस पर निगरानी रख सके कि आपकी शिकायत कैसे हुआ और कब निपटारा।
2: ठीक है सुधाकर जी, जैसे कि कृष्णवीर जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक समस्या ये भी आती है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि वो हमें बजट के हिसाब से चीजें करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो पूरा मैन पावर होता है वो उसको उसके अनुसार ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे तो किससे बात करेंगे किसान।
4: देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट होता अगर ये शायद 2 साल पहले तक तो ये रेलेवेंट था। आज के समय में आप देखेंगे तो जो भी कंपनी काम कर रही है तो उसका एक प्रतिनिधि जिला स्तर पे भी है और उसका एक एक प्रतिनिधि हर ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पर उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां हमारी कंपनी भी कार्यरत है 37 जिलों में, तो वहां 200 के आसपास हमारे प्रतिनिधि पूरे फील्ड में मौजूद हैं। तो उसमें वो ऐसे जिले भी हैं जहां पर की प्रीमियम जहां जो जिससे कंपनी का आमदनी होता है वहां नहीं के बराबर है, वहां भी जो है हमारे हर ब्लॉक में आपको आप हमारे प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो ये समस्या आती है ज्यादातर उन छोटे राज्यों में जहां पर की प्रीमियम ही बहुत कम है। अगर सारे जगह पर प्रतिनिधि लगा दिया जाए तो जितनी प्रीमियम नहीं आती है उससे अधिक हमारा
2: कॉस्ट
4: बढ़ जाएगा। तो वहां पर एक समस्या है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से उसको ये सुलझाने की कोशिश की जा रही है, शायद उसको भी कुछ जल्दी से
2: उसको लेकर क्या किया जा रहा है सुनील? जैसा कि
3: देखिए इसमें चीजें हैं जैसे अभी बता रहे थे, जिसमें पहले सेगमेंट में ही सुधाकर जी बताया कि कुछ ऐसे जिलों को हम लोग चिन्हित करते हैं जहां पोटेंशियल हो और इंश्योरेंस सभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट इस बार भी चुने हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनके लिए बिजनेस है, सरकार के लिए है कि किसानों को सुविधा है, तो उसके बीच में क्या बैलेंस हो और कैसे करे, तो इनके इंश्योरेंस कंपनी के जो तंत्र हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट करते हैं, प्लस जो है ये फसल बीमा सप्ताह, फसल बीमा पाठशाला, ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं। और जो चीजें वहां अगर पोटेंशियल है और किसानों को नहीं है तो टारगेट भी दिया गया है कि हम आप वहां जाएं और टारगेट करें। तो बिजनेस के साथ साथ जो उनकी सरकार की दायित्व है उसमें पूरी समायोजित करके योजना बनाई जाती है और वहां हम लोग करते हैं, राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग हर एक किसानों को समझाते हैं कि हाँ आपके पास जो है यहाँ क्षति हो सकती है, यहाँ रिस्क है, इस रिस्क में आपको बीमा करानी चाहिए। बाकी स्वैच्छिक है बीमा, किसान चाहते हैं तो बीमा होती है।
4: और इसमें मैं एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे सीएससी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, पहले भी उन्होंने बताया कि ये हर गांव में एक सेंटर तो है ही, कई कई गांव में तो दो दो सेंटर भी है और कोई बहुत अधिक घनत्व वाला है तो वहां उससे भी ज्यादा संख्या मिल जाए। तो वो जो सेंटर्स पे हैं उनको बीमा कंपनी, राज्य सरकार के और स्वयं सीएससी के द्वारा भी जो वहां काम कर रहे हैं, इसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको काफी उनको मैन पावर इन्हांसमेंट होती है, उनकी जो तकनीकी जानकारी बढ़ाई जाती है, समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है, तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए योजना का एक्सटेंडेड आर्म है, वो भी हर तरह से हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए सामने खड़े हैं वो, तो चाहे बीमा का लाभ लेना हो या बीमा कराना हो।
2: अच्छा जी जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी, कि आप ये फसल बीमा मित्र कुछ हम सुन रहे हैं, ये क्या है?
4: हाँ, ये एक नई कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लाई है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में कह लीजिए कि एक वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन क्या मतलब, जो भी वॉलंटियर करेंगे तो एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा कि फसल बीमा मित्र के रूप में आप कार्य कीजिए
2: किसानों के बीच में से ही।
5: असली बात यह है कि इसलिए मित्र खड़ा करना पड़ रहा भारत सरकार को कि कंपनियों के और किसान के बीच में जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो मित्र जो है हर गांव में करना जरूरी हो गया, इसीलिए किया जा रहा है, जिससे इसका किसानों को जो समस्याएं हैं वो है समय पर उसको इंश्योरेंस का जो प्राइस प्रीमियम जो देता है उसका नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाए, भरपाई करवाने के लिए ही ये ग्राम लेवल पर भारत सरकार मित्र जो है योजना खड़ा कर रही है।
2: जी मैं आपसे समझना चाहूंगी विभास जी, सीएससी का रोल किस तरह का है और कैसे इसे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को किसानों को समझाएंगे?
6: देखिए जैसे अभी सुधाकर जी ने यूपी की बात करी थी तो मैं यूपी का एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यूपी में हमारे करीब 80,000 केंद्र हैं, एवरेज हो गया करीब करीब 1100-1200 केंद्र हर जिले में
2: जी।
6: तो ये ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने कहा हर गांव में एक केंद्र है ही, हर ग्राम पंचायत में डेफिनेटली एक केंद्र है और वहाँ पे सारी उन लोगों को जानकारी होती है फसल बीमा के बारे में। तो हमारे किसान भाई वहां जाके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से जाके एनरोलमेंट भी कर सकते हैं,
2: दोनों चीजें
6: हो सकती है, जिसमें कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं उनसे। तो वो एक सप्लीमेंट्री मैनपावर की तरह से भी यूज होता है, कई लोग करते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो उसके स्टेटस के बारे में, अगर कोई रिफंड या रिजेक्टेड पॉलिसी है उसके स्टेटस के बारे में, ये सारी चीजें हमारे केंद्र से पता की जा सकती है
2: जी। और कृष्णवीर जी, अब मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, किसानों की एक समस्या हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो कोई अगर क्षति होती है या कोई आपदा आती है तो राज्य की तरफ से भी वो आपदा राहत राशि होती है, और वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अगर वो किसान लाभ ले रहा है, अगर उसने बीमा भी करवाया उस फसल का, तो यहां पर किसान कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमें पैसा कौन सा मिल रहा है, दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये आप जब किसानों से बात करते हैं तो किस तरह की शिकायत रहती है उनकी तरफ से?
5: देखिए, प्रदेश सरकारों का जो आपदा में पूरा प्रबंधन करती है सरकार और जो पैसा किसानों को देती है, वो राशि जो है वो कम होती है, और वो कम राशि इसलिए होती है क्योंकि तत्काल किसानों को एक मदद है आर्थिक रूप से, जो तुरंत मदद की आवश्यकता है किसान को, तो प्रदेश सरकारें सिर्फ तुरंत सहायता के लिए मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल बीमा कराया गया है और जिस कंपनी ने किया है, जितना नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए, और वो समय पे भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी तक शिकायत ये थी कि समय पर उसको पैसा जो नुकसान है वो उसको मिल जाए। किसान ये चाहता है कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान है वो हर किसान को समय पर मिल जाए, और जिस दिन कंपनियां देना शुरू करेंगी तो एक किसान जो है 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं बल्कि 13 करोड़ किसान इस योजना को स्वीकार करेंगे।
2: सुनील जी, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे?
3: देखिए, ये चुनौतियां सरकार के पास रही है और अभी बहुत हम लोग सफल हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते कि पूरे हम लोग जितना लक्ष्य रखे हैं उसमें सफल हो पाए हैं, लेकिन पहले इसमें धीरे धीरे कड़ी हम लोग हटा रहे हैं कि क्यों देरी होती थी। पहले चीजें थी कि डेटा जो आता था बहुत देर से आता था, उसको डेटा को कैलकुलेट करने में कि कितना क्षति होगी उसमें दिक्कत होती, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का समावेश किए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको क्षति का आकलन कर पाए। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा आता था, बड़ा फिजिकली आता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होता था, उस सारे चीज ठीक हुए। दूसरा मेन चीज था कि पहले हम लोग सीधे बैंक को देते थे और बैंक जो है सीधे जो इंश्योर्ड फार्मर होते थे उनके खाते में ट्रांसफर करते थे, अब हम लोग सीधे इंश्योर्ड फार्मर्स के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां थी उसको हम लोग ने दूर कर दिया है। अब केवल चुनौती केवल इतना ही बच गया है कि कहीं कहीं जो है राज्य सरकार जो है प्रीमियम नहीं दे पाती है समय से, इसके कारण भुगतान डिले होता है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जो अब ऐसे बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो तत्काल 2 महीने का हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2 महीने के अंदर जो मौसम फसल कटाई प्रयोग खत्म होते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान करना होता है, इसके लिए मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, प्लस अगर भुगतान नहीं किए तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और उन पर 12% का ब्याज दर निर्धारित करके हम लोग भुगतान भी करवाते हैं। तो ये सारे चीजें आई है, तो जिसके कारण से जो है सबको दायित्व दिया गया है, दायित्व के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक समय दिया गया है, उस समय में करें, और टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया ताकि ट्रांसपेरेंट वे में मॉनिटरिंग हर एक स्टेक होल्डर हर एक आदमी कर पाए, वो अपने मोबाइल के माध्यम से है। लेकिन अगले सीजन से हम लोग जो है सीधे सीधे भारत सरकार ही पैसा ट्रांसफर करेगी, ऐसी व्यवस्था कर रही है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। दूसरे 2-3 फायदे हैं कि हम लोग को पूरे राज्य सरकार और पूरे उनके प्रतिनिधि साहब को पता होगा कि कब पैसा ट्रांसफर हुआ, और किसान को ट्रैक कर पाएंगे पूरे एक्टिविटीज को। तो ये अगले सीजन से हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग चालू करने वाले, तो ताकि अब हम लोग एकदम रूट कॉज में पता कर पाए।
0: किसान साथियों, अभी हमने सुना किस तरीके से पहले जितनी समस्या आती थी हमें हमारे बीमा काम करने में, किस तरह कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं आया, इन सारी समस्याओं को जितना हो सके जो लंबी प्रोसेस थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते और सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: कि किसान भाई को सर रहता है कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ,
2: जी।
3: मेरा जो आकलन हुआ ठीक नहीं हुआ, वहाँ प्रतिनिधि पूरे अगर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में आके और सारे चीज रिकॉर्डेड रहेगा और हम लोग उस चीज को बाद में भी ऑडिट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवांसेज बनेगी तो हम लोग तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं, ये सारे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। योजना का पर्पस ही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में पूरे हम फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लाए कि हम आपको पूर्ण सुरक्षा दे रहे हैं।
4: मैडम, एक और मैं इस कड़ी में और एक बात बोलना चाहूंगा कि किसानों को कैसे जल्दी से जल्दी इस बीमा योजना का लाभ मिले, जिससे समय अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि देर हो रहा है, उससे देर होने का मुख्य कारण एक तो सब्सिडी है, दूसरा है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आता है हमारे पास, तो इसको दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट शुरू किया है, इस बार प्रपोजल है जिसमें कि सारा रिमोट सेंसिंग से लॉस एस्टिमेशन होगा ताकि वो तुरंत डेटा आ जाए और उस तरह से
2: तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिसका जिक्र सुनील जी पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि किसानों की तरफ से एक ये भी सवाल रहते हैं या फिर आशंका रहती है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना सही हुआ है, किस आधार पर हुआ है, तो उसे और पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स भी पढ़ रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए, तो उनमें से एक पॉइंट था कि उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा और जो बीमित राशि है, जो मूल्य है, उसे कम नहीं किया जाएगा। तो ये किस तरह से ये इसका गणित क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है?
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
7: अंकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है, नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।
2: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मूल्य की बात कर रहे हैं कि जो उपज है उसकी जो बीमित राशि है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मानक क्या है, क्या है इसके पीछे का पूरा गणित, तो मुझे लगता है सुनील जी आप इसे बेहतर समझा पाएंगे।
3: देखिए इसमें सरकार की हम मंशा रही है कि हम पूरे जितने क्षति हो उसको हम पूर्ण भरपाई करें, समानुपातिक जितनी क्षति हुई उसको करें। अगर 100% लॉस हुआ तो 100% देंगे, 50% लॉस हुआ तो 50% देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो है दो तरह के हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि या तो आप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण मुहैया कराते हैं उसी के आधार पर वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी बहुत साइंटिफिक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि C2 जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके आधार पर हर एक जिले में जो आप वैरायटी लगाते हैं, जो आप इनपुट यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, उसके आधार पर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित होता है इस, और उसी को हम लोग सम इंश्योर्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं। दूसरा एक राज्य सरकार को और दिया गया है कि आप उसको कुछ क्रॉप्स का कि बहुत दिनों से नहीं अपग्रेड हुआ होगा स्केल ऑफ फाइनेंस या उसमें लगता होगा कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक च्वाइस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले जो आपका 7 साल का उपज है उसको एवरेज यील्ड लीजिए और आज का जो पिछले साल MSP घोषणा की गई है या इस साल जब आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें MSP की घोषणा हो गई है तो उस MSP से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू बनेगा पर हेक्टेयर वो सम इंश्योर्ड होगा, यील्ड आपको आ गया पर हेक्टेयर और एमएसपी के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सम इंश्योर्ड
2: ठीक है। सुधाकर जी, तो ये सब कैलकुलेशन किस स्तर पर होते हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं जो गाइडलाइंस मिली है सरकार की तरफ से उसके आधार पर?
4: नहीं, ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है, जब जैसा आपको पता होगा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कंपनियां सबसे कम प्रीमियम रेट देती हैं उसी को वो डिस्ट्रिक्ट में बीमा करने का अधिकार मिलता है। तो जब टेंडर का डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी समय राज्य सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सम इंश्योर्ड होगा। जैसा भी सुनील जी ने बताया कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, राज्य सरकार के अधीन है कि वो किस तरीके को अपना करके सम इंश्योर्ड तय करती है। तो पहले ही डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये सम इंश्योर्ड इस बार इस क्रॉप में रहेगा। और इंडेमनिटी लेवल दूसरा होता है कि जो क्षतिपूर्ति का स्तर क्या होगा वो भी पहले ही तय हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो 70% हो, 80% हो या 90% हो। जो क्रॉप अधिक रिस्क की है उसको 70% पर राज्य सरकार रखती है और जो हमेशा अच्छा उपज देने वाली है उसको 90% तक रखती है। तो ये सारा राज्य सरकार करती है, बीमा कंपनियों का इसमें रोल नहीं है।
2: जी कृष्णवीर जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो C2 की बात की जा रही है, स्केल ऑफ फाइनेंस की बात की जा रही है, इसे कितना समझते हैं किसान?
5: देखिए, जो क्रॉप कटिंग का जो प्रोडक्टिविटी का पिछला 7 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव बराबर आता रहता है और जो पिछला MSP है उससे कैलकुलेट करके जो सरकार योजना बना रही है, ये इस पर काम चल रहा है अभी, इस पर काम चल रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि जो जिला स्तर की यील्ड होगी, जो लेवल होगा प्रोडक्टिविटी का, और उसको एमएसपी से कैलकुलेट करके जो टोटल फसल का दाम होगा उससे किसान को जो है कंपेंसेट जो है नुकसान होने पर जो है वो दिया जाएगा। ये किसान के हित में जरूरी है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से जो पहले जिला और गांव लेवल पर दिक्कतें थी उसका समाधान करने का प्रयास सरकार ने किया है। खास तौर से जो असेसमेंट का सुधार किया है टेक्नोलॉजी का, वो समय की आवश्यकता थी और उसको सरकार ने लागू किया है। अब सिर्फ स्थिति यहां आके रुकी हुई है कि केंद्र सरकार जिस दिन जो है सीधे किसानों को नुकसान का पैसा उनके खाते में देना शुरू करवा देंगे, जैसा कि सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हम किसानों के नुकसान का पैसा केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में दे, ना कि बैंक को बीच में रखे या पोस्ट ऑफिस को रखे या कंपनियों को अभी तक जो रखा गया, क्योंकि उसी से किसान जो है अभी तक जो समस्याएं हैं उसी लेवल पर है। वो समस्या का समाधान जिस दिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से, जो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंगल क्लिक पर जो है 13 करोड़ किसानों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके सारी योजना है। तो ये भी योजना जिस दिन केंद्र सरकार अपने तरफ से सीधे किसानों खाते में देना शुरू कर देगी उस दिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रदेश सरकारें जो अपना पैसा भागीदारी का है वो समय पर दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये तो
2: जवाबदेही भी यहाँ पर तय हो जाएगी,
5: इसे किसान के हित में किया।
2: जी बिल्कुल। विभास जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, जो इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं इसे और सशक्त बना

0: हमको तो लग रहा है कि ये स्कीम
1: काफी लोकप्रिय हो रही है।
0: काफी लोकप्रिय हो रही
2: है। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटाबिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबिल 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: जानकारियों को बढ़ाते हुए ये सुनते हैं कैसे आसानी से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
4: देखिए, मैं किसान भाई बंधु को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक आप खेती करते हैं, खेती में जोखिम बहुत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप एक भविष्य के लिए एक निश्चित आय आप सोचते हैं कि हमको ये आएगी और उसके लिए वर्तमान में आय से आप फ्यूचर की क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। अगर किसी न किसी कारण से ऐसा कभी ना हो, हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आपके जो फसल नुकसान हो जाए और जो आप आय के लिए जो आशा किए थे वो आय में बाधा हो, इस चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। आप इसका लाभ लें। बहुत सिंपल है, आपको केवल 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ फसलों के लिए, रबी में 1.5% प्रीमियम है अधिकतम, बाकी बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है, जो कम ही है, और वो जो है वो बाकी शेष राज्य सरकार के सरकार वहन करती है। आप योजना में देखें, अपने योजना के बारे में जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप कृषि विभाग से ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, आला प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बीमा कंपनी के जितने कार्यालय वहां तक हम लोग लगाए। इसके अलावा होर्डिंग हम लोग वैन वगैरह चलवा रहे हैं कि हर एक गांव में पहुंचे, आपको जानकारी दे, पंपलेट बांटे ताकि आपके पास रहे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जब आए तो सारी चीजें मिले। ये सारी चीजें हमको जानकारी
1: एक्सटेंशन वर्क जो है वो भी
4: आप जो है बहुत सिंपल है, हर एक जगह इसकी उपलब्धता है। आप बैंक के माध्यम से करा सकते हैं, सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल पर जाके कर सकते हैं, ये कहीं भी डोर स्टेप पर हम लोग कोशिश किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए बहुत सरल तरीका है, केवल आपको 3 कागजात देने हैं, कागजात भी नहीं कहिए, कागजात के रूप में केवल आपको केवल अगर आप भूमि स्वामी हैं तो रसीद देने पड़ेंगे उनके, अगर आप पट्टे पर लिए हैं तो उनके आपके लिए घोषणा देना पड़ेगा, एक राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है। आपको क्रॉप के बारे में स्व घोषणा करना है कि हम ये क्रॉप के लिए बीमा करा रहे हैं। हाँ, ध्यान दें कि जिसका बीमा कराए वही फसल लगाए, अगर फसल बदलते हैं तो आप बीमा कंपनी में जाके बदलवा दें ताकि आपको भविष्य में कठिनाई ना हो। बैंक का हम लोग दस्तावेज लेते हैं, दस्तावेज इसलिए लेते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हमको भुगतान करना होता है बीमा कंपनियों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ताकि हम आपके डिटेल हो पहले कैप्चर करके रखें और दें। हाँ, ये योजना जो है इसमें हम लोग नई 2 चीज और जोड़े हैं, आधार कंपलसरी है ताकि जो है किसी तरह का योजना का सही लोगों को सही जगह पहुंच पाए, और लैंड रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन किए हैं ताकि जो है जिस लैंड में है उसी लैंड का आपका बीमा हो और पूरा डिटेल हमारे पास हो और किसी तरह
1: की जल्दी से जल्दी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के
4: ट्रांसपेरेंट वे करें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: किसान साथियों, आपने फसल बीमा योजना से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने

0: महीना मारामा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिन्नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छाबा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, खेती बाड़ी प्रोग्राम के माध्यम से न केवल किसानों ने बल्कि विद्यार्थियों ने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जाना है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आज फिर आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करने के लिए आ पहुंचा है। किसान साथियों, हमें आशा है आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सबका ख्याल रख रहे होंगे। किसान साथियों, सबकी बुआई हो चुकी है और अभी समय है हमारे खेतों में खरपतवार नियंत्रण का। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अलग अलग फसलों में कैसे हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, साथ ही जानेंगे नई कृषि तकनीकों के बारे में और मिलवाएंगे आपसे एक्सपर्ट से और जानेंगे एक्सपर्ट लोगों की भी राय। उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे छाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कैसे हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, खरपतवार हमारे खेतों में अगर पड़ जाता है तो हम कितना भी हमारे खेतों में पोषक तत्व हम डालते रहे, परंतु अगर हमने खरपतवार ठीक से नियंत्रण नहीं किया तो हमारा कहीं ना कहीं हम हमारी फसलों में इसका नुकसान देख सकते हैं। किसान साथियों, तो आइए जानते हैं, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: जैसे कि आपने बताया कि खरपतवार अपने आप में एक ऐसे पौधे हैं जिनको किसान भाई अपने खेत में नहीं देखना चाहता, तो ऐसी स्थिति में जबकि पर्टिकुलरली खरीफ के मौसम की जो फसलें हैं, जैसे धान है मुख्य फसल, उसके बाद मक्का है और दूसरी दलहनी फसलें हैं, तो इनमें खरपतवार रबी के मौसम की तुलना में अधिक आते हैं। तो जब खरपतवार आते हैं तो उनको हम कई विधियों से नियंत्रित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो किसान भाई अगर शुरू से ही कुछ योजनाबंद तरीके से अगर खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए विचार करेंगे, तो उनको ये चाहिए कि जब खेत की तैयारी करें तो वो एक दो बारी जो है खेत में हल्का सा पानी दे दें, और पानी देने के बाद जो खरपतवारों के बीज होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है खरपतवारों के बीज जो है फसलों की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं और एक खरपतवार तो अब मैं आपको बताऊं कि 15,000 बीज जो है एक पौधा उत्पन्न करता है।
3: अच्छा।
2: तो वो सारे जो बीज अगर खेत में गिर जाते हैं तो वो जमीन की ऊपरी सतह में खरपतवारों के बीज होते हैं, तो जिससे क्या है उनका प्रकोप जल्दी होता है। तो किसान भाई जब खेत में पानी लगाएंगे बोने से पहले, फसल के लगाने से पहले, तो 5-7 दिन पर जो खरपतवार उग जाते हैं और उससे वो ट्रैक्टर से और जुताई करके मार देंगे, तो उससे क्या होगा कि जितने खरपतवारों के बीज ऊपरी सतह में जमीन में पड़े हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा आगे एक महीने में जो खरपतवार जमने वाले थे उनकी संख्या काफी कम हो जाएगी। तो इससे किसान भाई बिना कुछ खर्च किए खरपतवारों का नियंत्रण कम कर सकते हैं। तो ये एक विधि है जिसमें किसानों को ना तो किसी रसायन का प्रयोग करना और ना ही कोई विशेष खर्चा करना।
3: जी, और देख आपको बता दें कि राजवीर जी बहुत सारे यहाँ पर खरपतवार भी लेकर आए हैं, पौधे लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए जब ऐसे बात करते रहते हैं तो कई बार चीजें उतनी क्लियर नहीं होती, इतनी साफ।
1: किसान साथियों, खरपतवार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
4: खरीफ फसलों में खरपतवारों का प्रकोप होने की काफी ज्यादा आशंका रहती है। खरपतवार फसलों की पैदावार पर असर डालती है। खरीफ फसलों में पाई जाने वाली खरपतवारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। ये 2 बीज पत्रीय पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे सफेद मुर्ग, कनकौवा, जंगली जूट और जंगली तंबाकू। दूसरी, संकरी पत्ती वाली खरपतवार। इसको घास कुल की खरपतवार भी कहते हैं। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां पतली और लंबी होती हैं, जैसे सांवा, दूब घास। तीसरी तरह की खरपतवार होती है मोथा वर्गीय खरपतवार। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां लंबी और तना 3 किनारों वाला ठोस होता है। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, जैसे मोथा। धान की प्रमुख खरपतवार सांवा, कोदो, कनकौवा, जंगली जूट, मोथा और जंगली धान है। वहीं खरीफ की दलहनी और तिलहनी फसलों में महकुआ, हजारदाना, कनकौवा, सफेद मुर्ग, सांवा और मोथा उगाती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो निवारण विधि अपना सकते हैं। इस विधि में वो सभी शस्य क्रियाएं शामिल हैं जिनके जरिए खेतों में खरपतवारों के उगने को रोका जा सके, जैसे उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल, अच्छी तरह से सड़ी गोबर खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल, ग्रीष्मकालीन जुताई, खेती की तैयारी और सिंचाई, नालियों की साफ सफाई। दूसरी ओर यांत्रिक विधि खरपतवारों पर नियंत्रण की आसान और प्रभावकारी विधि है। फसल की शुरुआती अवस्था में फसलों को खरपतवार के प्रकोप से मुक्त रखना जरूरी है। आमतौर से 2 निराई गुड़ाई, पहली बुआई के 20-25 और दूसरी 45 दिन बाद करने से खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है।
5: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय कीटनाशी जीव प्रबंधन, जैसा कि अंग्रेजी के वर्ड शब्द जो IPM से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, समेकित नासी जी प्रबंधन में वो समस्त विधियों का हम उपयोग करते हैं जो कीट को प्रबंधन के लिए हम प्रयोग में लाते हैं।
3: IPM जैसा कि आपने बताया, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
5: जी, इसके अंतर्गत हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं वो तमाम विधियों का समावेश है जो सही समय पर हमको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि कीट का प्रबंधन हो सके। लेकिन हमारा किसान भाई आजकल करता क्या है, कीटनाशक डायरेक्ट डालता है, जैसे ही इंसेक्ट दिखाई देता है और तुरंत वो कीटनाशक डालता है। इस विधि के अंतर्गत हमको पहले मॉनिटरिंग करना है, देखना है आपके खेत में कीड़े की कितना है ETL लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उस हद तक कीड़ा है या नहीं है।
1: किसान साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितना उसमें कितना प्रतिशत कीटनाशक है, कितना प्रतिशत हमारे खेत में जीवाणु है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम उसमें दवाइयों का प्रयोग करें। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: समेकित नाशी जीव प्रबंधन से मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खेत और इसके आसपास के वातावरण में मौजूद नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ कीटनाशकों या दूसरे विषैले रसायनों पर ही निर्भर ना होकर ऐसी सुरक्षा विधि को अपनाना है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में प्रकृति में पाए जाने वाले फायदेमंद परजीवी, परभक्षी और फफूंदी व विषाणुओं को बढ़ावा मिलता है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद है। इसके तहत क्षेत्र की जलवायु और फसल के प्रकार के आधार पर कीट या जीवनाशी के प्रबंधन के लिए प्राकृतिक तकनीकों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसमें फसल के मित्र कीटों की संख्या में इजाफा कर शत्रु कीटों का सफाया किया जाता है। इसके अलावा कुछ तकनीक जैसे लाल कद्दू बीटल के लिए नीम तेल का छिड़काव, पीले चिपचिपे जाल का इस्तेमाल, मिट्टी की रैंकिंग से फल मक्खी के प्यूपा को नष्ट करना आदि का इस्तेमाल भी किया जाता है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन की कई विधियां मौजूद हैं, जैसे शस्य क्रियाएं, यांत्रिक विधियां, जैविक विधियां और रासायनिक नियंत्रण। शस्य क्रियाओं में गर्मी में खेतों की जुताई करके उसमें मौजूद कीटों की अवस्थाओं को नष्ट किया जाता है। समय से बुआई और उचित फसल चक्र अपनाया जाता है। कीट और रोगों से ग्रसित पौधों को नष्ट किया जाता है। खेतों में लाइट ट्रैप लगाकर कीटों को नष्ट किया जाता है। जैविक विधि में मित्र कीटों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि रासायनिक नियंत्रण में सुरक्षित रसायनों का सही समय पर निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, हमें कैसे खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, किन किन कीटों को अपने खेतों से दूर रखना चाहिए, कौन से हमारे मित्र कीट हैं और कौन से हमारे शत्रु कीट हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें हमारी कृषि में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा हम कितने भी पोषक तत्व हमारे खेतों में डाल लें उससे हमें नुकसान ही होगा। अगर जब तक हम अच्छे से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर लेते तब तक हमें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: किसान भाई भी जानते हैं कि हमारे खेतों में मुख्यतः तीन प्रकार के खरपतवार देखे जाते हैं। पहले घास जाति के खरपतवार हैं। घास जाति में खरीफ मौसम में सबसे ज्यादा जो खरपतवार आता है वो आता है सांवक, सांवा जिसको बोलते हैं लोग, कभी कभी व्रत में इसको इसकी खीर भी बनाते हैं।
3: सांवक की खीर
2: भी बनाते हैं और हम तो जानते हैं गांव में इसकी झाड़ू भी बनाई जाती थी। जब पहले बांस की झाड़ू नहीं मिलती थी तो सांवक ज्यादा होता था, तो किसान जो है लोग निकाल करके इसके झाड़ू के रूप में भी इसको यूज करते थे। तो ये सांवा बहुत ज्यादा आता है धान की फसल में भी और दूसरी फसलों में भी।
0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आप रेडियो आपनी बातें।
2: तो जैसा कि मैं घास जाति के खरपतवारों की चर्चा कर रहा था, उसमें सवा है, मकरा है, जिसके जिसको क्रैप ग्रास बोलते हैं, जिसके जैसे ये देखिए ये सवा है, देखिए ये पूरा गुच्छे में आता है और इसको किसान भाई देख लेते हैं धान की फसल में और जो खरीफ की फसल है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मक्का हो, चाहे अरहर हो, जो कोई भी फसल है, लोबिया हो, उसमें काफी आता है। इसके बाद जो है ये है मकरा।
3: मकरा,
2: हाँ देखिए इसके अगर आप इसको दिखाएंगे किसानों को तो जब कौवे के पैर जो होते हैं क्रैब फुट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके पंजे के हिसाब से इसको फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस ऐसा होता है तो इसको मकरा बोलते हैं। तो ये भी घास जाति का एक मुख्य खरपतवार है। इसके अलावा ये है, इसको बोलते हैं फूलनी घास। एक्रेनिक रेसिमोसा जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटी होती है और जहां मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां ये ज्यादा पनपती है। इसके अलावा ये एक दूसरी ग्रास है जिसको रेट्रोफ्लेक्सा, डाइनेब्रा रेट्रोफ्लेक्सा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसको भी घास जाति का ये भी मुख्य खरपतवार। और आजकल जो है धान की फसल में जो है सावा कम हो रहा है जबकि ये खरपतवार उसकी जगह ले रहा है। अच्छा। खरपतवारों की एक प्रकृति होती है कि हम अगर एक शाकनाशी, एक हर्बिसाइड बार बार प्रयोग करते हैं धान की फसल में तो उस शाकनाशी के कारण कुछ खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे कुछ खरपतवार उन पुराने खरपतवारों की जगह ले लेते हैं, जिसके काल क्या होते हैं हम कहते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। जैसे हमारे कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसल में आइसोप्रोटन बहुत प्रमुख हर्बिसाइड था जिसको गुल्ली डंडा कंट्रोल होना बंद हो गया। तो ऐसी समस्या जो है बार बार किसान भाइयों को मैं ये हिदायत दूंगा कि एक तरह की हर्बिसाइड बार बार।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हमने सुना कि वही दवाइयां डाल डाल के क्या होता है, धीरे धीरे वही खरपतवार अपने आप को मजबूत बना लेता है और जो पुराने वाले खरपतवार की जगह कर लेता है। खरपतवार से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया व्हील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक माना गया है और आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि हमें खरपतवार का नियंत्रण करना कितना जरूरी है। अन्यथा हम कितना भी पोषक तत्व डाल लें हमारे खेतों में और हम कितना भी हमारे खेतों में मेहनत कर लें, लेकिन सही खरपतवार का सही समय पर इसका ध्यान रखें, इसकी इसमें सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, खरपतवार से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, लेंगे कुछ एक्सपर्ट की राय।
1: खरीफ के मौसम में, इस मौसम में धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे आपका सोयाबीन हो, चाहे कोई भी दलहनी फसल हो, इस मौसम में मोथा जो है बहुत मात्रा में आता है। कभी कभी पूरे खेत में मोथा दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि देखिए, अभी मेरे हाथ में मोथा है, इसकी जड़ें देखेंगे, इसकी जड़ों में गांठे हैं। इसका भोजन जो है ना, इसकी एक मोथा अगर मोथा ऊपर से कट गया है तो कम से कम ये 15 साल तक जीवित रहता है, क्योंकि इसकी जड़ों में भोजन काफी पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए इसका प्रकोप बहुत होता है।
2: तो मतलब इसको काटना छाटना इसका समाधान नहीं है, इसको जड़ से निकालना पड़ेगा।
1: दूसरी बात ये है, आपने कहा ग्लाइफोसेट नामक दवाई से इसका नियंत्रित नहीं होता है। ऐसा कीजिए, जब आप मई के महीने में बहुत गर्मी होती है तो खेत की गहरी जुताई कीजिए, खेत को बिल्कुल नीचे से खोल दीजिए। खोलने से सूर्य की जो गर्मी है उससे इसकी जड़ें जो है, इसका भोजन जो है सूर्य की गर्मी के कारण उसको निष्क्रिय हो जाएगा, और 15 दिन बाद आप हल्का सा पानी दे करके उसके अंदर ग्लाइफोसेट नामक दवाई डाल दीजिए पूरे खेत के अंदर। ग्लाइफोसेट की मात्रा जो है, आप 1 किलो लेंगे प्रति हेक्टर 2.5 एकड़ के लिए और 500 लीटर पानी में ये दवाई का जो घोल बनाकर छिड़काव कीजिए। उससे क्या होगा, जो जड़ें हैं आपने गहरी जुताई से खोली है खेत को, पूरा खेत को आपने फाड़ दिया है, तो ये जड़ें ऊपर आ जाएंगी, सूर्य की गर्मी से ये नरम हो जाएंगी, काफी कमजोर हो जाएंगी, और ऊपर से इसका दवाई का प्रकोप होने से इसके अंदर जो है ग्लाइफोसेट चला जाएगा।
2: मतलब ये ट्रांसपोर्टेटेड हर्बिसाइड है, पूरा समाधान यही है।
1: हाँ, लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों को ये कहूंगा कि ये सोचें कि 100% नियंत्रित हो जाएगा, नहीं होता, क्योंकि इसकी गांठें जो है ना जमीन में काफी गहरी तक होती हैं, तो ऊपर की जो गांठें हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो आपको कम से कम लगभग 60-70% तक का निजात आपको मिल सकता है।
0: किसान साथियों, जैसा अभी हम सुन रहे थे मोथा खरपतवार के बारे में, तो किसान साथियों, मोथा खरपतवार जो है, अगर हम अपने झाबुआ की भाषा में बोलें तो इसको डुंगड़ू कहते हैं। ये डुंगड़ा हमें तालाब के किनारे अधिकतर देखने को मिलता है, साथ ही जहां काली मिट्टी में अधिकतर ये देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारी अप्रैल मई जून की जो कड़ाके की गर्मी होती है, उस समय हम हमारे खेत की जुताई कर दें। खेत की जुताई करने से क्या होगा, थोड़ी गहरी जुताई करें ताकि उसमें से इसकी जड़ें हैं, इसकी जड़ें जो बाहर आ जाएगी और अच्छी गर्मी की वजह से वो थोड़ी सी नरम पड़ जाती है और उस पर हम दवाई का छिड़काव कर सकते हैं, तो इसका नियंत्रण पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 70% तक इसका नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही अगर आप भाई अपने हमारे किसान भाई जानते हैं, ये जो अपना डुंगड़ा है, इसके अंदर की जो गांठें होती है वो बच्चे बड़े चाव से इसे खाते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है इसकी गांठें। अगर आप अभी पानी के दिनों में भी इसको आप उसको उखाड़ेंगे तो उसके अंदर की जो गांठ निकलेगी उसको साफ करके अंदर की गांठ खाई भी जा सकती है। आप में से बहुत किसान भाइयों ने इसको इसका टेस्ट लिया होगा, साथ ही कुछ बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर इसको स्वाद से खाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक

0: स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: मैं अपने श्रोताओं को और किसान भाइयों को सबसे पहले ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कीट प्रबंधन के लिए हम बहुत सारी कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं उसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि कीट प्रबंधन के लिए दवाइयां बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे हमारे इन्वायरमेंट का जो पक्षी है
2: देखिए उसमें भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जैसे जैसे हमने अभी बात की खरपतवार की।
1: उसके बाद में पक्षियों की संख्या कम से कम होती जा रही है, हमारे जमीन के अंदर केंचुए खत्म होते जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय को देखते हुए कि आप सबसे पहले कीट प्रबंधन, कीट आता कहाँ से, कीट जमीन के अंदर से आता है, तो हम ग्रीष्मकालीन जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर, क्योंकि कीड़ा जो सोने के लिए जमीन में जाता है जब उसको उत्पन्न करते हैं तो ऊपर आता था प्यूपा अवस्था में, उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। दूसरा, जब फसल उगाती है 1 फीट की होती है तो इंसेक्ट रस चूसने वाला आता है, उसको रोकने के लिए हमारे पास ये आप देख रहे हैं ये येलो स्टिकी ट्रैप है, अगर आप अपने खेत में जगह जगह लगा देंगे ये मात्र 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाता है।
2: दिखाएंगे इसमें?
1: जी, इसमें बहुत सारे कीट हैं जो चिपक गए हैं।
2: अच्छा, कीट चिपके हुए हैं?
1: इसमें कीट चिपके हुए हैं और अनगिनत संख्या में ये बहुत सारे कीट हैं जिसे आप देख रहे हैं।
2: अच्छा,
1: 10 रुपए के खर्चा है और हम 1 बीघे लगभग 1/4 हिस्से में हम लोग उसको लगा करके रोक सकते हैं। दूसरा, जैसे ही फसल आगे बढ़ती है इंसेक्ट आता है फ्लावरिंग स्टेज पर, वह बहुत सारे अंडे दे देता है, उस अंडे को देखने के लिए यार इंसेक्ट को देखने के लिए एक फेरोमोन ट्रैप है, तरह तरह के फेरोमोन ट्रैप आपके।
2: फेरोमोन ट्रैप का क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब?
1: फेरोमोन ट्रैप का मतलब होता है कि जो जमीन से, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए हमारे समाज में शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, इसी तरह से इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता, इंसेक्ट जमीन के अंदर से निकलता है, मादा द्वारा एक गंध छोड़ी जाती है जो नर को आकर्षित करती है। इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर आप देख रहे हैं, इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर बहुत सारे हैं, यहाँ पर हमने मादा की गंध लगा दी क्योंकि नर को आकर्षित करने के लिए गंध होती है, इसके अंदर अगर हमने गंध लगा दिया, गंध से नर इस मादा से मिलने के लिए आते हैं, हमने सारे नर को इस ट्रैप के माध्यम से एकत्रित कर लिया,
2: तो अंदर कीट है ये जो दिखाई दे रही मिट्टी जैसा।
1: जी जी जी, मिट्टी जैसे नहीं है, ये कीट है,
2: कीट है।
1: हाँ, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे इंसेक्ट को आप कलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं
2: निकाल
1: ये आम की, अमरूद की, ये फल मक्खियां हैं।
2: अच्छा,
1: आम और अमरूद की फल मक्खियां हैं, और आम और अमरूद पर क्या होता है, जैसे अभी बरसात का सीजन आने वाला है तो अमरूद में बहुत ज्यादा इंसेक्ट लगता है, इंसेक्ट पे हम लोग दवाइयां छिड़कते हैं, लेकिन वो मक्खी है ना, मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, स्प्रे से इसको रोकना बहुत मुश्किल है, हम इस विधि से आसानी से रोक सकते हैं। दूसरा बहुत प्रभावी तरीका,
2: आपने बताया कि इसमें मादा की गंध लगा दी जाती है तो नर्स में, तो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं।
1: यस, उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि उसमें इतना छोटा छेद होता है कि एंट्री तो कर जाता है लेकिन उसमें एग्जिट यानी निकल नहीं पाता है, तो सारे नरों को हम खिट्टा कर लेते हैं, मादा के साथ मिलन नहीं होता है, अंडे नहीं होते हैं और हमारी फसल बिना दवाइयों के सुरक्षित हो जाती है। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं कि जैसे अभी अमरूद है, आम चल रहा है, आम में ये बहुत प्रभावी है, और अमरूद में एक और छिड़काव कर सकते हैं, उसके साथ चिपकना हुआ पदार्थ जैसे मोलासिस या सीरा थोड़ा सा मिला करके अगर हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे में क्या होता है कि वो चिपक फल पर और पत्तियों पर आ जाती है और वहां जब मक्खी बैठती है तो उसके पंख चिपक जाते हैं और मैनेजमेंट होता है बिना दवाई।
2: बिल्कुल,
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: कुमार जी, धान की फसल जैसे आप जानते हो कि फर्डलिंग द्वारा रोपाई ट्रांसप्लांटेड से लगाते हैं, सीधी बुआई करते हैं, सीधी बुआई में आज आपकी फसल 15 दिन की है, अब आप उसमें एक दवाई आती है बिस्पारीबैक सोडियम नॉमिनी गोल्ड के नाम से बाजार में बिकती है, आप उसकी 25 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व 25 ग्राम सक्रिय तत्व 1 हेक्टर के लिए 2.5 एकड़ के लिए आप लें और उसमें 300 से 350 लीटर पानी में घोल बनाकर अब आपकी जो फसल 15 से 20 या 25 दिन की है, जो सीधी बुआई सीधी विधि द्वारा बो रखी है, उसमें आप छिड़काव करेंगे तो सारे खरपतवार जो उग गए हैं वो सारे मर जाएंगे।
2: अच्छा, तो अभी अभी ये कर देना चाहिए ना?
3: हाँ बिल्कुल, 15 से 25 दिन की ये अवधि है दवाई की, बिस्पारी बैक सोडियम जो नोमिनी गोल्ड के नाम से बाजार में बिकती है।
2: हाँ हाँ राजवीर जी, लेकिन कई जैसे हम देख रहे हैं कुछ जगह पर बारिश भी हो रही है काफी, तो उसमें भी कुछ बताना चाहेंगे कि समय पर करें ये?
3: नहीं देखिए, ऐसा है जब बारिश का मौसम है, मैं किसान भाइयों को एक हिदायत दूंगा कि कोई भी शाकनाशी कोई भी हर्बिसाइड खरपतवार को मारने के लिए प्रयोग करें तो सबसे पहले मौसम का मिजाज जरूर देख लें
2: जी।
3: अगर मौसम में बारिश होने वाली है एक दो घंटे में या लग रहा कि बारिश होगी तो दवाई का छिड़काव ना करें, क्योंकि आप अगर आपने दवाई छिड़की और एक घंटे में या 15 मिनट में या एक दो घंटे में बारिश हो गई तो सारी दवाई साफ होकर के एक इकट्ठे एक एक खेत के एक कोने में रुक जाएगी, जिससे आपको नुकसान होगा और दवाई का फायदा जो होना चाहिए किसान को वो नहीं होगा। तो दूसरा, हवा का जो प्रकोप है, हवा का जो बहाव है, उसमें भी मौसम का बहुत जरूरी है। तेज हवा नहीं चलनी चाहिए, मौसम शांत होना चाहिए, सुबह 10 बजे का समय नहीं होना चाहिए, 11 से 1 के बीच में आप दवाई का छिड़काव करें तो अच्छा उसमें उस पर दवाई का प्रभाव अच्छा होता है और खरपतवारों के अंदर जो है दवाई अच्छी तरीके से चली जाती है, जिससे उनका नियंत्रण होना संभव अच्छी तरह संभव हो जाता है।
2: ठीक है, अब बात कर रहे थे राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, जैसे कि आपने स्टिकी पैड दिखाया, फेरोमोन ट्रैप आपने दिखाया, पता है कैसे काम करता है, मैं कुछ और भी देख रही हूँ कि ये एक आप ये देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या है?
1: ये किसान भाइयों आपने सुना होगा ट्राइकोग्रामा,
2: हम इसको
1: परजीवी
2: जी जूम करके दिखाते हैं, क्या है ये?
1: ये ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी है, आप इसे अपनी भाषा में समझ सकते हैं छोटा ततैया यानी टिनी बास्प, जैसे आपने घरों में खेतों में पीले वाला ततैया देखा होगा, ये उसी परिवार से संबंध रखता है, बस शर्त एक ये छोटा है और वो बड़ा है।
2: जैसे उसके अंदर है,
1: यस इसके अंदर है, आप देख सकते हैं मूवमेंट कर रहा है, बहुत अधिक संख्या में इसको मूवमेंट कर रहा है। और इसमें आप देखेंगे ये अंड परजीवी जैसे आप समझते हैं, हमारी फसल में बहुत ज्यादा संख्या में हानिकारक कीड़ों द्वारा अंडे दिए जाते हैं, उनके अंडे से सुंडी निकलती है, उस सुंडी को मारना के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो उचित नहीं है। अगर हम अपने खेत में मॉनिटरिंग फेरोमोन ट्रैप से पता कर लेंगे कि हमारा हानिकारक कीट का जो एडल्ट है जो ततैया वो है वो उसमें आ जाएगा, जैसे मोथ है जैसे तितली है अंडे दे देगी और वो हमें फेरोमोन ट्रैप से पता लग जाएगा, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की एक विधि है। उसके अंदर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में आएंगे, ये अंड परजीवी को हम अपने खेत में 15 से 20 दिन के अंतराल पर छोड़ते रहेंगे।
2: तो कहाँ से मिलेंगे परजीवी ये वाले?
1: ये परजीवी क्या करेगा कि उसके अंडे में उसको परजीवित कर देगा, तो परजीवित करने के बाद में जो उसके पीले रंग का पदार्थ होता है अंडे के अंदर, तो उसको ये खा लेगा। जो सुंडी से लार्वी निकलनी थी फिर वो लार्वी नहीं निकलेगी, फिर इसके अंदर से ये ततैया निकलना शुरू हो जाएंगे। और एक जो ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी है ये 1 से लेके 10 तक अंडों को परजीवित करता है, और फिर उस अंडे से जो एक लार्वी निकलनी थी लार्वी नहीं निकल करके फिर 2 से 19 तक उसमें से परजीवी निकलते हैं, और आप इसको देख सकते हैं बहुत ही माइन्यूट संख्या में घूम रहे हैं हमारे किसान भाई देख सकते हैं, और अब ये काफी जगह आसानी से मिल जाता है, हमारे किसान भाई इसको समय समय पर इसको इस्तेमाल करें, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा।
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं, देखिए अभी और ये जीवित है, बहुत छोटे छोटे से हैं, अभी आपको शायद नहीं दिखाई देंगे क्योंकि देखिए ये ग्लास का है और बिल्कुल, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है
1: और इनकी जो लगाने के लिए। थैंक यू मैडम, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं, ये ट्राइको कार्ड के रूप में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: कि धान की फसल में सबसे पहले लगाने के 15-20 दिन बाद तना छेदक आता है, पत्ती मोड़क कीट आता है, अरे गंदी बग आता है, बहुत सारे फिर हॉपर भी आते हैं जैसे GLH है, इस तरह के आते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, एक तो तना छेदक जो बीच में गोब खींचते हैं तो आसानी से खिंच आती है, वहां के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा ट्राइको कार्ड है,
2: ट्राइको कार्ड
1: एक एकड़ में दो लगते हैं, जिसमें एक एकड़ में लगभग 20,000 अंड परजीवी होते हैं जिन्हें हम एक एकड़ में इस्तेमाल करते हैं।
2: इतना सा ये पूरे एक एकड़ में काम करेगा?
1: इसमें लगभग एक में 20,000 होते हैं और दो में 40,000 हमारे परजीवी होते हैं। इन परजीवी एक एकड़ के लिए पर्याप्त हैं। इसे लगाने का तरीका यह है कि खेत से 2 मीटर अंदर जाके लगाएं, क्योंकि अगर हमने किनारे पे लगा दिया तो दूसरे के खेत में चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सलाह सभी को दिया जाए, जैसे कि हम सभी को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये मात्र 45 रुपए का हमारे कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल में मिलता है, जिसे दो लगाने 90 रुपए का खर्चा है, और 2 से 3 बार धान की फसल में लगाएंगे तो तना छेदक और पत्ती मोड़क कीट नहीं लगेगा। अच्छा। हम IPM की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पत्ती मोड़क जो कीट है, पत्ती मोड़ के और एक जाला बना करके उसके अंदर बैठ जाती है सुंडी, लेकिन हम ऊपर से स्प्रे करते हैं, जब ऊपर से स्प्रे करते हैं तो वो तो नीचे है लेकिन सुंडी मर नहीं पाती है। मैं यहाँ बिना दवाइयों के बहुत अच्छा एक तरीका बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे पत्ती मोड़ करके जो सुंडी बैठी हुई है, 10 मीटर की रस्सी हमारे किसान भाई यूं ही घुमा दें, पानी भरा हुआ है, वो सुंडी को जैसे डिस्टर्ब करेंगे, रस्सी से हिलाएंगे तो सुंडी नीचे गिर जाएगी, और जैसे ही पानी के संपर्क में सुंडी आएगी वो मर जाएगी, बिना दवाई के इलाज है। इसी तरह से अगर एक बहुत खतरनाक कीड़ा जब हमारी धान की फसल पकने को आती है तो वहाँ एक गंदी कीट आता है, और गंदी कीट जब आता है कि पहले वो खेत के चारों तरफ जो मेड होती है उसमें खरपतवार होता है, वहां पर पहले वो अंडे देता है, उसके बाद वो खेत में जो धान की फसल दूधिया उस अपने पीरियड में आती है जब धान की फसल पकने को होती है
2: जी, जी।
1: तो रस चूसता है, रस चूसने के बाद में वो उसको सारा बाली को सफेद कर देता है, जो दाली दाना पकने को होता है उसको काला कर देता है। यहाँ पर जब वो कीट आता है तो एक अजीब सी गंध आती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि डस्ट करते हैं, बहुत सारे स्प्रे करते हैं, वहां स्प्रे और डस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जैसे नाम से आप जानते हैं गंधी कीट, उस गंदी कीट को नियंत्रण करने के लिए हम अपने किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि एक गंध जैसा ही पदार्थ उस खेत में छिड़काव किया जाए, जैसे 2 से 3 किलो लहसुन को कुचल के और उसको आप अपने खेत में पानी के साथ छिड़काव कर दें, एक एकड़ में उस समय लगभग 150 लीटर पानी लगता है, वो उस गंध से दूर भाग जाएगा। दूसरा बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा फसल पकने को होती है तो थोड़ा हमारे किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर एक थोड़ा सा आग जला दें, और आग जलाने पर वो गंदी कीट रोशनी की तरफ बहुत ज्यादा आता है, ऐसा करें थोड़ा सा आग को एकदम जब घर आए तो बिल्कुल खत्म करके आए। तीसरा, वहां पर लाइट ट्रैप और फिरोमोन ट्रैप की जैसे हम बात कर रहे हैं, सॉरी लाइट ट्रैप और स्टिकी ट्रैप की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ लाइट ट्रैप लगाएंगे वो गंदी कीट लाइट पर बहुत आता है और यहाँ आकर के वो चिपक जाता है। इसके साथ साथ वहां पर ये अंड परजीवी भी बड़ा प्रभावी ढंग से इस पे काम करता है। इस तरह से हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि ये सारी विधियों को मॉनिटरिंग के आधार पर अपने खेत में इस्तेमाल करें, दवाइयां डालने की कोई आवश्यकता।
4: हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया, हमें अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस अनावश्यक दवाइयों के प्रयोगों से न केवल हमारी मिट्टी परंतु हमारा वातावरण भी खराब होता है। किसान साथियों, आप आसानी से इसे घर पे भी बना सकते हैं, साथ ही लहसुन को कूच कर भी इसकी दवाइयां बना सकते हैं। आदि जो जैविक दवाइयां हैं उनका प्रयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और रासायनिक जितनी भी दवाइयां हैं उनसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनसे हम जितना हो सके दूर रहें और अनावश्यक खर्चों से बचे रहें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के बारे में हम सुन रहे थे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हमें कुछ किसानों ने सोयाबीन में खरपतवारों को नियंत्रण करने हेतु आग्रह किया था कि हम कैसे सोयाबीन के खरपतवारों को हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं और लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
3: हाँ, सोयाबीन की फसल का अभी टाइम आ रहा है या लगा दी होगी, जुलाई के 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। जब फसल लगाने के एक या दो दिन बाद जो है आप इसमें एक पेंडीमिथ्रिन दवाई आती है, पेंडीमिथ्रिन कई नामों से बाजारों में बिकती है, उसकी 1 किलो मात्रा लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर सोयाबीन के लगाने के एक या दो दिन बाद जो है छिड़काव कर दें खेत में। अगर पेंडीमिथ्रिन ना मिले तो एक दवाई आती है मेट्रीविजिन, मेट्रीविजिन कई नामों से बिकती है बाजार में, उसकी मात्रा सिर्फ 200 से 250 ग्राम। देखिए मेट्रीविजिन बहुत तेज दवाई है, इसकी मात्रा मैं दोबारा बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को, 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टर। प्रति हेक्टर का मतलब है 2.5 एकड़, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर सोयाबीन की बुआई के एक या दो दिन के अंदर किसान भाइयों का इसका समान रूप से खेत में छिड़काव करना है। और उसके बाद जिन किसान भाइयों की फसल, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि अगर सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो गई है तो उसमें भी वो खरपतवार नाशी का प्रयोग करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, उसके लिए दवाई दूसरी है जिसका नाम है एमेजेदाफायर। एमेजेदाफायर नाम की दवाई आती है जिसकी मात्रा 50 से 70 ग्राम। देखिए आजकल जो है दवाइयों की मात्रा ग्राम में आती है, किलो में प्रयोग होने वाली दवाइयों का समय आप चला गया, तो 50 से 70 ग्राम एमेजेदाफायर दवाई को आप लीजिए एक हेक्टर के लिए और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब आपकी सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो या 25 दिन की हो, अगर 30 दिन की भी हो गई है तो उसमें भी एमेजेदाफायर नामक दवाई का प्रयोग करके किसान भाई सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकते।
4: जी हाँ किसान साथियों, जैसे कि अभी हमने डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर आपकी सोयाबीन की फसल अभी छोटी है, 10 दिन की है, 15 दिन की है, या 15 से 20 दिन की या 20 से 30 दिन की है, तो हमें अभी हम उस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमें यह बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है किसान साथियों कि हम क्या करते हैं कि ज़्यादा कीट दिख गई या फिर हम थोड़ी सी ज़्यादा मिला के डाल देते हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि ज़्यादा डालने से हमारी हमें फिर से कीटों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे कीट मर जाएंगे। लेकिन आपको इसमें मानक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ से थोड़ी ज़्यादा मिलाने के चक्कर में क्या होता है कि जो हमारी फसल है वो भी जल जाती है। तो आप कृपया कर जो मानक है उसका प्रयोग ज़रूर करें, ऐसा ना हो कि हम हमारी मर्जी से कितनी भी दवाई डालें। तो उसी के साथ ही साथ किसान भाइयों, हम कोशिश कीजिएगा कि आप जैविक खेती की ओर रुख ज़्यादा करें। जैविक दवाइयाँ भी अवेलेबल है, बहुत सारी विधियाँ भी है, बहुत सारी विधियों के मान से भी आपको हमने पहले पुराने एपिसोड में आपको हम बता चुका है कि कैसे हम जैविक दवाइयों के माध्यम से भी कीट खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण में जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, जैसा कि हमारा किसान हमेशा से मिश्रित खेती करता आया है, हम हमारे खेतों में एक फसल के अलावा दूसरी फसल मिक्स करके डालते हैं ताकि इसके साथ साथ हमें कुछ और फसल भी साथ में मिल जाए। इस उद्देश्य से हमारे सारे किसान मिश्रित कृषि करते हैं और ये काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन हमें जिन समस्याओं का सामना वहाँ करना पड़ता है जहाँ बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, अगर हमें सोयाबीन के खरपतवार को नियंत्रण करना है तो अगर हम सोयाबीन की दवाई डालेंगे तो उसके साथ क्या होता है कि मक्का भी उसके साथ मर जाती है और दूसरे भी हमारी जो फसल है उसमें नुकसान होता है। तो अगर हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई और फसल डाल दी है और उसमें अगर हम सोयाबीन के खरपतवार की मारने की दवाई डाल रहे हैं तो उसमें हमारा काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, जानेंगे एक्सपर्ट की राय।
3: आप
5: मूंगफली?
3: हाँ, मूंगफली
5: रूप से किया जाता है।
3: हाँ बिल्कुल, देखिए मूंग और मूंगफली की जो इंटरक्रॉपिंग है, मिश्रित खेती बोलते हैं जिसको कहते हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ हरियाणा या उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ सरसों लगाते थे बीच में एक लाइन, तो इसी तरीके से उड़ीसा में मूंग के साथ मूंगफली लगती है। दोनों ही फसलें चौड़ी पत्ती वाली हैं, तो इसके लिए मैं जब आप दोनों एक साथ लगाएंगे और लगाने के एक या दो दिन बाद एक दवाई मैंने अभी पहले भी बताई थी किसान भाइयों को, पेंडीमिथिलिन। पेंडीमिथिलिन दवाई जो है एक किलो मात्रा लें 2.5 एकड़ के लिए, 1 हेक्टर के लिए, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब मूंग और मूंगफली दोनों लगा दी हैं खेत में, सोइंग कर दी है उनकी, सोइंग के एक या दो दिन बाद छिड़काव कर दें, क्योंकि ये दवाई दोनों फसलों के लिए कंपेटेबल है, दोनों फसलों के लिए सिलेक्टिव है, ये खरपतवारों को मारेगी और फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आप रेडियो आपकी बातें।
3: ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, तिल की खेती के बारे में मैं बताऊंगा। पेंडीमिथिलिन दवाई

0: कई जगह कोऑपरेटिव सोसाइटीज की दुकानें हैं जो ऑथराइज डीलर्स हैं कई कंपनियों के। पैनी मिथिलिन आज कम से कम 10-12 कंपनियां बनाती हैं। आप ऑथराइज डीलर के पास जाइए और पैनी मिथिलिन जब खरीदेंगे तो उसका ओरिजिनल बिल लीजिए। देखिए बाजार के अंदर स्पूरियस मटेरियल नकली दवाइयां बहुत फैल रही हैं, जिसके कारण खरपतवार समय से जब छिड़काव करने से नहीं मरते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों का नुकसान भी होता है और फसल पे भी उसका नुकसान हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आप बिल जरूर लीजिए और ऑथराइज डीलर से ही।
1: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने एक्सपर्ट की राय में सुना, बहुत सारी फेक कंपनियां चल रही है जो कि आपको फेक दवाइयां दे सकते हैं, फेक दवाइयां मिल सकती है। इसीलिए हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें हमारे पर्यावरण को, हमारी ज़मीन को और हमारी पूंजी जो हम खेतों में लगा रहे हैं वो अनावश्यक ना जाए, उसे अनावश्यक ना बहाएं। उसे आप केवीके के माध्यम से भी, आप केवीके में जाकर वहाँ भी आप अपने अपने ज़िले से, अपने पास के ब्लॉक से आप वहां पर मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जो ऑथराइज दवाई है उसी को ही आपको लेना चाहिए और फालतू में हमें मार्केट से दवाई लेके जो अनावश्यक लागत लगती है उससे हमें बचना चाहिए। साथ ही वो ऑथराइज भी नहीं होती है कहीं कहीं पर, तो हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो जो दवाइयाँ हम हमारे खेतों में डाल रहे हैं उसका प्रयोग हमें, ये जो दवाइयाँ हैं ये ना केवल हमारे पर्यावरण को बल्कि हमारी कृषि भूमि को भी दूषित करती है, साथ ही हमारी फसलों में जाती है, जिस फसलों को हम खाते हैं तो उसमें भी काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है। तो किसान भाइयों, यहाँ हमें बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है इस दवाइयों का प्रयोग करने से पहले। रेडियो स्टेशन 90.8 FM, भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना जो कि खरपतवार से संबंधित थी। आपने जाना कैसे खरपतवार का प्रबंध किया जाता है अलग अलग फसलों के साथ, अलग अलग फसलें जिनमें हम मिश्रित खेती को लेकर भी हमने चर्चा की थी। साथ ही हमें कीटों से कैसे हम बच सकते हैं, साथ ही हमें अलग अलग प्रकार की जो खरपतवार घास है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आज आपने जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः मुलाकात होगी कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। डॉक्टर अरबिंदो आज के हमारे कलाकार हैं, आज के हमारी प्रतिभा हैं, आज के हमारे टैलेंट हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं उन्हीं से बातचीत करते हुए और उन्हीं के गीत सुनते हुए। तो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और डॉक्टर अरबिंदो का भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर अरबिंदो का स्वागत करते हुए, वेलकम सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हमारे सुनने वालों से, जो आपके आज फैन बनने वाले हैं, जो हमारी आज की कलाकार फैमिली है, उससे बात कीजिए। हमें प्लीज बताइए ना, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। डॉक्टर अरबिंदो,
1: थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी एक्साइटेड, एंड थैंक यू समीर जी एंड थैंक यू नितिन जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वेल, इसके लिए बहुत लंबा कहानी बताना पड़ेगा, मगर बताऊंगा जरूर। माय नेम इज अरबिंदो, माय नेम इज अरबिंदो, आई एम नॉट अ बंगाली, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, माय मदर टंग इज तेलुगु।
0: Wow.
1: And I learned Hindi English on the job, and I learned Tamil on the job, Hindi English for survival, and I am married to a Nepali who is also from South India.
0: Okay.
1: So all in all, you can call me, I am a true blue Indian.
0: Wow. That's very, very interesting. Very, very interesting. So, दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर अरबिंदो एक्चुअली कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, तेलुगु बोलते हैं और इंटरनेशनली कनेक्टेड है। बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो चलिए आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, अरबिंदो सर से बात करते हैं। तो अरबिंदो सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो गायकी, म्यूजिक, संगीत और आपके जो गाने गाने का जो पैशन है, ये कब से शुरू हुआ? थोड़ी सी उसकी छोटी सी स्टोरी बताइए, कब से शुरू हुआ ये?
1: जी सर, बिल्कुल। गायकी तो शायद कह सकते हैं मेरी जीन्स में है, क्योंकि मेरे दादाजी 60s 70s के दशक के ऑल इंडिया रेडियो कर्नाटक एंड आंध्रा के परफॉर्मर थे, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। हालांकि मैंने कुछ सीखा नहीं फॉर्मली, तो थोड़ा बहुत दादाजी से जो सीखा वो सीखा, पर मेरा ये मानना है कि बहुत पहले से ही, बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक था। एंड चूंकि मैंने बताया कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी सब मिला करके, मैं इन सब गानों को सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। आप तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए, कन्नड़ा बोलिए, हिंदी बोलिए, 40s 50s 60s से लेकर के अब आज तक के लेटेस्ट के मैं बहुत फॉलो किया हूँ। और मेरी एक और खासियत है, मैं हालांकि मैं अपने आप को बड़प्पन नहीं दिखाना चाहता, लिरिक्स मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ।
0: Right.
1: तो जब लिरिक्स पकड़ लेता हूँ और सुर भी जल्दी पकड़ लेता हूँ, तो क्या होता है, इट बिकम्स इजी फॉर मी टू रेप्लिकेट। सो इफ आई मे हैव टू टेल यू अबाउट माय गायकी, आई पब्लिकली स्टार्टेड सिंगिंग इन 2012, स्टार्टेड गिविंग स्टेज परफॉर्मेंसेस एंड सिंगिंग ऑन द स्टेज मल्टीपल लैंग्वेजेस, बिकॉज आई कैन सिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। आई वॉज सॉट आफ्टर इन स्मॉल पर्सनल नोन सोशल सेटिंग्स, क्योंकि डिसंबर 31st वगैरह में न्यू ईयर्स एंड ऑल कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी सबकी जरूरत पड़ती है। तो ऑल इन ऑल लोग मुझे अकेले को बुलाते थे, मैं चार पांच लैंग्वेज में सबको सेटिस्फाई कर देता था, तो वो एक हो गया। एंड इंसिडेंटली, लाइक आई सेड, माय वाइफ्स रूट्स आर फ्रॉम नेपाल, दो शी इज ऑल्सो फ्रॉम साउथ इंडिया। आई कैन सिंग नेपाली ऑल्सो टू इम्प्रेस माई वाइफ्स रिलेटिव्स, एंड दे हैव गिवन मी फेयरली गुड थम्स अप दैट माई नेपाली इज एज प्योर एज इट कैन गेट। सो I can sing about in 9 languages all in all.
0: Oh my goodness, amazingly beautiful. Dosto, aaj jo talent hamare saath hain, dekhiye na, wo 9 bhashaon mein gana ga sakte hain, sangeet ke saath jud sakte hain. Yes, kya guzarti hogi unke zehen mein, unki personality mein, unke shakhsiyat mein, जब वो 9 लैंग्वेजेस में गाते होंगे, मे बी एक ही गाने को 9 लैंग्वेजेस में शिफ्ट करते होंगे, अरे यार मजा ही आ जाता होगा। बहुत खूब, बहुत खूब अरबिंदो साहब, बहुत खूब, मजा आ गया।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: चलिए तो दोस्तों आइए मजा लेते हैं, सुनते हैं इस भाषा विद की आवाज में कुछ गीत, फिर हम आगे बढ़ते हैं अरबिंदो सर से बात करने के लिए। लीजिए पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत खूब अरविंदर साहब, बहुत खूब। तो मेरे पहले ही बॉल पर सिक्सर पर सिक्सर मार दिए आपने, क्या बात है।
1: थैंक यू समीर जी।
0: तो आपने अभी पीछे बात किया कि कई 31 दिसंबर हुआ या कुछ ओकेजन हुए या सोशल गैदरिंग हुई, लोग बाग आपको इसलिए बुला लेते हैं क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनको एक साथ एक व्यक्ति से ही संगीत सुनने को मिल जाता है। तो अपने
1: जी, बिल्कुल,
0: अपने किसी बहुत ही अच्छे से स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कोई एक मतलब बहुत चुना हुआ एक्सपीरियंस कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको बड़ा मजा आ गया हो या आप शायद बहुत नर्वस हो गए हो और फिर आपने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए लोगों का मन जीता हो, कोई ऐसा एक इंसिडेंस।
1: यस सर, एक बार ऐसा हुआ था 2015 की बात है, शायद अबाउट 10 ईयर्स एगो। देर इज अ वेरी फेमस कन्नड़ा फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर ड्यूओ ब्रदर्स कॉल्ड राजन नागेंद्रा, एंड नागेंद्रा जी तो चले गए एंड राजन सर से मैंने थोड़ी गायकी सीखी है इन टर्म्स ऑफ परफेक्टिंग द वॉइस कल्चरिंग, डेवलपिंग द वॉइस टिम्बर, उनसे क्लासेस ली है मैंने फ्रॉम राजन सर, एंड आई हैपन टू डिलीवर the songs composed by Rajan sir, with Rajan sir sitting in the front row and listening to me very intently with a very serious pair of eyes, because you know, it was a song of Balu sir. I am a great devotee of Balu sir.
0: Okay.
1: And I delivered that song, and incidentally the person sitting next to Rajan sir was the director Bhargava, who directed the movie in which this song was picturized.
0: Okay.
1: And that was a fantastic experience for me. And it so happened that Bhargava ji literally spilt the upma on his t-shirt after the song, saying, you reminded me of the shooting of this song of 1977. And I'm so glad that I spilled the upma on my t-shirt because I was so engrossed in the song. So that was a great compliment.
0: Oh my goodness. Ye toh bilkul theek baat hai. Dosto, sun ke sochiye. एक बार इमेजिन तो करिए कि आपकी गायकी सुनकर कोई लिसनर खाना अपने ऊपर ही गिरा ले, मतलब इतना ज्यादा वो खो जाए आपके गीत में कि उनको पता ही ना चले कि उनकी प्लेट टेढ़ी हो गई है और उपमा उनकी शर्ट पे गिर रहा है। ओह माय गॉड,
1: बिल्कुल, दैट वाज द अनफॉरगेटेबल फॉर मी।
0: वाओ, ऑफ कोर्स, इस तरीके के मोमेंट्स हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रह जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आइए ना, तो दोस्तों आप भी याद कीजिए क्या कोई ऐसा मोमेंट आपके साथ भी गुजरा है। तब तक अरविंदो सर की आवाज में सुनते हैं ये बहुत ही प्यारे से गीत, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: जी सर।

0: अरे कमरे में बैठा लो बिजली का क्या काम है, कमरे में बैठा लो बिजली का क्या काम है।
1: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। चलिए अरबिंदो सर, ये प्रोग्राम है दरअसल हमारे आपके संगीत में जो मोहब्बत है, संगीत का जो पैशन है, उसको मजा लेने के लिए, कुछ बेहतर महसूस करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, क्योंकि मैं संगीत को एक मेडिटेशन भी मानता हूं, सभी लोग मानते हैं।
2: एब्सोल्युटली।
1: आपके टैलेंट को समझने के लिए, तो आपको समझा, चलिए थोड़ा सा आपके बारे में समझते हैं। मुझे अपने कोई भी तीन बहुत अच्छे मित्रों के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में बताइए। वैसे आपका जवाब आ सकता है कि सभी मेरे दोस्त हैं, किन्हीं तीन का नाम लूंगा तो चौथा नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं उन सब को हाथ जोड़कर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बुरा ना माने। ऐसे कौन तीन लोग हैं जो अरविंद सर के बहुत नजदीक हैं, जो उनको मोटिवेट करते हैं, मे बी उनकी टांग खिंचाई भी करते हैं, उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट दे आर ऑलवेज देयर विद हिम। सो कौन है वो तीन लोग?
2: जैसे आपने ठीक बोला, तीन का नाम लूंगा तो बाकी सारे नाराज हो जाएंगे, बट वैसे कहूं देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यू नो जिनके साथ मैं स्कूल गया था, यू नो आई एम सेइंग 40 साल की दोस्ती है, 40 साल के ऊपर की दोस्ती है, कम से कम 30-35 साल का तो नॉर्मल सी दोस्ती है। और ये हम लोग एक ही गांव से हैं, एक ही शहर से हैं, साथ पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, प्लस टू पढ़े, इंजीनियरिंग किए साथ में, और एक ही साथ इन अ स्पैन ऑफ 6 months to 1 year वी ऑल वेंट टू यूएस, एंड 3 ऑफ अस वी केम बैक, द रिमेनिंग 5 ऑफ देम आर स्टिल इन द यूएस। एंड आप यकीन नहीं मानोगे समीर जी, एवरी संडे मॉर्निंग our ritual 7:30 a.m. on a Zoom call, we all come, we all turn on our cameras, nothing doing, भले जिसके पास एक एकड़ की प्रॉपर्टी है यूएस में, स्विमिंग पूल है, टेस्ला है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। We want the same guy with whom we went to school. We speak the same way that we spoke like in school. And आज भी टांग खिंचाई ऐसी होती है कि आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चे भी हमारे जोक्स के बारे में, हमारे प्रैंक्स के बारे में, हमारी स्टोरीज के बारे में जानते हैं। एक दूसरे के बच्चे भी दोस्त बन गए हैं, एंड दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक फीलिंग। एक दो तीन लोगों के नाम लूंगा, बाकी सब बुरा नाम है। वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज श्रीनिवास बाबू, एंड ही इज माय बिगेस्ट सपोर्ट। हर एक गाने को मेरे बारीकी से सुन के फीडबैक देगा, यहाँ ये गया, वहां वो गया, या फिर इसको और थोड़ा कर सकते थे, ये तो एकदम फैंटास्टिक है, तुम तो मतलब तेरे लिए गाना बना था, ये टाइप्स बहुत अच्छा फीडबैक देता है मुझे हमेशा। सबसे पहले मैं उसे शेयर करता हूँ। और दूसरा एक फ्रेंड है बसवराज करके, ही इंसिडेंटली हैपेंस टू माय बी माय नेबर आल्सो फ्रॉम माय होम टाउन। हिज मॉम इज माय मॉम्स फ्रेंड, हिज डैड इज माय डैड्स फ्रेंड, हिज सिस्टर इज माय वाइफ्स फ्रेंड, एंड ही इज माय हाई स्कूल फ्रेंड। सो ही इज लाइक यू नो ही इज लाइक ब्रो यू आर दिस यू आर दैट एंड यू आर अनबिलीवेबल एंड ओनली यू कैन डू दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन हमेशा हमेशा से। ही इज मोर देन अ फ्रेंड, इज लाइक अ ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। एंड third one if I were to say is another friend called Saujanya Kumar. I know him since 8th standard and we both are 50 plus now by age, and their daughters are like shocked, like you and my dad went to same school since 8th grade. I said yes beta, we went to same school since 8th grade. Okay. And she was like, wow, how can you be friends with someone for these many years? I said we have grown together, we have seen each other, and he is my another biggest friend, motivator and critic as well. So I take these three guys feedback very seriously.
1: Wow, amazing story, amazing story. Dosto, please get inspired. अरविंदो सर ने अपने तीन दोस्तों के बारे में कितनी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है, डिटेल भी दिए, लेकिन क्रिस्प भी रहे। उन्होंने इमोशंस भी इन्वॉल्व किए कि उनकी डॉटर्स आर अमेज्ड एट द यू नो टेन्योर ऑफ और द ड्यूरेशन ऑफ देयर फ्रेंडशिप। क्योंकि आज के डेट में फ्रेंडशिप तो शायद 2-3 मिनट से ज्यादा की होती नहीं, बट एनीवेज आई मीन दीज आर पैरागॉन। सोचिए ना, 8th स्टैंडर्ड से लेकर टिल डेट, वाओ, मतलब आई एम ऑल्सो अमेज्ड। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को याद कीजिए, कौन है वो, पकड़ के रखिए, जाने मत दीजिए।
2: चलिए, इफ आई मे ऐड वन कोट समीर जी,
1: प्लीज डू।
2: ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइक डायमंड्स, न्यू फ्रेंड्स आर लाइक शाइनिंग ग्लास. व्हेन यू गेट अ न्यू शाइनिंग ग्लास, डू नॉट डिस्कार्ड द डायमंड्स.
1: ऑलराइट, दैट्स सो क्यूट. ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइक डायमंड्स, क्या बात है, बहुत खूब. तो दोस्तों, इकट्ठा कीजिए अपने डायमंड्स को, होंगे आपके पास भी. आइए ना, तब तक इन प्यारे से गीतों का मजा लें और फिर अरबिंदो सर के पास वापस आए इन्हीं इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों के लिए.

0: बहुत खूब अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटिफुल। सो अरविंदो साहब, आपके बचपन के बारे में हमने जाना, कब आपने संगीत संगीत को एंजॉय करना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, उसको भी हमने जाना, कितनी लैंग्वेजेस में आप गाते हो वो भी समझा। फिर हमने आपके बारे में जानने के लिए आपके तीन दोस्तों के बारे में भी जाना, बहुत खूब अमेजिंगली ब्यूटिफुल। अब आपसे पूछना चाहूंगा, वापस लौटूंगा जरा सा टर्न लेते हुए संगीत की तरफ ही, कि आपके फेवरेट सिंगर्स के बारे में जरा हमें बताइए, कौन है वो। मतलब यूं तो सभी लोग, फिर वही वाली बात हो गई फ्रेंड्स की, आप कहोगे सभी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, फिर भी कोई तीन सिंगर्स चूज कीजिए ना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इफ एट ऑल वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट योर फेवरेट सिंगर्स, मे बी वी कैन कीप ऑन टॉकिंग फॉर द होल नाइट, नो प्रॉब्लम। बट हमारे दोस्तों को भी अपने शेयर करने दीजिए, विचार सोचने दीजिए, तो तीन लोगों के बारे में हमें बताइए, तीन सिंगर्स।
1: जी, कैन आई टेक थ्री मेल एंड थ्री फीमेल?
0: ओह या, श्योर।
1: थैंक यू सो मच। इफ आई वांट टू टेक थ्री माय थ्री फेवरेट मेल सिंगर्स, आई वुड रेट एसपी बालसुब्रमण्यम at the top.
0: Wow.
1: Why? Because for any South Indian, Balu sir is not a singer, he is an emotion for us.
0: Right.
1: Masti wala, rone wala, daru wala, shadi wala, bhakti wala, romance wala, shringar ras, all ras ke sab songs hame background mein bajte hain. I was fortunate enough to meet him in person in 2015, and I fell at his feet, and guess what Samir ji, I could not utter a single word. उनको रूबरू देखते ही मेरे दिमाग में उनके हजारों गाने कन्नड़ा तेलुगु तमिल मलयालम हिंदी में बजने लगे। मैंने बोला सर अल्फाज नहीं निकल रहे मुंह से। He said, I know it. You know what he said? I know it happens.
0: Oh, so cute.
1: I can't speak. I'm not able to speak. He said, it's okay. I know it happens. I sat at his feet. I have that photograph with me. I keep it at my work desk. That's my biggest achievement. So he is my favorite singer number one. And my singer number two would be none other than Kishore Da. Again, he is not a singer for any singer. He is an emotion for all of us. Hasaya hai, rulaya hai, philosophical kiya hai, romance kiya hai, tease kiya hai, ajeeb ajeeb tarah ki awaazein nikali hai gaane ke beech mein. Wah wah wah wah.

0: वहां करके, और ऐसे ऐसे मतलब गाने गाए हैं जो आज भी सुन सकते हैं। और माई सन इज 18, ही स्टिल नोस ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना, एनी सॉन्ग दैट वी प्ले आफ्टर 40, 50, 60 years, ही इज टाइमलेस। सो किशोर इज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन टू सिंग, एंड प्रॉबली आई एम वेरी हाईली बायस टुवर्ड्स किशोर एंड किशोर सॉन्ग्स। आई मेट हैव हर्ड ऑल ऑफ हिज सॉन्ग्स इन कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, ही हैज सॉन्ग ऑल्सो, मलयालम ऑल्सो ही हैज सॉन्ग, आई हैव हर्ड हिज सॉन्ग्स एज वेल, एंड हिंदी तो है ही, एंड मराठी सॉन्ग्स, बंगाली सॉन्ग्स ऑफ हिज, आई हैव यू नो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लिसनिंग टू किशोर दा, विल बी माय नंबर टू चॉइस। एंड नंबर थ्री फॉर मी एंड फॉर माय गुरु बालू सर इज रफी साहब। He was the god of music. His voice, I will consider god of music. The way किस नजाकत से गाते थे, ये देख के दिल झूमा, हुई प्यार की शरारत, यू नो शम्मी कपूर सॉन्ग्स, एंड अमेजिंग वॉइस, सिल्कन वॉइस वुड बी माय थ्री चॉइस। एंड कमिंग टू थ्री फीमेल सिंगर्स, आई एम एक्सट्रीमली बायस टुवर्ड्स की अम्मा, अगेन फॉर साउथ इंडियंस, शी इज नॉट अ सिंगर, शी इज एन इमोशन, भक्ति, श्रृंगार, रस, भय, रोमांस, यू नो यू नेम इट, मदरली फिगर फॉर अस जानकी अम्मा, फॉलोड बाय लता दीदी एंड ऑफ कोर्स आशा दीदी।
1: वाओ, क्या डिस्क्रिप्शन है बॉस, क्या डिस्क्रिप्शन है, अमेजिंग। दोस्तों आपने गौर किया, हमारे फ्रेंड अरविंद सर ने किशोर दा की आवाज को, रफी साहब की आवाज को, बालू सर की आवाज को इमोशन कहा है, भावनाएं जब उनकी आवाज सुनते हैं ना हमारे अंदर से उमड़ पड़ते हैं, वो इमोशन, दैट्स अ रिएक्शन वी गेट। क्या बात है, बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों आइए ना इस संगीत संध्या में, इस म्यूजिकल इवनिंग में, चलिए सुनते हैं अरविंदो सर की ही आवाज में ये बेहद बेहद खूबसूरत गीत जो उन्होंने हमारे लिए प्रिपेयर किए, ब्यूटीफुल।

0: बहुत खूब अमेजिंग। अरविंदो सर, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, थोड़ा सा हम सब लोगों को टिप दीजिए, गाइड कीजिए कि हम अपने आप को गीतों के लिए, गाने के लिए, चलिए मुझे ही बताइए, बिकॉज आई एम एस्पायरिंग टू बी अ सिंगर, दो ऑफ कोर्स आई एम नॉट एट ऑल अ सिंगर येट। आप लोगों को सुन सुनकर थोड़ा सा जेलसी फील होता है, तो लगता है एक दो गाना तो मैं भी गा लूं, ट्राई तो करूं। सो टीच मी, हाउ वुड यू टीच अ यंग यू नो एमेच्योर सिंगर कैसे गले को तैयार करें, कैसे सुर को पकड़े, कैसे करियो को पकड़े, थोड़ा सा गाइड कीजिए हमारे सारे लोगों को, सबको।
1: जी सर, हालांकि आपने ये सवाल पूछ लिया है, हालांकि मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता, ग्रुप में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनके गाने मैं सुन चुका हूँ, यू नो, एंड यू नो दे आर अमेजिंग सिंगर्स, बट इफ आई वर टू शेयर सम टिप्स, देखिए वॉइस की जो बात करें तो वॉइस सिंगिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस की बात मैं बाद में करता हूँ, सिंगिंग जो है काफी सारे लोग ये समझते हैं सिंगिंग आवाज के बारे में होती है
0: जी।
1: मैं थोड़ा अलग विचार रखता हूँ, ये सिंगिंग जो है ये आवाज की नहीं है, सिंगिंग इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर ब्रेथ एंड ब्रेथ कंट्रोल।
0: ऑलराइट,
1: चाहे आपकी आवाज कैसी भी हो, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो, थोड़ा रफ हो, या स्मूथ हो, या थोड़ा मैस्कुलिन हो, या थोड़ा फेमिनिन हो, ब्रेथ कंट्रोल में आप जिस अंदाज से गाएंगे आपकी आवाज आप ही का रंग लेकर के आएगी एंड इट विल साउंड यूनिक।
0: Okay.
1: Why I am telling you that because if I listen to your voice is extremely booming and dynamic. That is the name of the voice of the timbre, the voice that you have, Samirji.
0: Right,
1: that
0: sir.
1: is dynamic and booming. So maybe because of exercising your vocal muscles, speaking, your voice has become, you know, dynamic and booming.
0: जी.
1: Now, इस आवाज से आप breath control practice कीजिए 8, 12, 14, 16 seconds. पे एक ही धुन पे रहने का, फॉर एग्जाम्पल सा होल्ड इट फॉर 8, होल्ड इट फॉर 12, होल्ड इट फॉर 14, होल्ड इट फॉर 16.
0: ओके, ऑलराइट, ओके,
1: इट स्टार्ट गेटिंग बेटर, इट स्टार्ट गेटिंग बेटर। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे किशोर कुमार की एक गाना लेते हैं पुराना वाला, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, अरे टी रैट, रैट माने चूहा, अरे तिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। ये गाना जो है 50s का गाना है,
0: yes.
1: 50s का गाना है, 50s के गाने में किशोर कुमार जी की आवाज यू नो गौर कीजिए
0: थोड़ी यंग थी,
1: और 87 में शराबी में मंजिले अपनी जगह है। सो 57 से लेके 87 में 30 साल में क्या बदला, उनकी आवाज की टिम्बर कल्चर होती गई।
0: जी जी जी,
1: जैसे कि बहारों फूल बरसाओ, 60s का गाना, यही रफी साहब की आवाज सुनिए, क्या हुआ तेरा वादा, दैट इज कॉल्ड वॉइस कल्चरिंग। तो ये वॉइस कल्चरिंग के लिए ब्रेथ कंट्रोल, ब्रेथ प्रैक्टिस एंड वोकल मसल्स आर लाइक एनी मसल्स ऑफ योर बॉडी, द मोर यू वर्क इट द मोर बिकम द बेटर दे बिकम।
0: वाओ, अरे वाह, बिल्कुल टेक्निकल, बिल्कुल सिंपल, बहुत ज्यादा टेक्निकल आपको नहीं भी समझ में आया हो ना दोस्तों, मुझे तो आया है। थैंक यू सो मच अरविंदो साहब, जो आपने मुझे बताया कि मेरी आवाज का टिम्बर एंड टेक्सचर क्या है एंड हाउ एग्जैक्टली इट गॉट डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ मुझे क्या करना है वो भी आपने मुझे बताया कि कोई एक सुर पकड़ के, जैसे सा के बारे में आपने बोला, so I can start my timer for 8 seconds, 12 seconds, 14 seconds and 16 seconds.
1: Yes.
0: अरविंदो सर, मैंने लिख लिया, आई रिमेम्बर दैट एंड आई विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट।
1: थैंक यू,
0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद आपने डिफरेंसेस भी बताए कि किस तरीके की किशोर कुमार की यंग एज की आवाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका टेक्सचर चेंज हुआ, सेम वे रफी साहब का। ओ माय गॉड, अमेजिंग टिप्स दोस्तों, सीख लीजिए ना, अगर कहीं पर आपने, आप अच्छे सिंगर होंगे, डेफिनेटली अच्छे गा रहे होंगे, बट सीखते रहने में तो कोई बुराई कभी भी नहीं होती ना, व्यक्ति तो सीखा ही रह सकता है। तो चलिए,
1: एब्सोल्युटली,
0: ये प्यारे से गीत मुझे पेश करने दीजिए, सुनने दीजिए अरविंदो सर की खूबसूरत आवाज में, चाहिए मजा करिए।

0: बहुत खूब अरविंदो सर,
1: सर
0: आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे हमने टेक्निकल सलाहें भी ली, आपके पैशन को जाना, आपकी मोहब्बत सुब्रमण्यम सर की तरफ हमने पहचानी, किस तरीके से आप 9 languages में गाते हैं, कितने सारे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, आपके फ्रेंड्स के बारे में हमने जाना। सो ऑल टुगेदर एक अमेजिंग अमेजिंग कैरेक्टर, एक अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी, मजा आ गया अरविंद सर आपसे मिलकर। तो बस
1: थैंक यू,
0: चलते चलते हमारे सब लोगों के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए और आपके सारे फैंस के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जो आज आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कोई मैसेज दीजिए, कुछ बात कर लीजिए उनसे।
1: ओके, मैसेज तो मेरा यही रहेगा दोस्तों, लाइफ इज द बिगेस्ट टीचर एंड लाइफ विल नेवर स्टॉप टीचिंग यू टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ।

0: because the learning must never stop.
1: Wow. Amazing. Arvind sir, thank you so very much. Aaj sachmuch.
0: Thank you.
1: Sachmuch. Mere dil se baat aa rahi hai. Aapse baat karke bahut acha laga. Ek pavitra atma, ek pious soul, jo apne passion ke piche pagal hai. Mast hai. देखा जाएगा जो होगा. और फिर जिसके पास इतने तीन खूबसूरत फ्रेंड्स हो और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे उस व्यक्ति को परेशानी छू के ना जाए, हम दुआएं करेंगे. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है.
1: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक. मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी. दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं. तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ. तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए. नमस्कार.

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं ऋतुपर्णो दास साहब, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, स्वागत करते हुए कहूंगा कि हमारे सभी दोस्तों के मुखातिब होइए, प्रेजेंट करिए, हमें बताइए ना आप भला कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं आप दास साहब?
1: मेरा परिचय है, दो परिचय है। एक परिचय है कि मैं फिलहाल रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट के अध्यापक हूं। मेरा दूसरा परिचय है मैं एक गायक हूं। मैं खास करके भक्ति गीति के ऊपर, जिनके जहां पर आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के ज्यादा प्रभाव हो, ऐसे भक्ति गीति निराकार ईश्वर के ऊपर मैं फिलहाल उस पे मैं ध्यान दे रहा हूं, और उसके ऊपर मैं गीत रचना और गीत गाना, गीत का सुर बनाना, ऐसे कामों में मैं इन्वॉल्व हूं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपने जाना कि दास साहब दरअसल एक अध्यापक हैं, मैनेजमेंट कॉलेज में सीनियर फैकल्टी हैं, साथ साथ सिंगर हैं और निराकार भजनों की रचना भी करते हैं दास साहब। तो चलिए, दास साहब के साथ विचार विमर्श करने के लिए हम तैयार हैं। आइए कुछ सीखते हैं दास साहब से कि दीस दास साहब ने इस विषय में क्या समझा। दास साहब, सबसे पहली बार स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के बारे में आपने कब सुना, किसने बताया था आपको आध्यात्म क्या होता है, कब?
1: मैंने पहली बार आध्यात्मिकता के बारे में अपनी मामा जी को सुना। मेरे मामा का नाम था डॉक्टर प्रणव रंजन घोष। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला साहित्य का अध्यापक थे। वो बाल ब्रह्मचारी थे और वो आध्यात्मिक कथा के मूर्ति थे। उन्होंने काफी खूब सारे किताब, खूब सारे रचना लिखे थे आध्यात्मिक कथा के ऊपर। उनका पीएचडी का जो टाइटल था वो आध्यात्मिक बांग्ला साहित्य में स्वामी विवेकानंद के प्रभाव, ये उनका था पीएचडी का टाइटल। वो एशियाटिक सोसाइटी के फेलो भी थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो मैं उनसे ये आध्यात्मिक कथा सीखा।
0: ऑलराइट, तो जाहिर सी बात है इतने प्रबुद्ध इंसान से, इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्व से आपने अध्यात्म के बारे में जाना, तो हमें भी बताइए कि अध्यात्म क्या मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज, हम क्या समझे अध्यात्म से, कोई एक साधारण व्यक्ति क्या समझे?
1: आध्यात्मिक मतलब के दो मतलब होता है, दो मायने होता है। एक है जो थियोरिटिकल, आध्यात्मिक कथा है स्वयं को खोजना, स्वयं की आत्मा को खोजना और उसको ये विश्वात्मा से उसको मिलाना, ये थियोरिटिकल। प्रैक्टिकल है आध्यात्मिक कथा का अर्थ है भेदभाव नहीं करना और सभी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करना।
0: ओके, ऑलराइट। सो आज ये चीज और बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जैसा दास साहब ने बताया कि आध्यात्मिकता के दो मतलब हो सकते हैं। एक जो लिटरल मीनिंग है, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है आत्मा का अध्ययन, परमात्मा के साथ मिलन और आपस में उन दोनों का संबंध सीखना, और दूसरा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दास साहब ने बताया है कि निस्वार्थ भाव से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। बहुत सुंदर, एक नई तरीके की परिभाषा अलग शब्दों में आज दास साहब ने हमें बताई है, बहुत सुंदर। अगर इसी स्पिरिचुअलिटी के बारे में आगे बढ़कर बात करें तो चलिए, आपके तो मामा जी ने आपको इतने प्यार से बताया, आध्यात्मिकता के बारे में इतना डीप नॉलेज दिया, क्या आज के जो यूथ जनरेशन है उसको ये स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता ज्यादा समझ में आती है, और अगर आती है तो वो किस तरीके से इसको परसीव करते हैं, हाउ डू दे टेक इट, स्पिरिचुअलिटी को क्या समझते हैं वो?
1: ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, हम इस पर कोई सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन नहीं कर सकते।
0: ऑलराइट,
1: लेकिन ज्यादातर आजकल के जो यूथ है इन लोगों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने का ज्यादा इन लोगों का टेंडेंसी है। तो इन लोगों में से खूब सारे लोग आजकल मंदिर में जाते हैं, मंदिर मस्जिद ये इसमें जाते हैं, जाके दान करते हैं। तो एक तरह का ये इनको दान करना, जो अपना अपना जो आय है, अपनी आय का एक अंश दान करना, ये लोग एक बड़ा समाज सेवा मानते हैं। ये एक तरह की यूथ में दिखता है। और दूसरे यूथ कुछ है जो आध्यात्मिकता में के लिए ज्यादा कुछ सोचते नहीं है। वो लोग वी कॉल देम मेटेरियलिस्ट। ये लोग भोगवादी होते हैं। तो इनको आगे जाके करियर बनाना या बिजनेस में लाभ करना, ये एक तरह का होता है। और जहां पे बिजनेस में लाभ करना है, वहां पे वो लोग मंदिर मस्जिद में भी दान करते हैं, लेकिन वो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब में दिखाते हैं, उनके रिपोर्ट में शो करने के लिए, क्या इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलने के लिए। अगर आप दान करेंगे किसी मंदिर में, भले ही आपका बिजनेस ना हो, आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, किसी मंदिर में आप दान करिए, चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करिए, आपको इनकम टैक्स का छूट मिलता है।
0: हाँ
1: ये एक है। और फाइनली कुछ पढ़े लिखे उच्च लेवल के व्यक्ति है, मैंने उन लोगों को देखा, उसके अंदर नोबेल लॉरेट भी है, नोबेल प्राइज विजेता भी है, वो लोग जुक्ति यानी लॉजिक या रीजनिंग पे बिलीव करता है,
0: ओके
1: वो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ है। विज्ञान, वैज्ञानिक आविष्कार जो होता है, वो लोग उसके बेसिस पे, उसके लॉजिक पे आगे जाके चलते हैं।
0: ओके ओके ओके
1: एक जगह में जाके वो लोग रुक जाता है, जैसे मैथमेटिक्स में द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को पूछता तक जाके उसके बाद वो लोग रुकते हैं, फिर सोचते हैं कि उसके आगे भी कुछ है, बस इतना तक।
0: ओके ओके बहुत क्लियर है कि आज का यूथ दरअसल स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचता है और उसको कैसे परसीव करता है, ये चीज दास साहब ने हमें समझाई। बिल्कुल ठीक दास साहब, जब हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप ही का गाया हुआ एक प्यारा सा भजन हम अपने सुनने वालों को सुनाएं, फिर वापस लौटते हैं आपसे बातचीत के लिए, विचार विमर्श के लिए।

0: बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही प्यारी गायकी। दास साहब, आगे बढ़ते हुए इस विषय में बात करें तो आध्यात्म के बाद एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो बार बार डिस्कस किया जाता है, समझने की जिसको आवश्यकता है, वो है धर्म, यानी कि रिलीजन। क्या है धर्म आपके हिसाब से? आप क्या परिभाषा बताना चाहेंगे धर्म की?
1: मेरे हिसाब से, या तो मैंने जितना किताब पढ़ी है और जितना आध्यात्मिक लोगों की, व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी है, उसके हिसाब से धर्म और आध्यात्मिकता एक दूसरे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कोई धर्म समझो कि, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, कि मैं निराकार ईश्वर में विश्वास करता हूं, तो उसके बारे में नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटेन रियल लिरिक्स, रियल पोएम्स ऑन हिज डिवोशन टू द फॉर्मलेस गॉड, निराकार ईश्वर। तो उसमें निराकार ईश्वर धीरे धीरे एक जगह पे जाके एक ज्योति के हिसाब से प्रकट होते हैं, जो हमें, इफ वी विजुअलाइज इन अवर माइंड, अगर हम हमारे मन में कल्पना करें, तो निराकार ईश्वर एक ज्योति होता है जिनका कोई आकार नहीं होता है। और ये अच्छे अच्छे क्लासिक इंग्लिश मूवी जैसे 10 कमांडमेंट्स, वहां पर भी ये चीज दिखाया गया, ईश्वर एक ज्योति है, उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई गुण नहीं होता है। तो ऐसे और भी धर्म है जो निराकार निर्गुण ईश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें निराकार ईश्वर से जाके हम लोग उस ज्योति में, हम लोग अपने आत्मा को खो देते हैं, मेरे मन की ज्योति उस ज्योति में विलीन हो जाता है। ये होता है आध्यात्मिकता, अगर हम निराकार में विश्वास करें तो।
0: जी जी जी।
1: और अगर हम आकार में विश्वास करें तो उसकी, उसके प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग है, तो वो हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, दैट इज एब्सोल्युटली सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, एक अलग ही तरह से दास साहब ने हमें इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, और दास साहब का ही गाया हुआ एक और प्यारा सा भजन पहले हम सुने।

0: बहुत सुंदर। अब दास, अब आज की प्रैक्टिकल दुनिया की बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आध्यात्म आपसे समझा, धर्म आपसे समझा, अब आज की दुनिया में अगर यंग जनरेशन हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है तो वो ये भी जानना चाहेगी और हम भी ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 90% कह लीजिए, या चलो ठीक है, मैं किसी परसेंटेज को यूज नहीं करूंगा, सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं। तो सोशल मीडिया का स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर है?
1: सोशल मीडिया में कुछ आध्यात्मिक सामग्री भी मौजूद है, अच्छे सामग्री भी मौजूद है। तो जो सोशल मीडिया में सक्रिय लोगों को मदद कर सकते हैं
0: जी,
1: जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में खूब सारे पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से पौराणिक कथा कुछ ऐसे हैं जो सारे धर्मों में कॉमन है।
0: ओके,
1: सारे धर्मों में सामान्य है, ऐसे कुछ पौराणिक कथा है। जैसे जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति अनुराग करता है उसको कुछ ना कुछ दर्द सहना पड़ता है। वो दर्द कहां से भी आए, कहीं से भी आए, किसी आदमी से भी आ सकता है, प्रकृति से भी आ सकता है, समाज से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के प्रति उसका इतना भक्ति या जो भी है होता है, उसका चाहत होता है ईश्वर के लिए, वो उसको जाके आगे जाके अपना आत्म अनुभव, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलता है, उसको उस स्टेज तक, उस स्तर तक लेके जाता है कि बाद में समाज उससे उपकृत होता है, वो एक बड़ा संत, बड़ा महात्मा बन जाता है। उसके बातें सुन के हजारों भटके हुए लोग सही राह पे आते हैं। तो इसको ये एक तरह का प्रभाव आप बोल सकते हैं, जो रिलीजियन या धर्म के प्रभाव होता है आध्यात्मिक कथा के ऊपर। ये ज्यादातर आपके आध्यात्मिक कथा जो निराकार रास्ते में चलते हैं उनके लिए है, निराकार ईश्वर के रास्ते
0: जी।
1: और जो साकार ईश्वर के रास्ते में चलते हैं उनके लिए शायद मेरे हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ा अपोजिट है।
0: ओके,
1: वो पहले किसी साकार ईश्वर को मानते हैं, मानने के बाद उनको उनका उस ईश्वर के भक्त हिसाब से उनका अपना अनुभव होता है, आत्मा अनुभव, फिर वो इस जगत को अपना अपना जो ऐश्वरिक प्रेम, डिवाइन लाभ वो देना शुरू करते हैं, तब उनसे मानव जाति उपकृत होते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से दोस्तों, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, कितने प्यारे ढंग से दास साहब ने इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। नाराकार ईश्वर और साकार ईश्वर में डिस्क्राइब करते हुए दास साहब ने हमें एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लें और एक भजन दास साहब की ही बहुत प्यारी सी आवाज में सुने, और फिर लौट के आते हैं हम दास साहब के पास।

0: बहुत सुंदर। अब दास साहब देखिए, ये तो थियोरिटिकल बात हुई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, निराकार ईश्वर के बारे में और साकार ईश्वर के बारे में। अब अगर हम लोग, फिर हम लोग ने सोशल मीडिया के बारे में भी बात की, आज का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दुनिया का। अब हम बात करें एक और प्रैक्टिकलिटी की, आध्यात्मिकता का हमारी जिंदगी में यूज क्या है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो क्या अध्यात्म हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से आजाद होने में हमारी मदद कर सकती है क्या स्पिरिचुअलिटी, वो कैसे करेगी हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाने में?
1: देखिए सर, एक सही आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में इन जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ये तो मन की बात है, ये सारी चीज मन की है। उनके शारीरिक दैहिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उनका बीपी वगैरह ये सब कम होते जाते हैं।
0: ओके,
1: दूसरी बात ये है सर, एक बात इंग्लिश में एक प्रभाव है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दान की शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम करना चाहिए, उनको अपने माता पिता की प्रेम करना चाहिए बिना स्वार्थ के, कि माता पिता हमें उनका प्रॉपर्टी देंगे इसके लिए नहीं, ऐसा कोई मोह माया नहीं रहना चाहिए। जब उनका जन्म हुआ, माता पिता ने अपने स्वार्थ भूल के उनको बड़ा किया, माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे आगे जाके बड़ा होके उनको देखेंगे कि नहीं, उनको केयर लेंगे कि नहीं, उन्होंने, कोई माता पिता ऐसा नहीं सोचते। तो उनको भी अपने माता पिता को सबसे पहले इसी तरह प्रेम देना है।
0: करेक्ट।
1: फिर अपने बच्चे जो होंगे, अपने पत्नी जो होंगे, उनके पति भी निस्वार्थ प्रेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तो यानी मतलब है आपके परिवार में आध्यात्मिकता की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू हो चुका है।
0: वाओ, ओके।
1: यानी आप सभी को अंदर अपने आत्मा को देख रहे हो, यू आर यूनाइटिंग योर सेल्फ विथ ऑल रेस्ट whosoever is अराउंड यू, आपके साथ जो है उनके साथ आपका आत्मा की एक जोग स्थापित हो गया, यही है आत्मा आध्यात्मिकता।
0: वाओ, ब्यूटीफुल, क्या बात बताई आपने, एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में, अलग शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आपने बड़ी ही प्यारी चीज हमारे सामने रखी भाई, बहुत सुंदर। कई बार ऐसा होता है कि इस चीज को समझ कर भी, आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को समझ कर भी लोग बाग इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। मतलब बात तो वही हो गई, कहने को कुछ और, करने को कुछ और, लेकिन फिर भी कोई एक सीधा साधा सा इंसान हो तो वो क्यों नहीं कर पाता है ये स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस, दास साहब क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
1: क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और त्याग की आवश्यकता है।
0: ओके,
1: और कुछ जिसको हम बोलते हैं कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन या किसी ज्ञानी व्यक्ति की सहचर्य, उनके साथ किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहना, जिसको बोलते हैं कि आपको संग बोलते हैं
0: जी,
1: साधु संग, साधु जातक मीन, साधु का मतलब ये नहीं कि कोई फॉर्मली गेरुआ पहन के घूम रहा है, साधु व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उनके संगत से ये प्राप्त होता है। इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो आत्मानुशासन, त्याग और ज्ञानी व्यक्ति की संग, ये अगर मिले, एक हो जाए, तब आपको धीरे धीरे आपके पास आध्यात्मिकता की झलक आना शुरू होगा।
0: ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट, बहुत खूब। जाहिर सी बात है, उस तरीके का सानिध्य, उस तरीके का माहौल, उस तरीके का एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ हो, तब हम उस तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर सुधा साहब। तो चलिए एक और प्यारे से भजन के साथ एक पॉज लेते हुए दास साहब की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा भजन, और फिर हम वापस लौटते हैं।

0: दास साहब, फर्ज कीजिए कोई बहुत ही साधारण सा इंसान, सीधा साधा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो आपकी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम को सुनकर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छा अभ्यास हो सकता है, मेरे को शांति मिलेगी, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस वो कैसे शुरू करे? कुछ प्रैक्टिकल इजी रोजमर्रा के स्टेप्स थोड़े से सजेस्ट कीजिए ना।
1: देखिए सर, आध्यात्मिकता की शुरू वो कर सकते हैं ऐसे कि हमारे समाज में आज भी दारिद्र है, आज भी कुसंस्कार सुपरस्टिशन है, आज भी गलत अभ्यास गलत प्रैक्टिसेस हैं, तो जिनमें जहां पे लोग भटके हुए लोग हैं सही रास्ते में, लोग धीरे धीरे आज के युवा समाज में देखिए, आज के जो समाज ओवरऑल इट इज ज्यादातर इट एग्जिस्ट, ये कहां पे समाज टिका हुआ है आपको दिखेगा, नजर आएगा सोशल मीडिया में, लोग अपने परिवार, अपने बंधु, इन सबको साथ रहते हैं लेकिन अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, कोई अपने लैपटॉप में डूबे हुए रहते हैं, तो इन लोगों को कोई कुछ समय नहीं है कि ये आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकाले। लेकिन एक चीज आप जरूरी है, अगर हर व्यक्ति समाज के एक कोई दरिद्र शिशु को, दरिद्र व्यक्ति को, दरिद्र कोई लड़का लड़की जो भी है, वो अपने साध्य के अनुसार, हम जो कोई एक घंटा करके जो दरिद्र शिशु है उनको पढ़ाए, या किसी कहीं पर जाके, खूब सारे मैं आपको बोलता हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कलकत्ता में कोविड 19 के टाइम एक रविन हुड बोल के एक बैच हुआ करता था, जिसमें कॉलेज के लड़के अपने आप को रविन हुड सोचते थे, और जहां पर जिसको खाने की अभाव हो या कुछ द्रव्य की नेसेसरी आर्टिकल्स, जहां पर जिसका भी कुछ भी अभाव हो रहा है, सप्लाई नहीं मिल रहा है, वो लोग जाके उद्योग, अपने उद्योग में, अपने मेहनत में लोगों को हेल्प करते थे, खास करके ओल्ड कपल्स, बूढ़े पेरेंट्स जिनको अपने पुत्र छोड़ गए, खास करके कुछ दरिद्र फैमिली जो हु आर लिविंग ऑन फुटपाथ, ऐसे करे। तो ऐसे किसी सही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो समाज के लिए कुछ करता है, कोई ऊपर का दिखावट ही नहीं है, ऐसा कुछ है, इसमें लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकाले, निकाल के उनके साथ कनेक्ट करे, ऐसा ऐसा करके हम लोग आध्यात्मिकता का मतलब यही है कि मेरा आध्यात्मिक उन्नति से क्या होगा अगर ये समाज का के लिए भी कुछ अच्छा ना हो, तो हम, हमारे आध्यात्मिकता का इस तरह का हम

0: कर सकते हैं कि हम समाज के काम में आए। समाज मतलब और दूसरे सारे लोग, मेरे परिवार के बाहर जो लोग हैं, सभी आम जो लोग हो जाए, जो आर्थिक रूप से आपके ज्यादा धनवान नहीं है, इन लोगों के कुछ काम में आए। जो पढ़ाई में पीछे है ऐसे बच्चों को कुछ काम में आए। ज्यादातर आप देख लेंगे सेंट्रल बोर्ड के जो होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ऐसे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा पढ़ाई में आगे होते हैं। स्टेट बोर्ड में जो है वो हम लोगों ने देखा है, स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़ा पीछे होते
1: थोड़ा
0: हैं,
1: पीछे होते हैं।
0: काफी बच्चों के पास गाँव में काफी बच्चों के पास सर मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होती है।
1: राइट,
0: आजकल के पढ़ाई एआई एमएल से है, बहुत सारे एडुटेक कंपनी है, कॉलेज के पढ़ाई के साथ भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलता है, जो हमारे जो स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं मिलता, उनको पता भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जो पीछे है, ये बच्चे हमारे समाज के जाति है, फ्यूचर है, दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो वो अगर हम उन बच्चों को भी थोड़ा हेल्प करें, मदद करें थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, तो इसमें आध्यात्मिकता ही, ये आध्यात्मिकता ही प्रैक्टिस है। और कोई व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता, उसको पता नहीं स्पिरिचुअलिटी पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर प्रेम करके वो अपने आप ये काम कर रहा है, तो वो बिना जाने विदाउट हिज नॉलेज ही स्पिरिचुअल।
1: वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। सिंपल सी प्रैक्टिस है, जैसा कि अभी अभी दास साहब ने बता दिया, नॉर्मल रूटीन, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आसपास ही बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद लोग मिल जाएंगे जिनकी आपने मदद की, तो आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। भाई वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर दास साहब की आवाज का एक और भजन हम लोग सुने, फिर आगे बढ़े।

0: बहुत सुंदर। एक कदम पीछे लौटने की कोशिश करूंगा दास साहब, आध्यात्मिकता की बात हुई और धर्म की बात हुई, क्या ये दोनों एक चीजें हैं या अलग अलग?
1: सर, आध्यात्मिकता और धर्म एक दूसरे के परिपूरक है, कंप्लीमेंटरी है, लेकिन लेकिन लोग धर्म के नाम पे कभी कभी माइथोलॉजी, ये पौराणिक कथाओं को आध्यात्मिकता के साथ वो लोग उलझ लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं।
0: ओके,
1: इसमें स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियन धर्म है, या स्पिरिचुअलिटी एंड मिथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी रिलीजियन एंड मिथोलॉजी, आध्यात्मिकता धर्म और पौराणिक कथा, ये तीनों चीजों के अंदर जो डिफरेंस है और जहां पर संपर्क है, इसके बारे में वेरी स्पष्ट सुस्पष्ट उनका कॉन्सेप्ट या आइडिया या धारणा होनी चाहिए। और वो धीरे धीरे, जैसे वो आध्यात्मिकता के रास्ते में धीरे धीरे जाएंगे या किसी धर्म के रास्ते में भी धीरे धीरे जाए, कोई सिंसियरिटी सही ढंग से अगर वो चले, तो वो एक दिन उनको इन तीनों के डिफरेंस, तीनों जो थोड़ा थोड़ा अलग है, तीनों एग्जैक्टली एक नहीं है, ये इन लोगों को आगे जाके पता चल जाता है, वो अपने अनुभव से पता चलता है।
0: ओके,
1: हम लोगों को जो एक सिक्स्थ सेंस है जिसको हम इंट्यूशन बोलते हैं।
0: यस,
1: इंट्यूशन आगे जाके अगर वो बहुत गहरा, स्ट्रॉन्ग, गहरा और बलशाली इंट्यूशन है, वो ही आगे जाके हमारा तीसरा नेत्र बनता है। तो उसमें ये पार्थक्य नजर आता है, जो नॉर्मल आई, साधारण आंखों में नजर नहीं आता है।
0: बहुत सुंदर, सही बात।
1: तो सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता यही है, आत्मानुभव का रास्ता आध्यात्मिकता में यही है।
0: ओके, बहुत सुंदर भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जाहिर से बात है दोस्तों, आपको ये भी आज समझ में आया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है, क्या तो समानता है, या इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। बहुत सुंदर, चलिए ना एक और भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं।

0: दा साहब, चलते चलते मुझे ये बताइए कि आगे आने वाला समय जो है, जो भी आज चल रहा है, ठीक है, आपने आध्यात्मिकता की, धर्म की जो कुछ भी जानकारी, ज्ञान लिया, आपके मामा जी से लिया, आपने बहुत सारी पढ़ाई की, आपका इंटरेस्ट था, सीखा आपने, और आज का जो करंट प्रस्पेक्टिव है उसमें भी आपने दोनों की रेलेवेंस को, मतलब उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी जो रियलिटी है उसको समझा आज के प्रस्पेक्टिव में। अब आगे की बात करें, आगे का जो फ्यूचर है, जो कि हम अपने यंग जनरेशन को देकर जाएंगे, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब रहेगा? क्या आगे बढ़कर, लेट्स से आगे 20 इयर्स ऑनवर्ड स्पिरिचुअलिटी काम आएगी? क्या उसकी सार्थकता होगी?
1: देखिए सर, निकट भविष्य में युद्ध बिना शादी की भविष्यवाणियां की जा रही है। तब अधिकाधिक लोग संसार की दिखावटी सुंदरता से विमुख हो जाएंगे। वे अपने भीतर झांकेंगे और स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे।
0: ओके।
1: तो ये आने वाले दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एक आशा रखते हैं कि आशा नहीं, आशा बोलिए या दुराशा बोलिए, एक तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं, या इससे भी कम कुछ आजकल नहीं हो रहा है। आजकल का चारों तरफ जो युद्ध की माहौल बनी हुई है, अंतर्देशीय युद्ध की माहौल जो बनी हुई है, इसमें हम लोगों का वो जो भय है हमारे मन के अंदर, वो भय हम लोगों को जब सच हो जाएगा वो युद्ध, तब हम लोगों का बहुत नुकसान होगा। अपने अपने आदमी हम लोग खोएंगे, हम हमारे स्वजनों को खोएंगे, हम हमारे संपदा खोएंगे, शायद हम लोग अपना देश भी खो सकते हैं। तो उसमें उसी टाइम हम अपने भीतर भी जाएंगे, क्योंकि दुनिया का आकर्षण हमारे लिए उस टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी में से कुछ लोग अपने आप झांकेंगे, स्वयं को खोजने का प्रयास करेंगे, ये जब वो शांति को खोजना चाहेंगे।
0: करेक्ट।
1: तो ये आने वाले दिन का मुझे भविष्य ऐसा लगता है।
0: ऑल राइट। बिल्कुल सही बात है। आज के प्रस्पेक्टिव में जिस तरीके का भी माहौल चारों तरफ बना हुआ है, हम अलग अलग तरीके से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दास साहब ने बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक पिक्चर हमें दिखाई है कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तब लेकिन दास साहब का मानना है, और उन्होंने हमें बताया कि आध्यात्मिकता की, रिलीजन की, धर्म की, और इस बारे में विचार करने की सार्थकता, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, यूटिलिटी बढ़ेगी। सोचना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि दुख इतना ज्यादा हो जाएगा जब कभी किसी अपने को खो देंगे तो अवसाद में डूब जाएंगे, तो फिर आध्यात्मिकता ही है जो हमें बाहर निकालेगी। बहुत सुंदर,
1: बिल्कुल
0: भाई, बहुत सुंदर। दास साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत सारी चीजें क्लियर की आपने। सरल शब्दों में बताया कि क्या है आध्यात्मिकता, क्या है धर्म, क्या है उसका यूसेज, क्या है सोशल मीडिया पर उसकी प्रेजेंस, क्या है यंग जनरेशन के लिए उसका मतलब, बड़ी सारी चीजें आपने बहुत ही प्यारे ढंग से और आज के नए भाषा में आपने हमें समझाई। दास साहब, आपके भजन तो फिर सोने पे सुहागा हो गए। जिन बातों को आपने प्यार से समझाया, आपके भजनों ने उसको सपोर्ट किया और हमें बहुत बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया क्या है अध्यात्म और क्यों हमें अध्यात्म को स्वीकारना चाहिए। चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप दास साहब?
2: सर, आपने मुझसे पूछा कि मैं श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहता हूँ। मेरा उत्तर यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव सिखाना चाहिए। राष्ट्र की आत्मा में अपनी आत्मा को देखना सिखाना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता स्वतः उत्पन्न होगी। स्वतंत्रता के इतिहास को ही देख लीजिए, हर स्वतंत्रता सेनानी आध्यात्मिक थे। एक और बात यह है कि हर कोई मृत्यु से डरता है, केवल आध्यात्मिकता ही इस भय को दूर कर सकती है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस दी है दास साहब ने। दोस्तों, बिल्कुल सच, एकदम खरी खरी एडवाइस, बहुत खूब। दास साहब, बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत साफ तौर पे आपने कई चीजें हमें बताई और आपके भजन भी हमने प्यारे प्यारे सुने। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: मोस्ट वेलकम सर।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। आइए सुनते हैं एक गीत, शीर्षक है चलना सीखो।